शीघ्र शांतिपूर्ण रहेगा। यदि आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच नहीं सह पाते। जो हमारे सामने है वह हमें दिखता नहीं, लेकिन जो हमारे पास नहीं है उसका हम विचार करते हैं। भगवान बुद्ध के सुविचार। इन सुविचारों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। जीवन सौरभ।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 109 से वाचन। ऋषि हैं कुत्स आंगिरस, देवता हैं इंद्राग्नि और छंद है त्रिष्टुप।
3: विह्यख्यम मनसा वस्य इच्छन्निन्द्राग्नि ज्ञास उतवा सजातान नान्या युवत प्रमतिरस्ति महियम सवाम धियम वाजयंती मतक्षम। हे इंद्राग्नि, अभीष्ट कामना पूर्ति हेतु किन्हीं ज्ञानवान एवं अनुकूल स्वभाव वाले बंधुओं की खोज का हमारा विचार है। हमारे और आपके मध्य कोई विचार भिन्नता नहीं, अतएव आपकी सामर्थ्य शक्ति प्रभाव एवं क्षमता के परिचायक स्तोत्रों की हम रचना करते हैं। अश्रवम ही भूरि दावत्तरा वाम विजा मातुरुत वाघा स्यालात अथा सोमस्य प्रयति युवभ्यामिंद्राग्नि स्तोमं जनयामि नव्यम्। हे इंद्रदेव और अग्निदेव, श्वसुर द्वारा जामाता और साले द्वारा बहनोई को दिए जाने वाले दान से भी अधिक दान देने में आप समर्थ हैं, ऐसा हमें ज्ञात हुआ है। अतएव आप दोनों के निमित्त सोमरस भेंट करते हुए नवीन स्तोत्र की रचना करते हैं। मा छेद्म रश्मीन रिति नाधमानाह पितृणाम शक्ति रनु यच्छमानाह इंद्राग्निभ्याम कम वृषणो मदन्ति ता ह्यद्री धिषणाया उपस्थे। हमारी संतान रूपी ग्रह रश्मियों का हनन न करें। पितरों की शक्ति वंशानुगत वंशजों में अनुकूलता युक्त हो, ऐसी प्रार्थना से युक्त हमें हे सामर्थ्यवान इंद्रदेव और अग्निदेव, कृपा दृष्टि से सुख प्रदायक आनंद की प्राप्ति हो। इन देवों को सोमरस प्रदान करने के लिए दो पत्थर सोमरस निकालने का साधन सोम पात्रों के समीप स्थापित हों। युवाभ्याम देवी धिषणा मदायेन्द्राग्नि सोम मुशति सुनोति तावश्विना भद्रहस्ता सुपाणी आधावतम मधुना प्रिंक्तमप्सु। हे इंद्रदेव और अग्निदेव, आपकी प्रसन्नता के लिए सोमरस अभिशमन करके दिव्य सोमपात्र पूर्ण रूप से भरे हुए स्थापित हैं। हे अश्विनी कुमारों, उत्तम कल्याणकारी हाथों से युक्त आप दोनों शीघ्र आए और मधुर सोमरस को जलों से मिश्रित करें। युवा मिंद्राग्नि वसुनो विभागे तवस्तमा सुश्रवा वृत्रहत्ये तावा सद्या बरिहिषि यज्ञे अस्मिन् मप्रम चर्षणी मादयेथाम सुतस्य। हे इंद्राग्नि, आप दोनों धन को वितरित करते समय और वृत्र को मारने के समय अति शीघ्रता का परिचय देते हैं, ऐसा हमने सुना है। हे स्फूर्तिवान देवों, इस यज्ञ स्थल पर श्रेष्ठ आसन पर विराजमान होकर आप दोनों सोमरस से आनंद की प्राप्ति करें। प्रचर्षणिभ्यः प्रतनाहवेषु प्रपृथिव्या रिरिचाथे दिवश्च प्रसिंधुभ्यः प्रगिरिभ्यो महित्वा प्रेन्द्राग्नि विश्वा भुवनात्यन्या। हे इंद्राग्नि, युद्ध के लिए बुलाए गए वीर पुरुषों की अपेक्षा आप अधिक बलशाली हैं। पृथ्वी, दिव्यलोक, पर्वत तथा अन्य समस्त लोकों से भी अधिक आप दोनों की प्रभाव क्षमता है। आ भरतम शिक्षतम वज्रबाहु अस्मान इंद्राग्नि अवतम शचीभिः इमे नु ते रश्मयः सूर्यस्य येभिः सपित्वं पितरो न आसन। वज्र के समान सशक्त भुजाओं से युक्त हे इंद्राग्नि, हमारे घरों को धन से भरपूर करें, हमें शिक्षित करें तथा अपने बलों से हमारी सुरक्षा करें। ये वही सूर्य रश्मियां हैं जो हमारे पितरों को भी उपलब्ध थी। पुरंदरा शिक्षतम वज्रहस्तांस्माम इंद्राग्नि अवतम भरेषु तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदितिहि सिंधु पृथ्वी उत द्यौहु। वज्र से सुशोभित हाथ वाले शत्रुओं के दुर्ग को ध्वस्त करने वाले हे इंद्राग्नि, आप हमें युद्ध विद्या में प्रशिक्षित करें और संग्रामों में हमारा संरक्षण करें। मित्र, वरुण, आदिति, सिंधु, पृथ्वी और द्युलोक सभी हमारी कामना पूर्ति में सहयोगी हों।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 109 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति

भक्ति संगीत सुनने वाले सभी साथियों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे मेरी यानी दीप्ति के साथ।

जिस प्रकार सैकड़ों सांपों की चपेट में रहने के बावजूद चंदन की खुशबू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार बुरे लोगों के साथ रहने के बावजूद अच्छे लोगों की अच्छाई और स्वभाव पर कोई असर नहीं होता।

जे। बुद्धिमान मनुष्य वो होता है जो कभी ऐसा काम ना करे जिसका बाद में उसे पछतावा हो। वो सदा ऐसे कार्य करता है जो उसके और उसके आसपास के लोगों के मन को प्रफुल्लित करे। आइए सुनिए ये भक्ति रचना।

जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा है वही भगवान का सच्चा भक्त है, और ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है।

श्रोताओं, धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि व्यक्ति को इच्छा प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु शिष्य के जीवन में व्याप्त अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाते हैं। गुरु बिना ज्ञान हासिल नहीं होता।

व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न करती है।

इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमसे करवाता है। इसी विचार के साथ संपन्न हुआ आज का भक्ति संगीत। अनुमति दें अपने रेडियो मित्र दीप्ति को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, सुनते रहे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

क्रांति मेरे आंगन में यह कैसा हुंकार मचा, बोलो तो यह किसने अपने श्वासों का फुंकार रचा। झंकारों धनुटंकारों का यह चिरपरिचित स्वर छाया, रणभेरी का यह भैरव रब कहो कहां से घिर आया। पराधीन भारत में क्रांति की हुंकार कुछ यूं ही उठी थी और अनेक देशभक्त स्वाधीनता समर में शामिल हुए। इस तरह क्रांति गतिविधियों की एक लंबी श्रृंखला बनी जिसकी शक्ति ने अंग्रेजी राज को भारत से उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे बाल कृष्ण हरि चाफेकर। चाफेकर बंधुओं की त्रयी के वो मझले भाई थे। बाल कृष्ण का जन्म सन 1873 में पुणे के पास चिंचवण नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम हरि विनायक चाफेकर था और माताजी का नाम द्वारका चाफेकर था। बाल कृष्ण के बड़े भाई का नाम दामोदर हरि चाफेकर और छोटे भाई का नाम वासुदेव हरि चाफेकर था। ये तीनों भाई भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में चाफेकर बंधु के नाम से प्रसिद्ध हुए। पिता हरि विनायक चाफेकर पुणे के प्रसिद्ध कथावाचक थे। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उनके तीनों बच्चों की विशेष स्कूली शिक्षा नहीं हो पाई। ये तीनों भाई पिता की कीर्तन मंडली में शामिल थे। बड़े भाई दामोदर भजन लिखा करते और दोनों छोटे भाई बालकृष्ण और वासुदेव कीर्तन में अपने पिता के साथ ढोलक और मंजीरे पर संगत किया करते थे। उनके पिता दरबारों में आया जाया करते थे और तीनों बच्चे भी उनके साथ होते थे। यहाँ बड़े बड़े पंडितों और ज्ञानी जनों का सानिध्य होता था। ऐसे वातावरण का प्रभाव तीनों भाइयों पर भी हुआ। वो तीनों संस्कृत और मराठी के अच्छे जानकार हो गए। इस तरह एक धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण में उनका पालन पोषण हुआ।

बाल कृष्ण हरि चाफेकर के बड़े भाई दामोदर चाफेकर की बचपन से ही खेलकूद की ओर विशेष रुचि थी। वो लगातार अभ्यास करते, प्रशिक्षण प्राप्त करते, इस तरह उनका शरीर अत्यंत बलिष्ठ हो गया। वो राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और चाहते थे कि देश के युवा भारत को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दें। उनके जोशीले भाषणों, प्रभावशाली व्यक्तित्व और उत्कृष्ट राष्ट्र प्रेम से अनेक युवा प्रभावित हुए। उनके संपर्क में आकर युवा शारीरिक प्रशिक्षण और सैन्य अभ्यास प्राप्त करते ताकि समय आने पर वो देश हित में अपना योगदान दे सकें। ऐसे भाई के सानिध्य में रहने के कारण बालकृष्ण हरि चाफेकर के भीतर भी बचपन से ही राष्ट्र अभिमान का भाव गहरा होता गया। वो भारत भूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व अर्पण करने की इच्छा रखते थे। चाफेकर बंधु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से अत्यंत प्रभावित थे। दामोदर चाफेकर ने राष्ट्र कार्य हेतु हितेच्छु मंडल नामक संस्था का गठन किया था। बाल कृष्ण हरि चाफेकर अपने बड़े भाई द्वारा गठित इस संस्था में सघन रूप से सक्रिय थे। इस संस्था में युवाओं को अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण दिया जाता था और स्वाधीनता समर में भाग लेकर उन्हें बलिदान हो जाने हेतु प्रेरित किया जाता था। तिलक जी के विचारों से प्रेरित तीनों भाई अंग्रेजी राज के प्रति आक्रोश से भरे हुए थे। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के अस्वीकार का प्रदर्शन बॉम्बे में रानी विक्टोरिया की मूर्ति पर कालिख पोत कर भी किया था। सन 1896 के अंत में पुणे में प्लेग फैला और एक साल के भीतर इसने प्रचंड रूप ले लिया। इस महामारी में सामान्य रूप से जितनी मौतें हो सकती थीं, उससे दुगुनी मौतें होने लगीं। फरवरी 1897 में गवर्नर ने शहर का दौरा किया। पुणे में बड़ी आबादी प्लेग की चपेट में थी। स्थिति पर नियंत्रण के लिए एक प्लेग कमेटी बनाई गई और वॉल्टर चार्ल्स रैंड इस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्लेग पर रोकथाम के आदेश जारी हुए। रैंड के साथी अफसर लोगों के घरों में घुसते, प्लेग के लक्षण ढूंढते और उन्हें उठाकर अलग कैंप में रखते। लक्षणों की जांच लोगों के कपड़े उतरवा कर की जाती, चाहे सामने महिला हो या पुरुष। सैनिक इस बहाने से महिलाओं का शोषण कर रहे थे, घरों से सामान लूट रहे थे, देवी देवताओं की मूर्तियां फेंक रहे थे। इन परिस्थितियों से जनभावनाएं आहत थीं और इस अत्याचार का विरोध आरंभ हो गया।

0: रैंड के प्रति आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा था। जनता खुलकर आरोप लगा रही थी, लेकिन अंग्रेज इन आरोपों को मानने से इनकार कर रहे थे। इन परिस्थितियों में गोपाल कृष्ण गोखले ने समर्थन में आवाज उठाई कि महिलाओं के साथ दुराचार हुआ है। तिलक जी ने भी अपने पत्र केसरी में अंग्रेजों के अत्याचार की कहानी कही। ऐसे समय में चाफेकर बंधु भी तिलमिलाए हुए थे। उन्होंने प्लेग कमिश्नर W.C. रैंड के वध की योजना बनाई। तारीख तय हुई 22 जून सन 1897, वो तारीख कि जब रानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की हीरक जयंती मनाई जाने वाली थी। अंग्रेज धूमधाम से इस अवसर को मनाने की तैयारी में जुटे थे, और उधर चाफेकर बंधु रैंड के वध की योजना में। कई दिन तक रैंड की बग्घी का पीछा किया गया। वो कब, कहां और कैसे जाता है, इसकी जानकारी जुटाई गई और तय हुआ कि इसमें किसकी क्या भूमिका रहेगी। योजना थी कि जैसे ही रैंड गवर्नर हाउस से अपनी बग्घी में बाहर निकलेगा, एक संकेत शब्द से इशारा किया जाएगा और उसका वध किया जाएगा। 22 जून की शाम गवर्नर हाउस दुल्हन की तरह सजा हुआ था। सूरज के ढलते ढलते चाफेकर बंधु नियत स्थान पर आकर छुप गए। रात 9:30 बजे के आसपास रैंड की बग्घी गवर्नर हाउस से लौटती हुई दिखाई दी। इशारा मिला, गोंडिया आला रे, और बाल कृष्ण हरि चाफेकर ने गोली चला दी। लेकिन उस बग्घी में रैंड नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट आरिएस्ट बैठा था। उसकी मृत्यु हो गई। तुरंत ही दामोदर हरि चाफेकर को समझ में आ गया कि ये रैंड नहीं है। उन्होंने तुरंत महादेव विनायक रानाडे के साथ रैंड पर हमला किया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हुआ और 3 जुलाई सन 1897 को अंततः रैंड की मृत्यु हो गई। अंग्रेज इस घटना से तिलमिला उठे थे। उन्होंने इस हमले में शामिल क्रांतिकारियों की खबर देने वालों को 20,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। इस हत्याकांड का जांच अधिकारी बहुत चालाक था। उसे क्रांतिकारियों के संपर्क सूत्र का भी कुछ कुछ अंदाजा था। उसने गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़ नामक दो भाइयों को लालच देकर सारी जानकारी प्राप्त कर ली। अंततः इस पूरी योजना के सूत्रधार दामोदर हरि चाफेकर गिरफ्तार कर लिए गए। कुछ समय बाद अपने एक साथी की गद्दारी के कारण बालकृष्ण हरि चाफेकर भी पकड़े गए। दामोदर चाफेकर को 18 अप्रैल सन 1898 को फांसी दे दी गई। इस बीच गिरफ्तार होने से पहले वासुदेव चाफेकर ने महादेव विनायक रानाडे और खांडू विष्णु साठे के साथ मिलकर द्रविड़ बंधुओं को मार दिया। वासुदेव ने अपने बड़े भाई दामोदर चाफेकर को जेल में प्रताड़ित करने वाले पुलिस चीफ कांस्टेबल को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाए और पकड़ लिए गए। अंततः 8 मई 1899 को उन्हें फांसी दे दी गई। महादेव विनायक रानाडे 10 मई को फांसी पर चढ़ा दिए गए। चूंकि खांडो विष्णु साठे की उम्र बहुत कम थी, इसलिए उन्हें 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। अपने दोनों भाइयों की तरह ही बाल कृष्ण हरि चाफेकर 12 मई सन 1899 को हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए और क्रांति की अखंड ज्योति जला गए। नमन ऐसे अमर बलिदानियों को।
1: शहीदों के खून का असर देख लेना, मिटा देंगे जालिम का घर देख लेना। किसी के इशारे के हम मुंतजिर हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम एक छोटी से अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।
2: दोस्तों नमस्कार, प्रकृति की पुकार कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं मनीषा। और आज इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि विशेषज्ञ हैं श्री ओम शंकर श्रीवास्तव जी। आप भोपाल मध्य प्रदेश के अधिवक्ता हैं और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के साथ साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने अनेक राष्ट्रीय और शासकीय संस्थानों के विधिक सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं और निभाई है, जिनमें सेंट्रल वाटर कमीशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस सहित कई प्रमुख संस्थाएं शामिल हैं। पर्यावरण और वन कानून के क्षेत्र में आपकी विशेषज्ञता के कारण आप भारतीय वन अधिनियम 1927 के संशोधन समिति के सदस्य भी हैं, मध्य प्रदेश के शासन की पर्यावरण परिषद से भी जुड़े हुए हैं। भूविज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और प्रबंधन जैसे विषयों में आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि आज की चर्चा को और अधिक सार्थक बनाएगी। तो आइए, आपके साथ हम भी आपका स्वागत कर रहे हैं।
3: धन्यवाद मनीषा जी।
2: सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत ही हम यही करना चाहेंगे कि पर्यावरण और प्रदूषण की चर्चा एक साथ करने की जरूरत क्यों पड़ने लगी?
3: पर्यावरण और प्रदूषण की चर्चा एक साथ करने के पहले जरा हमें थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहिए
2: जी।
3: सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने राष्ट्र गीत की, तो राष्ट्र गीत के वो जो दो छंद है वही अपने आप में काफी है पर्यावरण का बोध और प्रकृति के बोध के लिए। जैसे हम कहते हैं वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, इसका अर्थ यही है। यही पर्यावरण बोध अपने आप में काफी है। अगर इस विचार को और इस सोच को और इसके शब्दों को अगर हम अपने आप में अगर ढाल ले, तो मुझे लगता है कि पर्यावरण के साथ साथ प्रदूषण की बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं थोड़ा सा दो लाइन में इसको और विस्तार में बता दूंगा। सुजलाम साफ जल, सुफलाम साफ और स्वच्छ फल, मलयज शीतलाम एक शीतल की तरह, और सस्य श्यामलाम मतलब हमारी धरती हरी भरी हो, साफ जल हो, साफ अच्छे पेड़ पौधे हो, इसके साथ साथ सबसे आवश्यक है कि हरी भरी पृथ्वी हो। अगर ये सोच के साथ अगर हम चलते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण की आवश्यकता एक साथ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
2: बिल्कुल। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब हम बात कर रहे हैं कि सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम की अगर हमें पर्यावरणीय बोध हो तो हमें ये चर्चा नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे में आप क्या समझते हैं एक आम नागरिक को क्या भूमिका निभानी चाहिए पर्यावरण के संरक्षण में?
3: अपनी सजगता से हम पर्यावरण के क्षेत्र में हम काफी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत पहले से कहा जाता था जब हम स्कूलों में भी थे, एक्ट लोकल थिंक ग्लोबल। आपको लोकली अपने काम करना है और बड़ी सोच के साथ काम करना है
2: जी।
3: हम एक आम व्यक्ति अपने आसपास में जब भी हमें ऐसा लगता है कि उनके पर्यावरण में चाहे उनके पास में किसी भी तरह का वायु प्रदूषण हो रहा हो, किसी भी तरह का जल प्रदूषण हो रहा है या और भी कोई प्रदूषण जो से उन्हें से देखने से लगता है, तो ऐसे विषयों पर चर्चा करें, परिवार में बातचीत करें, मोहल्ले में बातचीत करें, लोगों के साथ बातचीत करें, और ऐसे विषयों को अगर हम उठाते हैं तो तत्काल उस पर कार्रवाई करने के लिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्था हमारे शासन में भी व्यवस्था है, इसी तरह से ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जो इस पर काम करने के लिए तत्पर हैं।
2: एक आम नागरिक की तरह अभी अभी मेरे जहन में ये प्रश्न आया है कि ऐसी बहुत सारी चीजें देखकर हमारे को भी उलझन होती है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि अगर कोई पेड़ लगा है तो उसके आसपास कच्ची जो जमीन छोड़ी जाती है उसे जैसे मान लीजिए कि पूरी तरह से सीमेंट से पैक कर दिया गया। अब मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों है, मैं चर्चा भी कर रही हूँ लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं इस पर कोई एक्शन लूँ तो वो कानूनी क्या जानकारी है जो, या ये कहें वो कैसे नियम है जिनके तहत हम कहीं शिकायत कर सकते हैं, हम आम नागरिक की तरह इस बात को आगे भी बढ़ा सकते हैं, सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रह सकते।
3: आपने जो विषय उठाया बड़ा छोटा सा विषय है लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ों के आसपास लगभग 1 से 1.5 मीटर के रेडियस में मिट्टी छोड़ा जाना चाहिए। इस संबंध में आज से 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी इस पर एक गाइडलाइन इसमें दे चुके हैं। वर्ष 2013 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी ये विषय उठा था, क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, जिस तरह से हम सांस लेते हैं पेड़ भी सांस लेते हैं, ये सोच क्यों नहीं है कि वो पेड़ों के आसपास एक मीटर का दायरा हम छोड़ दें ताकि वो सांस ले सके, वहीं से तो अपने भोजन के लिए वो पानी लेंगे, वर्षा का जल वहीं आएगा, और वर्षा का जल अगर वहां आएगा नहीं, उनको जड़ पे पानी नहीं जाएगी, ये एक छोटी सी सोच है। तो ऐसे विषय को अगर आपको ऐसे देखने में आते तो बिना किसी देरी के उस संबंध में उसकी फोटोग्राफ लीजिए और तत्काल संबंधित विभागों को भेजिए और कार्रवाई होती है, अब लोग सजग हो गए।
2: आपने एक अभी नाम लिया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, उसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं?
3: राष्ट्रीय हरित अधिकरण भारत में एक बहुत बड़ी पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका के साथ है। विश्व में 3 ऐसे देश हैं जहां एक्सक्लूसिव एनवायरमेंटल कोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके बाद से भारत। वर्ष 2010 में ये कानून बना था और उसके बाद से लगभग 5 बेंच है पूरे भारत में, जिसमें भोपाल में भी एक बेंच है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 राज्यों के पर्यावरण संबंधित जो भी मामले आते हैं इनका निराकरण यहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल में होता है।
2: हमारे स्टूडियो से बच्चों के लिए कार्यक्रम जाता है और उसमें एक बार एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि वो कैसे पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, तो वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
3: देखिए, बच्चों की बात है, सबसे बड़ी बात है कि हम बच्चों में ये बोध विकसित करने की कोशिश करें कि वो पर्यावरण के प्रति अधिक सजग हो
2: जी,
3: उन्हें आने वाले जीवन अधिक जीना है
2: जी,
3: उनके लिए पूरी की पूरी धरती सब कुछ उनका है, भविष्य उनका है। एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि बच्चों को एक शब्द से जोड़ना चाहिए और उनको अपने अधिकारों की बात करनी चाहिए। पर्यावरण का उनके अधिकार है इंटरजेनरेशनल इक्विटी का, इंटरजेनरेशनल इक्विटी
2: जी।
3: आज जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो रहा है तब तक तो ठीक है, सदुपयोग होगा तब भी ठीक है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग होगा, इसका मतलब ये कि आने वाले बच्चों के भविष्य को हम मारकर भविष्य से समझौता करके उनके हिस्से के जो संसाधन है उसका हम दुरुपयोग करने पर हम उतारू हो चुके हैं। तो ऐसे में ये बच्चों की जिम्मेदारी बनती है, और बच्चों की क्या माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को ये बताएं कि बच्चे आप लोग अपने अधिकारों की बात करो, इंटरजेनरेशनल इक्विटी की बात करो, अपने संसाधन की बात करो, अपने भविष्य की बात करो, और आप अपनी बात ये रखो कि प्राकृतिक जो भी संपदा है इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होनी चाहिए।
2: बिल्कुल, तो हम बाल सभा कार्यक्रम में भी ये बात जरूर बताएंगे कि कैसे बच्चे भी अपने अधिकारों को पहचान कर पर्यावरण के संरक्षण में बहुत महती भूमिका निभा सकते हैं। सर, नीतियां बनाते समय स्थानीय जरूरतों को कैसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि आप इस तरह के केसेस को बहुत सारा देख रहे हैं?
3: पर्यावरण संबंधित नीति बनाने के लिए जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो कि एक नोडल एजेंसी है भारत सरकार की, तो भारत सरकार जब भी नीति बनाती है तो वो नीति के लिए राज्य सरकारों से उस संबंध में चर्चा करती है, और संबंधों में चर्चा करने के उपरांत भारत सरकार ऐसी नीतियां बनाती है। हम किसी भी तरह की नीति की अगर हम बात करें, जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स की बात करें, तो जितने हमारे कोस्टल एरियाज हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2011 नोटिफिकेशन, CRZ नोटिफिकेशन, फिर 2019 नोटिफिकेशन है, इसके बाद से उस नोटिफिकेशन में ये आई कि स्टेट अपने कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएंगे, तो हर राज्य को स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी बनानी है। इसी तरह से अगर हम बात करें सैंड की, सैंड के रूल्स बनाए, तो इस रूल्स में भी भारत सरकार जब नीति बनाती है तो राज्य सरकारों की भूमिका को तय करते हुए बनाती है। ये तो बात हो गई भारत सरकार और राज्य सरकार की, लेकिन एक प्रश्न आपका बड़ा आवश्यक है कि क्या एक राज्य सरकार का एक जो नियम है वो क्या नियम सब पर प्रकृति के मामले में क्या सब जगह उसी तरह से प्रभावी होगा? शायद नहीं, क्योंकि हमारी जलवायु और हमारी जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो एक ही राज्य में ऐसी भौगोलिक स्थितियां हैं कि एकदम बदल जाती है। भोपाल की भौगोलिक स्थिति और रीवा की भौगोलिक स्थिति, ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति और डिंडोरी मंडला की भौगोलिक स्थिति सब बदल जाती है।
2: जी, आपने बोला कि सबकी स्थानीयता के हिसाब से कानून की बात कही, नीतियों की बात कही, ऐसे में एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि जब प्रकृति को लेकर कोई कानून या कोई नीति बनाई जाती है तो क्या वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका भी इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए या होता है?
3: पर्यावरण में फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो फॉरेस्ट के जो पुराने कानून थे और अब और आने वाले दिनों में जो कानून बन रहे हैं उसमें संशोधन हो रही है, ऐसे में तो लोकल लोगों को देखकर और उनके हितों को देखकर बनाए गए हैं, जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है या पेसा का कानून था, तो ऐसे जो कानून है वो लोकल लोगों को देखते हुए उनकी जंगल के प्रति उनसे जुड़ाव और जंगल में किस हद तक उनके अधिकार है, इन सब चीजों को देखकर तो कानून बनाए गए हैं। रही बात बाकी अगर हम पर्यावरण की बातें करते हैं तो उसमें भी जैसे कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप होना है या कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या एरिया डेवलप होना है तो उसके लिए भी कुल मिलाकर जो हमारी नीतियां हैं उस नीतियों में गाइडलाइन बनाए गए हैं जिस गाइडलाइन के तहत उन लोकल समस्याओं को या व्यक्तियों की उपस्थिति और इन सब चीज़ों को देखकर ही वहां पर इंडस्ट्रियल सेटअप भी हो सकता है। तो इस संबंध में भी कानून है और जहां पर लोकल और एकदम ग्राउंड लेवल पर लोगों की समस्या को मीट करने का एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे आपने बोला कि क्या हम लोकल लोगों की नीतियों में हम ध्यान देते कि नहीं देते हैं। यस, जब पर्यावरण स्वीकृति की बात आती है जैसे कोई भी बहुत बड़ा प्लांट लगने वाला है या माइनिंग एक्टिविटी होने वाली है तो ऐसी एक्टिविटी के लिए पर्यावरण स्वीकृति एक कानूनी आवश्यकता है
2: जी।
3: उसके लिए उसे कानूनी तौर से पर्यावरण स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसमें पब्लिक हियरिंग की। पब्लिक हियरिंग का मतलब जब वो प्रोजेक्ट इस जगह पे आएगा तो आसपास के गांव के लोगों को सूचना देकर बुलाई जाती है और उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे बातें रखी जाती है, उनके सवालों का उत्तर देने जाने आवश्यक है ताकि उनके तरफ से कोई उनकी समस्या है, चाहे उनके रोजगार की समस्या होगी या उनकी खेती जमीन छीन जाने की समस्या होगी या पर्यावरण प्रदूषण से उनके जमीनों पर असर आने वाला है, तो उसमें उनकी सहभागिता है। वो अपनी बातों को रखते हैं और उनके बातों को रखने के बाद से जो भी माइनिंग के हैं या जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो उसको संतुष्ट करते हैं। उसके संतोषजनक होने के बाद से भी उनको पर्यावरण स्वीकृति मिलती है, मतलब लोकल लोगों की भी भूमिका आवश्यक होती है।
2: भूमिका की बात तो हो गई लेकिन कुछ नियम होते होंगे कानूनी दृष्टि से भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो आम व्यक्तियों को जानना बहुत जरूरी है, तो क्या कोई ऐसी खास जानकारी है जो हर आम नागरिक को होनी चाहिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर?
3: सबसे पहले तो ये जो पर्यावरण का बोध होना, सोच होना, ये सब सारी चीजें हम अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अपने मोहल्लों में हमको चर्चा का हमेशा विषय रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, रही बात पर्यावरण के कानून की जानकारी, तो जो कानून क्या है, कानून एक सिंपल लॉजिक है। सिंपल लॉजिक अगर आपको कोई समस्या कहीं दिखाई दे रही है उसका समाधान भी है और हर समस्या का कानूनी समाधान भी है। किसी भी तरह का ऐसा जैसे कोई जल को प्रदूषित कोई कर रहा है या वायु प्रदूषण कहीं हो रहा है, ऐसे कोई भी विषय अगर आपके पास आते हैं आज की तारीख में, बहुत सिंपल आप आवेदन के तहत आप कलेक्टर को आवेदन कर सकते हैं, इसी के साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी आप आवेदन भेज सकते हैं। कई बार तो आपके मात्र आवेदन से ही उस मामले को न्यायालय उसको सुमोटो लेकर और उस पर काफी बड़ी कार्रवाई कर चुकी है और कर रही है।
2: आपसे बातचीत करके एक बात तो समझ में आई है कि हमें कहीं ना कहीं पर्यावरण का बोध होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये सारी बातें बेमानी हैं जो हम कर रहे हैं। और क्योंकि एक बहुत अच्छी बात जब सर से मेरी ऑफ द माइक बात हो रही थी वो ये भी थी कि हम हमेशा हमें क्या करना चाहिए या दूसरों को क्या करना चाहिए, उससे बेहतर ये भी है कि हमारी जिम्मेदारी क्या हो। स्व जिम्मेदारी लेना भी एक बहुत बड़ा वो है कि हम कई बार हम सिर्फ इसीलिए बच के निकल जाते हैं चीज़ों से कि कहीं उलझ ना जाएं। जैसे रोड पे भी कोई एक्सीडेंट होता है तो कितनी भी इस चीज़ को लेकर कितनी कार्यशालाएं होती हैं, कितने जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं कि आपको पहले उस आदमी को बचाना है।
3: एकदम सही बात है।
2: आपका सबसे पहला कर्तव्य वो है
3: और तो, इस संबंध में कानून भी अब यही बन गया है।
2: यही बन गया है, लेकिन हम अपनी उलझनों से बचने के लिए कई बार बहुत बड़ी बड़ी कीमत चुका देते हैं, तो बेहतर होगा कि आप छोटी छोटी उलझनों में पड़िए और अपने आसपास की जो बड़ी दिक्कतें हैं उनको समझिए, ना कि बच के रास्ते निकालने की बात करिए।
3: एकदम सही।
2: पर्यावरण संरक्षण को लेकर आप हमारे आम श्रोताओं को जो इस वक्त सुन रहे हैं क्या कहना चाहेंगे?
3: आज के समय में सबसे आवश्यक है कि जिस तरह से हम कंज्यूमरिज्म की तरफ हम भाग रहे हैं, हमें अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को ये चर्चा करना चाहिए कि जो RRR के फॉर्मूले हैं, मैं RRR उस सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं RR में ये बताना चाह रहा हूँ, रिड्यूस, चीजों का सदुपयोग करें, कम से कम उपयोग करें, रिसाइकल पे विचार करें। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रिसाइकल कर देते हैं और रिसाइकल कर उपयोग करते हैं, ये एक बेसिक चीजें हैं
2: जी।
3: और इसके साथ साथ जो और आवश्यक है कि हम ये चीजें हम अपने परिवार के साथ साथ अपने खुद में ये पहले बोध लेके आए, चीजों का दुरुपयोग ना करें, कम से कम चीजों का उपयोग करें, ये एक बेसिक चीज है जो मैं चाहता हूँ कि सबको इस संबंध में बोध होना चाहिए।
2: और कहीं ना कहीं जैसा हर जगह हम सुनते ही हैं कि पेड़ पौधे लगाते रहिए तो बहुत सारी चीज़ों से वैसे ही निजात मिल जाएगी।
3: एकदम।
2: अगर
3: एक
2: हमारे आसपास हरियाली रही तो हो सकता है कि हमको इतने कानूनी दांव पेच में भी उलझना सुलझना ना पड़े। लेकिन क्या कोई गाइडलाइन या कोई कानूनी भाषा में अगर हम कहें तो क्या कुछ आप बता सकते हैं हमारे सुनने वालों को कि वो कहाँ सबसे पहले संपर्क करें अगर उन्हें कोई भी चीज़ दिखती है तो? कोई ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर या कुछ आप बताना चाहेंगे?
3: ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर तो नहीं है पर्यावरण के संबंध में, जैसा मैंने पहले से भी मैंने बताया आपको कि इस संबंध में आप तुरंत लिखना सीखिए, शिकायत करना सीखिए। आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई भी ऐसा विषय है तो इसको लिखकर और आवेदन के माध्यम से आप संबंधित विभाग को आप पत्र लिखिए, एक बार लिखिए, संबंधित विभाग से ऊपर एस्केलेट कीजिए। आपके हर मामले में सुनवाई होती है, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपका एक लिखा हुआ वो जाया जाएगा, उस पर जरूर कार्रवाई होती है। बशर्ते कि आप अपना लिखना या काम करना बंद ना करें, स्वयं लिखे और भेजे।
2: जी, पर्यावरण के लिए आपने बहुत सारे मुकदमे में आप हाजिर रहे हैं, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसके कारण आपको लगा कि आप खुद बहुत संतोषजनक स्थिति में आए हों कि आपकी आवाज़ से कोई स्थितियां और बहुत बेहतर हुई हों, जो आप हमारे दोस्तों के साथ साझा करना चाहें?
3: देवास के पास कुछ पहाड़ियां हैं, एक प्रकरण आया ताकि ये माइनिंग बहुत तेजी से हो रही है, ये पहाड़ियां कट जाएंगी तो जंगल तो फिर से बनाए जाते हैं, पहाड़ी नहीं बनाए जा सकते, तो इस संबंध में एक प्रकरण चला। प्रकरण के बाद से अच्छी बात यह है कि उस पहाड़ी में देवास के लोग, आम जन, स्कूलों के बच्चे, कॉलेज के बच्चे और पास में कई इंडस्ट्रीज जो है, उस इंडस्ट्रीज के भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ तक कि बैंक्स और पुलिस विभाग के लोगों ने भी वहां पे पार्टिसिपेट किया और धीरे धीरे धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा जंगल का रूप ले लिया।
2: जी।
3: जंगल तो मैं बन चुका, लेकिन जंगल की पहचान कागजों में है। कागज में मैं रेवेन्यू लिखा गया था क्योंकि वो रेवेन्यू की जमीन थी। अचानक ये मुझे पता चला कि चूंकि रेवेन्यू की जमीन है इसीलिए रेवेन्यू पर्पस के लिए किसी और को अलॉट कर दिया। वो लोग फिर हमारे पास आए 10 सालों के बाद से। जब 10 साल के बाद से आए थे तो फिर इस प्रकरण को लेके हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गए और ये बताने के लिए मैं जंगल हूँ, उस जंगल में हर तरह के पेड़ पौधे हैं, हर तरह की वनस्पति है, यहाँ तक कि वहाँ वल्चर्स का एक हैबिटेट बन चुका है, वहाँ हाल में चीते भी देखे गए, वहाँ तमाम तरह के जीव जंतु हैं और कुछ वाटर बॉडीज भी हो गए हैं जो कि जलीय जंतुओं के लिए, जंगली जानवरों के लिए, सबके लिए पीने का पानी का स्रोत बन गया है। पूरी तरह से एक मैंने पहाड़ी का रूप ले लिया है। लोग मुझे शंकरगढ़ की पहाड़ी के नाम से पुकारते हैं, लेकिन मेरी पहचान कागजों में रेवेन्यू होने से आज उस मेरी जंगल की कटाई हो रही है। कोर्ट ने मेरी बात सुनी और उस जंगल को जंगल का रूप दे दिया।
2: ये सुनना ही इतना सेटिस्फैक्टरी था, ये जो आपने सफलता की कहानी सुनाई है, इसको सुनते हुए वही साहित्यिक दिमाग अलग तरह से सोचता है कि बाकी सारे केसेस तो ऐसे होते होंगे जहाँ खुद व्यक्ति कह सकता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, पर प्रकृति की आवाज़ ऐसी ही सशक्त आवाज़ें बनती हैं। जैसे मैं हमेशा इस बात को ज़रूर मेंशन करना पसंद करती हूँ कि रेडियो खुद होकर कोई पेड़ नहीं लगा सकता, लेकिन रेडियो पर आने वाली ऐसी सशक्त आवाज़ें हजारों लाखों पेड़ बचा जरूर सकती हैं।
3: जरूर।
2: आप स्टूडियो में आए, इतनी बेहतरीन बातें और आखिर में ये जो सक्सेस स्टोरी है, इसे सुनकर बहुत आनंद आया। दोस्तों, आप हैं ओम शंकर श्रीवास्तव जी, जिनका इतना कीमती समय हमने लेकर आज आपसे बातचीत की और प्रकृति के कानूनी दाव पेचों को जाना कि किस तरह हम पर्यावरण संरक्षण के कदम में एक कानूनी सहारा और सहायता भी ले सकते हैं। इसी के साथ प्रकृति की पुकार कार्यक्रम अब यहीं समाप्त तो होता है। सर, आपका एक बार पुनः शुक्रिया स्टूडियो आने।
3: आपका भी धन्यवाद और आभार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंतानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और आपके साथ मैं थी आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। श्रोताओं, आशा है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर इस कार्यक्रम को लेकर आपके कोई सुझाव या अगर आप अपने मन की कोई भी बात हमसे कहना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioazadhind@gmail.com। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है 90.8 MHz पर। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।
4: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम, कुछ ना भी मिला तो क्या तजुर्बा तो नया होगा।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: मूलतः भाव को पकड़ने के बजाय सबके केंद्र में आपके धन आ जाता है, तो धन से तमाम सारे विकार आपके मन में भी जन्म लेते हैं और धनवान व्यक्ति हमेशा सशंकित और चौकन्ना रहता है कि कहीं उससे कोई कुछ मांग न ले।
1: तो क्या मनुष्य को मलिन बनाने का काम धन संपत्ति ही से होता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि मनुष्य के चित्त को जो धूमिल करता है, जो उसके चित्त पर धूल आता है, वो धन के कारण आता है। आप सामान्य तौर पर विचार करें कि जैसे आपके पास धन है और आपके जानने वाले लोगों को ये पता चल गया कि आप धनवान हैं। तो फिर ऐसे में जैसे ही लोग आपके पास आएंगे तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे मिलने आ रहे हैं?
1: हाँ, वो भावनाओं का जुड़ाव नहीं रहेगा।
0: आपको लगता है कि ये जो अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, भले वो अच्छे भाव में हो, लेकिन आपको लगता है ये किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए कर रहा है या मुझसे ये कुछ चाहता है। आप अक्सर ये देखेंगे व्यवहार में, जीवन व्यवहार में देखिए तो मनुष्य कहता भी है और कहते भी हम लोग हैं कि आपको लोग नहीं चाहते तब जब आपके पास संपन्नता आती है, तब आपसे चाहते हैं। और जब आपके पास संपन्नता नहीं होती है, या कहा भी जाता है कि आप देखिए कि जब आपके पास धन नहीं होता है तब सही लोगों की पहचान होती है कि कोई आपको चाहता है या फिर आपसे चाहता है। तो मित्रों की परख, गोस्वामी जी ने लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परीख उचारी। तो जब आपत्ति का समय हो, अनुकूल समय में तो सब आपके प्रेमी हैं और सब लगेंगे कि जैसे आपके लिए ही जी रहे हैं, लेकिन अगर कहीं लक्ष्मी से आपका वियोग हो गया, धन संपत्ति का अभाव हो गया, तो उस समय आप देखिए कि आपके पास कितने लोग हैं। शायद आदमी अपने लोगों से भी दूर हो जाता है और अपने लोग भी आपसे दूर हो जाते हैं। तो ये चित्त में जो मलिनता का कारण है, जैसे कहते हैं मुट्ठी भर धूल मड़ियों को मलिन कर देती है, ऐसे ही संपत्ति जो है मनुष्य के चित्त को मलिन कर देती है। लेकिन इसके लिए बहुत विवेक की जरूरत है, वैराग्य की जरूरत है।
1: लेकिन धन संपत्ति को लेकर जो आज वर्तमान समय में जो आम आदमी की सोच है वो इसके ठीक उलट है। है ना, वो समझते हैं कि धन संपत्ति से ही सुख की प्राप्ति होती है। योग वासिष्ठ में क्या कहा गया है?
0: योग वासिष्ठ में कहा गया है कि ये धन संपत्ति उसी प्रकार है जैसे बड़े बड़े विद्वान, शूरवीर, कृतज्ञ, सुंदर, कोमल स्वभाव वाले पुरुषों को भी कलंकित कर देता है ये। मतलब आप इसके सामने कभी भी चाहें कि अपने चित्त की शुचिता बचा के रखें तो ये धन संपत्ति होने की वजह से ये रह नहीं सकता। और इस पर मैं आपको कथानक कहूं, ऐसा कहा जाता है कि एक महात्मा थे तो उनको किसी राजा ने कुछ स्वर्ण मोहरों का दान कर दिया। तो जब वो चलने लगे तो इसके पहले बड़े निश्चिंत रहते थे वो, लेकिन उस समय उनका चित्त बड़ा व्यथित था, कहीं कोई मुझे लूट न ले, कहीं कोई बदमाश ना आ जाए। अब ये सारे ख्याल क्यों आए? क्योंकि आपके पास कोई ऐसी चीज आ गई है जिसकी जरूरत लोगों को है, जिससे लोगों की जरूरत पूरी हो सकती है। तो फिर आपने क्या किया, आपने अपनी स्वाभाविक दशा खो दी। तो शिष्य को लगा कि महाराज तो ऐसे थे नहीं, आज क्या हो गया इनको। तो उसको लगता है कि जैसे राजा के द्वारा दी गई जो मुहर है उसके प्रभाव में आ गए हैं। तो जब थोड़ा शाम होने लगा, सूर्यास्त होने का समय आया, तो उन्होंने शिष्य से कहा कि थोड़ा और तेज चलो क्योंकि जल्दी पहुंचना है गांव में। तो शिष्य समझ गया महाराज की व्यग्रता का कारण, जो चित्त उनका जो विचलित था। तो कहा, महाराज मैंने वो कारण ही मिटा दिया है जिस कारण की वजह से आपके चित्त में ये भय समाया हुआ है। मैंने उस स्वर्ण मोहरों को बाहर फेंक दिया। वो थोड़ा सा झुझलाए लेकिन एक पल के लिए फिर उन्हें होश आया, कहा ठीक ही हुआ, आखिर मेरे चित्त में विचलन का कारण ये धनी था। और रामकृष्ण

0: भी इसी दृष्टि से कहीं ना कहीं ग्रसित हैं। और एक बार हम विचार करके देखें, आत्मन्वेषण करें, तो हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं संसार की अपेक्षाओं को पूरा करने की कामना लेकर, तो आप देखिए हमारी कितनी रुचि भगवान में होती है। सच यह है कि बार बार ध्यान हमारा अपनी अपेक्षाओं पर रहता है, कामनाओं पर रहता है। तो ये सारी कामनाओं की जड़ ये संपत्ति ही तो है। अगर आपके पास संपत्ति न हो तो आप घर से बाजार नहीं जाएंगे, और संपत्ति आते ही आपको बार बार बाजार का चिंतन आएगा कि कहाँ चले, क्या खरीदें। तो ये वो चित्त को विचलित कर देता है, मलिन कर देता है।
1: चाहे संपत्ति की बात करें, चाहे आकांक्षाओं की बात करें, चाहनाओं की बात करें, दूर कर
0: जी बिल्कुल।
1: तो खुद का एक अगर हम ईमानदार विश्लेषण करना चाहें कि हम धन को लेकर किस तरह की दृष्टि रखते हैं, तो इसमें कुछ दुर्लभ पुरुष की भी चर्चा हुई है, तो मैं चाहती हूँ वो आप जरूर बताएं।
0: हाँ, इसके लिए बहुत अच्छा योग वासिष्ठ में राम जी ने कहा है। राम जी ने कहा है कि जो मैंने देखा इस जगत को, वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, कि जो मैंने जगत को देखा उसमें तीन तरह के लोग मिले। वो कैसे मिले? कहते हैं जो धन संपत्ति से युक्त होकर भी जनता की निंदा का पात्र न हो, ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। अब देखिए कितनी बड़ी बात है ये। आज के समय में अगर इस एक लाइन पर आप विचार करें
1: जी जी जी,
0: कि आपकी निंदा ही तब होती है
1: जब आप
0: संपन्न होते हैं,
1: धनवान हो जाते हैं। बिल्कुल।
0: तो कहते हैं कि ऐसा आदमी दुर्लभ है जिसके पास धन संपत्ति हो और उसकी निंदा
1: ना हो। बिल्कुल।
0: लोग बाग तो ये तक कहते हैं कि अरे वो कैसे धन संपत्ति आया मैं जानता हूँ, मतलब नहीं आपको मिला और उनको मिल गया तो वो निंदा के पात्र हो गए। आपके पास होता तो आप सम्मान के पात्र होते। तो ऐसी दृष्टि आपको देखने को मिलेगी सामान्य तौर पर। तो कहते हैं ऐसा आदमी हमने नहीं देखा कि जिसके पास संपत्ति हो और निंदा का पात्र न हो।
1: जी, जी, जी।
0: फिर कहते हैं कि शूरवीर हो और अपने मुंह से बढ़ा चढ़ाकर अपनी प्रशंसा न करता हो।
1: अच्छा,
0: आप देखेंगे कि अगर थोड़ी बहुत आपने शक्ति आई तो आदमी यथार्थ नहीं बताता, उसमें दो चार जोड़ के बताता है ताकि और वो प्रशंसनीय हो सके। तो कहते हैं कि ऐसा भी आदमी दुर्लभ है। एक ऐसा आदमी दुर्लभ है कि धन संपत्ति हो और निंदा का पात्र न हो, और शूरवीर हो और अपनी शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर न बताए, ऐसा आदमी भी
1: दुर्लभ है।
0: कहते हैं और एक आदमी ऐसा भी जो स्वामी होकर भी समस्त सेवकों अथवा प्रजाजनों पर समान दृष्टि रखता हो। जैसे ही आपके अंदर स्वामित्व का भाव आता है आपके दृष्टि में विषमता आ जाती
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और आप विषम दृष्टिकोण से देखने लगते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ और ये, तो कहते हैं ये लोग दुर्लभ हैं। तीन तरह के लोग दुर्लभ हैं जिनमें स्वामित्व का भाव है और उनके पास विषम दृष्टि ना हो, और जिनके पास संपत्ति हो निंदा के पात्र ना हो, और आदमी शूरवीर हो और अपनी वीरता को बढ़ा चढ़ा के ना बताए, तो ये दुर्लभ लोग हैं।
1: जी, जी।
0: इस पैरामीटर पर अगर आज के समय में आप लोगों को देखें तो मैक्सिमम लोग आपको इसी तरह के मिलेंगे जो ऐसा करते हैं, यानी ये दुर्लभता आज भी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, इस जीवन में भय और भ्रांति का क्या कारण है?
0: भय और भ्रांति का कारण जो अभी हम लोगों ने पहले भी बात की, धन संपत्ति भय और भ्रांति रूपी विषय को बढ़ाने वाला है। ऐसा राम जी ने साफ कह दिया कि मैंने जो जगत देखा उसमें धन संपत्ति ने ही व्यक्ति को भय और भ्रांति में डाल रखा है। भ्रांति का मतलब ये हुआ कि जैसे धन से हम संसार में सुख प्राप्त करेंगे जबकि धन से असंतोष प्राप्त होता है और असंतोष दुख ही देता है।
1: जी, जी, जी।
0: संतोष धन के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती और धन कभी संतुष्ट करता नहीं है, तो एक प्रकार की भ्रांति ने जन्म दिया इसको। और भय ये है कि जब आपके पास कुछ खोने को होता है तभी आप भयभीत होते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो धन जब आपके पास आता है वो आते ही सबसे पहले आपको भयभीत करता है कि कहीं आपसे ये छिन न जाए क्योंकि आपके पास इकट्ठा हुआ है। इसके लिए कथा भी आती है, आप गांव में लोग सुनाते हैं कि एक बड़ा पहलवान था, वो था तो बहुत गरीब लेकिन बहुत निश्चिंत रहता था और उसको कोई हरा नहीं पाता था। तो एक दिन जो वहां के सामंत लोग थे वो पूछे कि इसकी इस ताकत की वजह क्या है, तो कहा साहब उसको चिंता नहीं है इसलिए ये ऐसे रहता है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, एक दिन जाओ उसको 99 रुपए दो
1: चिंतित करो
0: उसे। तो 99 जैसे ही आपके पास आएगा अब आप खर्च करने नहीं एक को जोड़ने की सोचेंगे ताकि 100 हो जाए।
1: हाँ, है
0: ना? तो वो कहते हैं ना कि 99 के चक्कर में लोग फंसे हैं, तो यही है 99 का चक्कर कि जहां आप जोड़ने पर संग्रह पर लग जाए तो संपत्ति जो है ये आपको संग्रह करने की तरफ ले जाती है। तो हालांकि ये गलत नहीं है, संग्रही होना चाहिए, इसका कभी भी हमें सही और गलत के संदर्भ में इसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। एक दृष्टि की दृष्टि से देखना चाहिए कि वास्तव में जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं क्या वो हमारे सुख की वजह है, और अगर हमारे पास नहीं है तो जिनके पास है उनको तो सुखी होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो जब उनको भी आप देखेंगे तो ऐसे में देखेंगे चित्त आपका शांत हो जाएगा। देखिए चित्त की शांति का एक मूल कारण है वैराग्य। इसीलिए योग वासिष्ठ जैसा ग्रंथ या कभी भी योग की शुरुआत हमेशा वैराग्य से होती है। वैराग्य का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप संसार को छोड़ करके कहीं दूर भागें। वैराग्य का अर्थ ये है कि आपके चित्त को संसार जिन कारणों से मलिन करे, दूषित करे, उन कारणों को सही अर्थों में समझ करके अपने चित्त को दूषण से बचा लें। इसका नाम है वैराग्य। और इसी का अभ्यास करके आप अपने चित्त की चंचलता को रोक सकते हैं। एकाग्रता आप में विकसित हो सकती है। और जीवन में जब एकाग्रता आती है तो बहुत सारी चीजें अपने आप अर्जित हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसी को भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कि तुम अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस जो चित्त को अपने वश में कर सकते हैं। तो वैराग्य प्रकरण ये आता है। तो चित्त जो है ये संपत्ति भय और भ्रांति रूपी बादलों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाली है। ऐसा साफ साफ राम जी कह रहे हैं, राम जी को देखने में ऐसा आया। और ये विषाद रूपी विष को बढ़ाती है और व्यक्ति के जीवन में तमाम संकल्पों का विकल्प खड़ा करती है। आप देखिए संपत्ति के नाते हम बहुत सारे विकल्प खड़ा करते हैं, ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, तो ये विकल्पों में ले जाती है। इसलिए आप एक ऐसी यात्रा में शामिल हो जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है।
1: योग वासिष्ठ में क्या बताया गया है कि अनर्थकारी जो कर्म है उनका जन्मदाता कौन है?
0: अनर्थकारी कर्मों का जन्मदाता अर्थ है। ये योग वासिष्ठ में राम जी कहते हैं कि जो ये अर्थ है यही व्यक्ति को अनर्थ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आज के समय में भी देखें तो तमाम सारे जो जांच होने के बाद कुछ लोगों के पास जो संपत्ति मिलती है उसमें आप देखिए तो वो जो अनर्थकारी कर्म उन्होंने किया है किसके लिए किया है? अर्थ के लिए किया है। उससे अर्थ ही प्राप्त हुआ है और उस अर्थ ने उनका पूरा साम्राज्य व्यर्थ कर दिया। तो ये अनर्थकारी ही कर्म तो हुआ। अनर्थकारी कर्म करके अर्थ इकट्ठा हुआ और फिर इकट्ठा अर्थ ने अनर्थकारी कर्म का रूप ले लिया और आप समाज में किसी लायक नहीं बचे, है ना, कोई प्रतिष्ठा नहीं बची। तो इस तरीके से अगर देखें तो धन का ये महत्व जो लोग जानते हैं, जो विवेकवान पुरुष हैं, वो धन के इस प्रभाव से अपने को मुक्त कर पाते हैं, या जो धन के प्रति वैराग्य का भाव उनके अंदर है वो सदा बना रहता है, तो इसलिए वो उसका अर्थकारी उपयोग करते हैं।
1: तो अर्थ से अनर्थ है और अनर्थ से सब व्यर्थ है।
0: हाँ हाँ जी, अनर्थ से सब व्यर्थ है।
1: आयु के संबंध में भी योग वासिष्ठ में बात हुई है। क्या आयु मनुष्य के जीवन में क्लेश का कारण हो सकती है?
0: बिल्कुल, आयु ही मनुष्य के जीवन में क्लेश का कारण बनती है, क्योंकि महापुरुषों की आयु लाभ हानि सुख दुख में चित्त को समान भाव से सुस्थिर रखने वाली होने के कारण सुखदायिनी है। यानी जो महापुरुष लोग हैं उनकी आयु सुखदायिनी है, लेकिन जो लोग विवेकवान नहीं हैं उनके आयु में आप देखें तो वो सुख को पाना चाहते हैं, दुख से अपने आप को बचाना चाहते हैं, मतलब सुख दुख के प्रति उनके अंदर समदृष्टि नहीं है। जबकि सच ये है कि सुख और दुख दोनों आपके आयु को खाते हैं। जिसको कहा जाता है ना रात दिन, ये दो काले और सफेद चूहे हैं जिसको काल भी कहा गया है, जो आपकी आयु को कुतर रहे हैं। तो अगर देखें तो सारे क्लेश का कारण जो है ये आयु है। अब ऐसे में क्लेश से बचने का उपाय क्या है? तो कहते हैं कि वो सुख दुख में चित्त को समान भाव से स्थिर रखा जाए, योग की सिद्धि की जाए, जो समत्वम योग उच्चते भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। तो उस समान बुद्धि वाली जब दृष्टि आपकी होगी, उस बुद्धि से जब आप युक्त होंगे जिसमें सुख दुख समान भाव से आप ग्रहण कर सकें, तो फिर आपके लिए आयु सुखकारी है और ऐसा महापुरुषों के साथ है। अन्यथा ऐसी दृष्टि अगर नहीं है, सुख दुख में विषम भाव है, तो ये जो दुख आयु है ये क्लेश का ही कारण है। ये दुख ही देगी, अहंकार की वृत्ति को बढ़ाएगी और अंततः व्यक्ति सुख दुख राग द्वेष में अपना जीवन व्यतीत कर देगा।
1: तो जीवन को लेकर महापुरुषों का जो भाव है वो इस तरह का होता है। संत कबीरदास ने भी अमनी भाव दशा का जिक्र किया है और योग वासिष्ठ में भी ये बात आती है।
0: जी।
1: तो मैं चाहती हूँ कि इसको थोड़ा सा हमारे सुनने वालों के लिए आप इसकी व्याख्या करें।
0: देखिए अमनी मतलब कहते हैं ये कि मन से मनन करके आप अमनी दशा को प्राप्त हो जाएं।
1: मन से मनन
0: करके अमनी दशा, अब देखिए इसको थोड़ा समझिए, ये अमनी दशा कबीर साहब भी कहते थे अमनी भाव। अमनी भाव का मतलब जहां मन अब क्रियाशील नहीं है, मन में अब वेग नहीं आ रहे हैं। जब अमनी की बात आई तो मुझे एक दोहा याद आ गया जिसमें कहते हैं कि लहरें ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत।
1: अच्छा,
0: अब देखिए लहरें अगर पानी को खोजने लगें और कपड़ा सूत को खोजने लगे, क्योंकि सूत से ही तो बना है,
1: उसी से बना है,
0: और जीव ब्रह्म को खोजने लगे तो जीव ब्रह्म ही तो है, अज्ञानतावश जीव बना हुआ है।
1: जी जी।
0: तो ये एक प्रकार की क्या है, इसको कहते हैं ये दोनों जो है मूर्ख हैं, दोनों जो है ये कोई बहुत बुद्धिमान नहीं है, इसलिए भगवान की खोज तक भी नहीं होनी चाहिए, यानी मन ही भगवान खोजता है। अमनी दशा में भगवान की भी खोज नहीं होती और ये मनन करके, ये चूंकि जिसके मनन किया है ये मनन में ही ये दोहा बोला गया है कि लहरें पानी से बनी है, सूत से कपड़ा बना है और ब्रह्म ही जीव अविद्या के कारण बना हुआ है। तो ऐसे में ये जो ज्ञानी लोग हैं ये मन से इस बात का मनन करके अपनी को अमनी दशा में लाते हैं, यानी फिर वहां मन का प्रभाव नहीं होता, मन लहरों की तरह ऊपर नीचे नहीं आता, मन डोलता नहीं है।
1: जी जी,
0: जिसको कबीर साहब कहते हैं मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, है ना, हीरा पायो गांट कटियायो बार बार फिर क्यों खोले। तो अमनी दशा मतलब हीरा की प्राप्ति, अब उसको फिर बार बार आपको खोलने और जांचने की जरूरत नहीं है। हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, तो मान सरोवर की दशा है अमनी दशा।
1: जी जी जी। शशिकांत जी बहुत ही अच्छी चर्चा रही आज की, मुझे लगता है कि हमारे जो सुनने वाले हैं उन्हें बहुत पसंद आई होगी। अगले अंक में फिर आपसे भेंट होगी, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, आज योग संवाद कार्यक्रम में हमने चर्चा की धन संपत्ति के वास्तविक स्वरूप पर। उम्मीद है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें, नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है। सुनकर

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे शहीद भगत सिंह प्ले के संपादित अंश।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शहीद भगत सिंह नाटक के संपादित अंश।

0: जिसका मंचन हुआ 23 मार्च यानी शहीद दिवस के मौके पर। इस नाटक का निर्देशन किया सुंदरलाल मालवीय ने। यह प्रस्तुति रही मार्च शैली में। ये इस कार्यक्रम का पहला भाग है।
1: तो देवियों और सज्जनों, शहीद भगत सिंह के बलिदान को हम लोक स्वर में कहने जा रहे हैं। पंजाब की मिट्टी के लाल को मालवा की मिट्टी की ओर से एक भावांजलि है ये। आप जानते ही हैं कि मार्च मालवा की लोक संस्कृति का परिचायक है, जिसका इतिहास लगभग 300 साल पुराना है। हम आपको बता दें कि मार्च में गायन और अभिनय साथ साथ होता है। कथानक के संवाद गायन के साथ आगे बढ़ते हैं। परंपरागत रूप से मार्च में स्त्री पात्र को भी पुरुष ही निभाया करते थे, लेकिन अब मुख्य स्त्री पात्र को स्त्रियां भी निभाती हैं। हारमोनियम, ढोल, नगाड़ा, सारंगी और बांसुरी के साथ कई लयकारियों और अलग अलग तालों में मार्च का खेल आकार लेता है। देवी और सज्जनों, मार्च का एक रोचक पूर्व रंग होता है, जिसमें जर्जर की स्थापना, जय जयकार, पात्रों की सलामी यानी परिचय और लोक देवता भैरवनाथ की वंदना का क्रम होता है, और फिर मार्च की गजल गाई जाती है। इसके बाद बेढप आता है, परिचय देता है, भिष्टी को बुलाता है, छिड़काव करवाता है, फिर भर्रासन को जाजन बिछाने के लिए बुलाता है, यूं ठाट बाट जमाता है और कहानी आगे बढ़ती है। तो इस तरह मार्च मालवा की एक समृद्ध लोक नाट्य परंपरा है, जिसके साक्षी आप बनेंगे मालवा की माटी की सुगंध के साथ। तो लीजिए, प्रस्तुत है मार्च शैली में नाटक शहीद भगत सिंह।

अरे वाह वाह वाह वाह वाह, अरे बड़ा बड़ा लोग आया है, तो मांस देखो सारू। हाँ तो यहाँ पे सबसे पहले अपने कहीं करना है तरी ने छुटकाव कर ही देना, तो इक्का लिए सबसे पहले भिष्टी जी के बोलो। अरे ओ भिष्टी जी ओ।

0: अरे मैडम साहब, बोलो क्यों आवाज दे गया था?
1: अरे ऐसा है क्या, यहाँ अमर शहीद सरदार भगत सिंह जी की सवारी आने वाली है।
0: अरे भगत सिंह जी की सवारी आ रही
1: है?
0: अरे बात करी थी
1: तुम्हारा भाग खुली क्या भाग?
0: अरे वाह,
1: तुम्हारा कई काम मिले मालूम?
0: हाँ।
1: अरे यहाँ पे तरी ने छिड़काव करना है।
0: ऐसा
1: हाँ।

0: बेढक।
1: अरे मारो बेढक, खून बेढक ने कैसे बेढक?
0: हेलो, इतनी जल्दी भूली गया? आ तो जा सगली बच्चा घर में से चल लो रही। अरे बाहर आ, यहाँ तू बता वो सखी सहेली के लेता
1: लो जानी है मावा पे।
0: आ

0: मैं भी आएगी ना सबके बुलाई लाई। बताओ कई काम पड़ेगी जो हम सबके बुलाई।
1: इसमें भाभी साहब क्या यहाँ सरदार भगत सिंह जी की सवारी आने वाली?
0: अरे वाह।
1: हाँ मैं आपके यहाँ पे जाजा बिछाई।
0: लो अभी बिछाई था।
1: हाँ बिछाओ बिछाओ।

0: बगी ना तेरी।
1: हाँ
0: अच्छा ये बताओ, क्या कौन सा देवी देवता को पूजित करो?
1: लो यो भी सुनावा
0: सुना।

0: गणपति भगवान ने सरस्वती माता का पूजन करो। हाँ, मैं आत्मा से परमात्मा तक की बात करूँ। अरे वाह, तो अब हमारे यो बताओ, क्या आपके जाजर में और कई कई विशेषता
1: लो, यो भी सुनावा
0: सुनाओ।

0: आपका जो है आपकी जाजम में सात रंग है ना, वो जीवन में जैसे निर्गुण को प्रकाश फैले है सात रंग को, वैसे प्रकाश आपके की जाजम में है, वो आपको काम हुई हो, अभी आप जाइए।
1: अरे हमारा काम हुई क्यों? हाँ।

चलो अब सगलो काम हो गया। अब तो बस एक इंतजार है कि सरदार भगत सिंह जी की सवारी आई जाए। वाह वाह वाह बस। अरे अरे लो भगत सिंह जी की सवारी आई आएगी तो बोलो इनकलाब।

0: जिंदाबाद
1: इनकलाब
0: जिंदाबाद
1: जिंदाबाद जिंदाबाद बेटा इनकलाब जिंदाबाद। कई बात है, तू भी क्रांतिकारी हुई क्या?
2: अरे क्या, अरे क्रांतिकारी हुई जो इतनी मारी हैसियत का?
1: अरे
2: मैं तो बस आपका साथे रह रही के नारों लगाना सीखी जाऊँ। योज बहुत है
1: हमारा साथे अच्छा।

0: बेटे कई सुनियो।
1: अरे हमने सुनियो कि आप आजादी का दीवाना हो, ने आपको नाम भगत सिंह है।
0: फिर
1: अब माने यो बताओ कि आपका माता पिता कौन है, ने आपको जन्म कहाँ हो।
0: यो भी सुनो।
1: सुना

0: नहीं सुनी।
1: आपने क्योंकि आपको जनाब 1907 में वो ने आपके पिताजी का नाम किशन सिंह जी ने माता जी का नाम विद्यापति
0: एकदम सही।
1: अब हमारे आप यो बताओ कि आपका गुरु जी कौन है?
0: पहला हमारा भाई बहन का बारे में।
1: अरे हाँ हाँ, पूरे परिवार को तो मालूम पड़ना चाहिए। तो आप हमारे ये बताओ कि आपका भाई बहन कितना है, ना आपका काका जी कहीं करें
0: जो भी सुनो।

0: ऐसा कहीं सुनियो।
1: अरे आपने, क्योंकि आपको दो भाई एक बहन, एक जो आपको कहो जो क्रांतिकारी
0: क्रांतिकारी,
1: अब तो बताइए तो मारे कि आपको गुरुजी कौन है,
0: उनको भी नाम सुनो
1: ना।

0: आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नाटक शहीद भगत सिंह के संपादित अंश। ये इस कार्यक्रम का पहला भाग था। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज आपने सुना शहीद भगत सिंह प्ले के संपादित अंश। ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम परिक्रमा। परिक्रमा सुनने वाले सभी साथियों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की, साथ ही जानकारी देंगे मौसम की भी। तो बने रहें 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। क्या विज्ञान और इतिहास मिलकर एक बंटी हुई दुनिया को जोड़ सकते हैं? इस सवाल का बेहद खूबसूरत और जीवंत जवाब रविवार को भोपाल के आंचलिक विज्ञान केंद्र में देखने को मिला। जी हां, अवसर था विज्ञान संग्रहालय दिवस 2026 का। इस वर्ष की बेहद प्रासंगिक थीम म्यूजियम यूनाइटिंग अ डिवाइडेड वर्ल्ड को चरितार्थ करते हुए यहाँ विज्ञान, संस्कृति और विरासत का एक ऐसा अनूठा संगम देखने को मिला जिसने हर उम्र के आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सबसे बड़ा आकर्षण बना GSI का स्टॉल। यहाँ लगी खनिजों एवं शैलों की पहचान प्रदर्शनी में आम लोग और बच्चे केवल पत्थरों को देख नहीं रहे थे, बल्कि वैज्ञानिक डेमोन्स्ट्रेशन किट के जरिए उनके भीतर छुपे पृथ्वी के अरबों साल पुराने इतिहास को डिकोड कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर ASI के पंडाल में कदम रखते ही लोग इतिहास के गलियारों में खो गए। वहीं मुरैना के ऐतिहासिक बटेश्वर मंदिर समूह के जीर्ण उद्धार और संरक्षण की गाथा को देखकर हर कोई ये सोचने लगा कि कैसे बिखरे हुए मलबे से इन मंदिरों को दोबारा नया जीवन दिया गया है। भारतीय संत परंपरा की आध्यात्मिक चेतना, प्रेम और समरसता के संदेश को सुरों के माध्यम से महसूस करने के लिए राजधानी का कला जगत सजने जा रहा है। बहुकला केंद्र भारत भवन में आगामी 22 से 24 मई तक 3 दिवसीय संतवाणी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। भक्ति संगीत और काव्य चेतना पर आधारित इस सांगीतिक उत्सव में हर दिन संध्या 7 बजे से सुरों की एक शाम सजेगी, जहां संत कवियों के आम भक्ति पद श्रोताओं के दिलों को छुएंगे। प्रभात साहित्य परिषद द्वारा हिंदी भवन में चेहरे विषय पर काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। राजधानी का रविंद्र भवन परिसर सोमवार की शाम नन्हे कलाकारों की मासूमियत, रचनात्मकता और जीवंत अभिनय का गवाह बना। अवसर था मध्य प्रदेश संस्कृति संचालनालय के सहयोग से सगन सोसाइटी फॉर कल्चरल एवं वेलफेयर द्वारा आयोजित बालमन नाट्य समारोह का। अंजनी सभागार में शाम 7 बजे से सजे इस मंच पर जब बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया तो पूरा प्रेक्षागृह तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। समारोह में नाटक, नृत्य, नाटिका और मनमोहक नृत्य के जरिए मनोरंजन के साथ साथ समाज को बड़े संदेश भी दिए गए। क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की ओर से 5वीं से 10वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए समर नेचर स्टडी कैंप आयोजित किया गया। ये नेचर कैंप 5 जून तक चलेगा। पहले दिन सोमवार को प्रतिभागियों को प्रकृति के मायने समझाए गए। इस मौके पर बच्चों को ताना बाना दीर्घा, कंकाल दीर्घा, अंधेरे में जंगल दीर्घा, खोज केंद्र, मुक्ताकाश प्रदर्श, नवभूमि, पारंपरिक संरक्षण, डायनासोर, औषधीय उद्यान का विजिट कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर मानव संग्रहालय और क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र की ओर से एस्ट्रोनाइट IGRMS की पहाड़ियों से तारामंडल अवलोकन आयोजित किया गया। आनंदम सेंटर में सोमवार को कैलीग्राफी वर्कशॉप का आयोजन किया गया। और श्रोताओं, आप जा सकते हैं एक्टिंग किंग वर्कशॉप में मायाराम सृजन स्मृति भवन में शाम 5 बजे से। स्वप्न नयन चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप 7 हिल स्कूल दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक होगा। शलाखा चित्र प्रदर्शनी आप देख सकते हैं जनजातीय संग्रहालय में दोपहर 12 बजे से। और अब एक नज़र मौसम पर। शहर में आज लू चलने की संभावना है। दिन के तापमान में इजाफा होने के आसार हैं। दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री और रात का न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री रहने की संभावना है।

परिक्रमा में आज बस इतना ही। रखिए अपना और अपने अपनों का खास ख्याल। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अगला कार्यक्रम एक छोटी सी अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं, वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मध्य प्रदेश गान।

अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश गान 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

कि मैं हूँ मुकेश खन्ना, आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं कि हम हैं लल्लन जी। अरे लापता गंजे वाले, पीडब्ल्यूडी में काम करते, पीडब्ल्यूडी में कौन ऐसे वैसे आदमी नहीं बताए दे रहे। हाँ नहीं तो, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर अपनी ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आजाद हिंद

स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: आवाज के इस ऐतिहासिक मंच से आज फिर आजाद हिंद रेडियो के इस कार्यक्रम में मैं इतिहास
1: और मैं इतिहास की सतत साथ ही तारीख आपका अभिनंदन करते हैं। आज हम आपके समक्ष आज के हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत को लाने जा रहे हैं जो समाज सेवा के पथ पर चलते चलते बस कुछ ही समय पहले इस दुनिया की मंजिल से कहीं आगे निकल गई हैं।
0: एक ऐसी महिला जिसने अपना सारा जीवन अपने देश और अपने समाज के नाम कर दिया था, स्वर्गीय निर्मला देशपांडे जी।
1: इतिहास निर्मला देशपांडे जी ने अपना संपूर्ण जीवन गांधीवादी विचारधारा को समर्पित कर दिया था। उनके दैनिक कामकाज में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जो गांधी जी या विनोबा भावे जी के विचारों से पृथक हो।
0: बिल्कुल तारीख, अगर उनके दैनिक जीवन को याद किया जाए तो लगता है कि उनके जीवन में समाज या देश की सेवा के अतिरिक्त कोई और काम था ही नहीं। जीवन पर्यंत सिर्फ यही उनकी रुचि रही, यही उद्देश्य और यही आराधना।

0: निर्मला जी का जन्म नागपुर में विमला और पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे के घर 19 अक्टूबर 1929 को हुआ था। 11 वर्ष की उम्र से ही निर्मला जी को गुड़ियों से खेलने के बजाय अपने आसपास के लोगों की सेवा करने में आनंद आता था। तब से जीवन के अंत तक बिना किसी पुरस्कार या पारिश्रमिक की आशा के वो अपना कार्य सतत करती रहीं। अपने विद्यार्थी जीवन से ही निर्मला जी गांधी जी के सादे जीवन और ऊंचे आदर्शों से बहुत प्रभावित थीं। एक बार जब उन्हें विनोबा भावे जी से मिलने का अवसर मिला तो निर्मला जी ने उस छोटी सी उम्र में ही विनोबा जी से देश सेवा करने की इच्छा व्यक्त की। उस समय विनोबा जी ने उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने की सलाह दी और फिर एक दिन निर्मला जी ने एमए पूरा करते ही विनोबा जी के चरणों को अपनी सतत समाज सेवा के पद का पहला पड़ाव बना लिया।
1: विनोबा जी के सानिध्य में आते ही निर्मला जी विनोबा जी और गांधी जी के अहिंसात्मक सिद्धांतों का पालन करने लगी। खादी पहनने, सूत कातने, शाकाहारी भोजन करने और सत्य का पालन करने जैसे नियम वैसे भी निर्मला जी के लिए कोई नए तो थे नहीं, क्योंकि ये नियम तो उन्हें अपने देशभक्त माता पिता से ही सीखने को मिले थे। निर्मला जी के पिता को मराठी साहित्य अनामिकाची चिंतनिका में उत्कृष्ट काम के लिए 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था।
0: जिस समय निर्मला जी ने विनोबा जी का सानिध्य प्राप्त किया उस समय विनोबा जी भूदान आंदोलन में व्यस्त थे। विनोबा जी ने निर्मला जी को जो सबसे पहला महत्वपूर्ण काम सौंपा वह था इस आंदोलन के अंतर्गत पढ़ने लिखने का काम। ये काम महत्वपूर्ण और उनकी रुचि का तो था, लेकिन वो जमीनी स्तर पर समाज सेवा करने के लिए छटपटाती रहती और जब भी उन्हें ऐसा कोई अवसर मिलता तुरंत उसे पूर्ण करने के लिए दौड़ पड़ती।
1: फिर भी तारीख निर्मला जी ने भूदान आंदोलन के दौरान अपने आचार्य विनोबा भावे जी के विचारों को लिपिबद्ध किया और समय समय पर होने वाले उनके भाषणों को भी लिख लिया। उन्होंने नूतन नामक पत्रिका का संपादन भी किया जिसमें गांधी एवं विनोबा जी के विचारों का संग्रह एवं उनसे संबंधित लेख आदि हुआ करते थे। आंदोलन के दौरान निर्मला जी ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के संदेश को लेकर भारत भर में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा की। निर्मला जी ने स्वीकार किया कि गांधीवादी सिद्धांतों का अभ्यास कठिन है, लेकिन उन्हें ये विश्वास था कि पूर्ण लोकतांत्रिक समाज की प्राप्ति के लिए यही एक रास्ता है।
0: इतिहास मुझे एक बार का किस्सा याद आ रहा है, जब इंदौर के एक गाँव कस्तूरबा ग्राम में शांति भंग हो गयी थी और वहाँ शांति को पुनः स्थापित करने के लिए विनोबा जी नारी कल्याण हेतु चलाई जा रही शांति सेना की व्यवस्था का कार्यभार किसी योग्य प्रबंधक को सौंपना चाहते थे। उन्होंने अपने पास में बैठे निर्मला जी की ओर गौर से देखा और समाधान उन्हें अपने बगल में बैठा दिखाई दे गया। उन्होंने निर्मला जी से वार्तालाप किया और उन्हें इंदौर जाने के लिए राजी कर लिया। आखिर इंदौर के कस्तूरबा ग्राम को निर्मला जी से ज्यादा अनुशासित व योग्य प्रबंधक कौन मिल सकता था, और इस प्रकार निर्मला जी को शांति सेना का निर्देशक बनाकर इंदौर भेज दिया गया।

0: वहां पहुंचकर निर्मला जी ने अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए सर्वप्रथम एक ऐसा शांति शिविर स्थापित किया जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंची महिलाओं ने हिस्सा लिया। वहां उन्होंने उन सभी महिलाओं को अक्षर ज्ञान के साथ सिलाई कढ़ाई का भी प्रशिक्षण दिया, साथ ही उन्हें गांधीवादी विचारों से भी परिचित कराया ताकि यही महिलाएं इन विचारों को देश के कोने कोने तक पहुंचा सकें। निर्मला जी के पूरे कार्यकाल के दौरान एक बार भी शांति सेना के कामकाज में कोई दिक्कत नहीं आई। एक दो दफा जो दिक्कतें आई भी उन्हें निर्मला जी ने अपनी शांतिपूर्ण सूझबूझ के कारण सुलझा दिया।
1: इस कार्य को पूर्ण करने के पश्चात निर्मला जी ने बस्तर के जंगलों की ओर अपनी समाज सेवा यात्रा के मार्ग का अगला पड़ाव खोजा। वहां वे बस्तर के आदिवासियों के साथ रहीं और उनके साथ काम करने का अवसर पाया। बस्तर में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने लगभग 4000 आदिवासी बच्चों और महिलाओं को साक्षर बनाया तथा उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में स्वयं तथा बस्ती की सफाई जैसे मूलभूत ज्ञान से परिचित भी कराया, जिससे बस्तर का क्षेत्र पहले से अधिक साफ स्वच्छ एवं कुछ मूलभूत सुविधाओं से युक्त दिखाई दिया।
0: तारीख, निर्मला जी की गतिविधियां सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। ये गतिविधियां जनसंपर्क को प्रोत्साहित करने वाली संस्थाओं जैसे एसोसिएशन ऑफ पीपल ऑफ एशिया तथा पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के माध्यम से एशिया के अन्य देशों में भी फैल गई थी। निर्मला जी की विश्व बंधुत्व में गंभीर आस्था थी। वो हमेशा से एक ऐसे विशाल विश्व परिवार की कल्पना करती थी जिसमें हर स्त्री पुरुष बिना किसी रंग भेद के प्रेम और पारस्परिक सहिष्णुता के साथ रह सके। इसी सपने को अपने दिल में रखे हुए उन्होंने अन्य देशों में भी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। वो सदा भारत पाकिस्तान मैत्री के लिए प्रयत्नशील रहीं और इस हेतु उन्होंने कई दफा पाकिस्तान की यात्रा भी की। वे जीवन भर दोनों देशों में शांति के साथ आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान की पक्षधर रहीं।

0: और इतिहास जैसा कि हर मनुष्य के जीवन में कई प्रश्न सामने आकर खड़े होते हैं, निर्मला जी के मन में भी हुए। जब एक बार उनके मन में संन्यास का पौधा अंकुरित हुआ, जब निर्मला जी अपने उस प्रश्न को लेकर अपने गुरुदेव के पास पहुंची, तो उन्होंने उन्हें समझाया कि संन्यास तो पलायन का दूसरा नाम है। उन्होंने उन्हें आभास कराया कि संन्यास लेने पर तुम्हें समाज से दूर जाना होगा, जो कि ना तो सही है और ना तुम्हारे व्यक्तित्व के अनुकूल। इस बात का अनुभव होते ही निर्मला जी ने संन्यास का विचार तुरंत त्याग दिया और समाज सेवा के कार्य में जुट गईं।
1: निर्मला जी को पंजाब और कश्मीर में हिंसा की चरम स्थिति पर शांति मार्च के लिए जाना जाता है। 1994 में कश्मीर में शांति मिशन और 1996 में भारत पाकिस्तान वार्ता आयोजित करना उनकी दो मुख्य उपलब्धियों में शामिल है। चीनी दमन के खिलाफ तिब्बतियों की आवाज को बुलंद करना भी इनके दिल के करीब था।
0: निर्मला जी ने अपना जीवन सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं, आदिवासियों और अवसर से वंचित लोगों की सेवा में अर्पण कर दिया। निर्मला जी ने हिंदी में अनेक उपन्यास लिखे, जिनमें से एक को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा उन्होंने ईशा उपनिषद पर टिप्पणी और विनोबा भावे की जीवनी लिखी है।
1: निर्मला जी 1997 से 2007 तक राज्यसभा में मनोनीत सदस्य रहीं। 2007 में हुए भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उनके नाम पर भी विचार किया गया। उन्हें 2006 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार और पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनकी उम्मीदवारी रखी गई थी। 13 अगस्त 2009 को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पाकिस्तान सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा-ए-इम्तियाज से वो सम्मानित हुईं।
0: बिल्कुल, इतिहास मुझे याद है निर्मला जी के वो शब्द जो उन्होंने बस्तर आदिवासियों से कहे थे, जो समस्या वार्ता से सुलझाई जा सकती है उसे सुलझाने का कोई और बेहतर उपाय नहीं हो सकता। हिंसा से हिंसा बढ़ती है और अगर कोई बात हिंसा से सुलझा भी ली जाए तो उसका हल स्थायी नहीं होता। विश्व में आदिकाल से अनेक युद्ध लड़े गए हैं, परंतु प्रत्येक युद्ध अगले युद्ध का बीजारोपण ही साबित होता है। अहिंसात्मक समाधान सदा स्थायी रहा है।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। तो अब दीजिए हमें इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे,
3: तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं, वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
3: श्रोताओ, आज के युग में इंसान अपने सर्वाइवल के लिए न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के बल्कि अपने मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से भी जूझ रहा है। श्रोताओ, हमारी मानसिक स्थिति, हमारी सोच, हमारे व्यवहार, हमारे आपसी संबंधों और हमारी दैनिक जीवन के कार्यों को भी प्रभावित करती है और इन्हीं बातों से प्रभावित भी होती है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और बेहतर तरीके से हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जेपी अग्रवाल, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष साइकेट्री डिपार्टमेंट, गांधी मेडिकल कॉलेज, हमीदिया हॉस्पिटल। सर, स्वागत है आपका रेडियो आजाद हिंद में।
4: नमस्कार।
3: प्रश्न यही उठता है दिमाग में कि आखिर मानसिक स्वास्थ्य है क्या?
4: जैसे शारीरिक स्वास्थ्य है, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ की जो डेफिनेशन है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो ऐसा नहीं है कि हमें बीमारी नहीं है इसका नाम स्वस्थ है। ये एक स्थिति है जहाँ पे हम अच्छा महसूस करते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सोशल सामाजिक रूप से। वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य हम तब कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यताओं को पहचान पाता है, अपने प्रतिदिन के तनाव को हैंडल कर पाता है, समाज में अपना योगदान दे पाता है और बेहतर एक तरह से अपना सब कुछ काम कर पाता है, उस व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। मानसिक रोग ना होना उसका एक फैक्टर है, सिर्फ मानसिक रोग ना होने की वजह से ही वह मानसिक स्वस्थ है ऐसा नहीं है। तो इट्स अ स्टेट ऑफ वेलबींग वेयर एनीवन रिकॉग्नाइजेस हिज पोटेंशियल, वर्क्स प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली, एबल टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, कैन हैंडल डे टू डे स्ट्रेस।
3: यानी आपका कहने का मतलब है कि मानसिक अस्वस्थता जो है वो एक परिस्थिति है, बीमारी नहीं है।
4: देखिए, एक तरफ मानसिक स्वास्थ्य है
3: जी,
4: फिर हमें कुछ मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। और अगर हम मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ कर उसे दूर नहीं कर पाते हैं तो हमें मानसिक रोग भी हो सकते हैं।
3: अच्छा,
4: तो एक स्पेक्ट्रम है जिसके एक छोर पर मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से मानसिक स्वस्थ व्यक्ति है,
3: हाँ जी,
4: दूसरे छोर पर पूरी तरह से मानसिक बीमार व्यक्ति है और बीच में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं।
3: कितने प्रतिशत मानसिक रोगों से लोग ग्रस्त हैं, अनुमानित क्या है ये आंकड़ा?
4: इसमें दो तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं। एक होते हैं जिसे बोलते हैं कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स।
3: हाँ जी,
4: कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, घबराहट से संबंधित रोग है, नींद से संबंधित रोग है,
3: हाँ जी,
4: या पर्सनैलिटी से संबंधित रोग है, या कुछ कहते हैं हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स या सोमेटिक डिसऑर्डर्स, ये है कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स। और एक होते हैं जिसे कहते हैं सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स। सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स जहां आपको देखने में लगे कि व्यक्ति थोड़ा विक्षिप्त है, इसका व्यवहार सामान्य नहीं है। कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स के जब हम व्यक्ति को देखते हैं तो उसका व्यवहार हमें देखने में बहुत असामान्य प्रतीत नहीं होता है, पर जब हम सीवियर मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट देखते हैं तो उनका आपको दूर से लगता है कि हाँ, इसमें कुछ तो असामान्यता है। टोटल जो प्रेवलेंस है करीब करीब 12.5 से 15% के बीच में प्रेवलेंस है मानसिक रोगों की।
3: अच्छा,
4: भारत में अगर मान लीजिए हमारी आबादी करीब 150 करोड़ के आसपास है तो हमारे यहाँ कम से कम 20 करोड़ के आसपास लोग हैं जिनको मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित रोग या समस्याएं हैं। तो इसमें से जो 1 से 2% है वो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स के पेशेंट है और 10 से 12% जो है आबादी वो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त है। तो 12 और 2 इतना करीब करीब प्रेवलेंस रेट है।
3: क्या आत्महत्या भी जो है वो मानसिक अस्वस्थता का कारण है?
4: आत्महत्या परिणति है खराब मानसिक स्वास्थ्य की।
3: अच्छा,
4: कोई भी व्यक्ति जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, जो व्यक्ति अपने, जैसे हमने जो डेफिनेशन बताई, अपने स्ट्रेस हैंडल कर पा रहा हो, जो समाज के प्रति योगदान दे पा रहा हो, जो अपनी योग्यता को समझ पा रहा हो, वो व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता। कई बार पारिवारिक तनाव की वजह से आत्महत्या हो जाती है, जी। पर वो भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ही बिगाड़ती है,
3: बिगाड़ती है जी।
4: कई बार मानसिक रोग कारण होते हैं आत्महत्या का, जैसे कि डिप्रेशन की वजह से व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, सिज़ोफ्रेनिया की वजह से व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, नशे की लत की वजह से व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है
3: जी।
4: तो आत्महत्या डायरेक्ट कारण भी होती है, पारिवारिक समस्याओं की वजह से होती है
3: जी।
4: फिर लाइफ में हमारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो हम एग्जाम में फेल हुए, या हमारा ब्रेकअप हो गया
3: जी,
4: या हमारी कोई आर्थिक हानि हो गई, फसल का नुकसान हो गया, या कोई और बड़ी हानि हो गई जिसकी वजह से आमतौर पर हम आत्महत्या पाते हैं
3: जी,
4: वो अल्टीमेटली हमारे मानसिक स्वास्थ्य को खराब करती हैं
3: जी।
4: हमें आगे का रास्ता नजर नहीं आता
3: जी,
4: ऐसा लगता है जैसे आगे भी सब कुछ अंधकार में है। आत्महत्या इंसान उस अवस्था में करता है जब उसे लगता है आगे भी कुछ ठीक नहीं होने वाला है
3: जी।
4: तो इसी कारण ये कहा जा सकता है कि आत्महत्या जो है और मानसिक स्वास्थ्य आपस में बहुत लिंक्ड हैं
3: जी,
4: और खराब मानसिक स्वास्थ्य की वजह से ही आत्महत्या होती है
3: जी। यदि मानसिक स्वास्थ्य को हम सुधार लें तो आत्महत्या का प्रतिशत बहुत कम हो जाएगा
4: जी। इसमें ये समझना जरूरी है कि समस्याएं जो होती हैं टेम्पररी होती हैं, कोई भी समस्या लाइफ में आती है वो थोड़े समय बाद अपने आप सॉल्व हो जाती है, उसका कोई ना कोई हल निकल जाता है। इवन कई बार आपने ट्रैफिक जैम भी देखे हो जहाँ इंसान कई बार 3-3 घंटे फंसा रहता है
3: जी।
4: तो आप देखेंगे 3-4 घंटे बाद ट्रैफिक जैम क्लियर हो जाता है।
3: हाँ जी।
4: पर उस ट्रैफिक जैम में फंसे हुए व्यक्ति को लगे कि ये ट्रैफिक जैम कभी क्लियर होगा ही नहीं और इससे अच्छा मैं आत्महत्या कर लूं, तो ये वैसी ही अवस्था है जैसा एक कई बार जाम में फंसा हुआ व्यक्ति सोचे कि मेरे को आगे कोई रास्ता मिलेगा ही नहीं, शायद आगे सब कुछ ठीक होगा ही नहीं। तो अगर उस समय उसे किसी भी तरीके से रोका जा सके, क्योंकि आत्महत्या भी एक तरह से फॉर द टाइम बीइंग इम्पल्स आता है कि मुझे कर लेना चाहिए
3: जी।
4: उस समय अगर उसकी देखभाल कर ली जाए, उसे अकेला ना छोड़ा जाए, उसका उचित उपचार हो जाए,
3: हाँ जी,
4: तो उस आत्महत्या से बचा जा सकता है। तो आत्महत्या या सुसाइड इज अ प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ। अगर आप आंकड़े देखेंगी तो वर्ष 2018 के अंदर करीब 1,34,000 लोगों ने भारत के अंदर आत्महत्या से अपने प्राण गंवाए। ये आंकड़ा बढ़ के 2019 में 1,39,000 तक पहुंचा। 2020 में जब कोविड आया तो ये आंकड़ा एकदम से बढ़ा और 1,53,000 पे पहुंच गया
3: जी।
4: 2021 में 1,53,000 से 1,64,000, क्योंकि उस समय भी कोविड की भयावहता चल ही रही थी
3: जी।
4: और 2022 के अंदर 1,71,000, तो ये इतनी गति से बढ़ रहा था। अभी हाल ही के अंदर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने अपने लेटेस्ट जो आंकड़े हैं 2023 के जारी किए हैं
3: जी,
4: जिसके अंदर 1,72,000 के आसपास व्यक्तियों ने आत्महत्या की वजह से प्राण गंवाए हैं। और इसमें दुख की बात ये भी है कि जो मध्य प्रदेश है, हमारा स्टेट है,
3: हाँ जी,
4: वो टॉप 3 में है, वो 3rd रैंक पे है। तो करीब 15,000 व्यक्तियों ने मध्य प्रदेश में अपने प्राण गंवाए हैं आत्महत्या की वजह से।
3: देखिए, यदि इस क्षणिक आवेश को यदि रोका जा सकता है तो आत्महत्या का प्रतिशत काफी कम हो जाएगा। एक बात ये, आप कुछ टर्म्स यूज कर रहे हैं जैसे सिज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, ये चीजें जो क्या है, आप क्या ये मानसिक अवस्था के प्रकार है, अस्वस्थ मानसिक अवस्था के?
4: कोई भी व्यक्ति, उसे लगता है कि कई बार उसे उदासी है, पर हर उदासी डिप्रेशन नहीं है
3: जी।
4: डिप्रेशन हम तब कहते हैं जबकि किसी के मन की उदास अवस्था 2 सप्ताह से ऊपर की हो।
3: अच्छा।
4: 2 सप्ताह से ऊपर व्यक्ति का मन उदास रह रहा है, उसे किसी काम में मन नहीं लग रहा है, उसे जो चीज पहले प्लेजर देती थी, आनंद देती थी, वो उसे आनंद नहीं दे रही है। उसकी नींद असामान्य हो गई है, उसकी भूख असामान्य हो गई है, या तो कम हो गई है, ज्यादा हो गई है
3: जी।
4: उसके अंदर नकारात्मक विचार आ रहे हैं, आत्महत्या के विचार आ रहे हैं
3: जी।
4: जब ये लक्षण आते हैं
3: जी,
4: या एक तरह से कहते हैं वो आपको एकदम सुस्त दिखाई देता है, आप डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है जैसे ये चल फिर नहीं रहा, ये कोने में सुस्त गुमसुम सा बैठा है
3: जी।
4: तो जब इस तरह के सारे सिम्टम्स आते हैं तब उसे डिप्रेशन कहते हैं
3: जी।
4: कई बार इंसान को भ्रम होता है कि मैं उदास हूं इसका मैं डिप्रेशन में हूं, पर डिप्रेशन एक क्लिनिकल बीमारी है जिसका की जो डायग्नोसिस है वो साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर के द्वारा ही किया जाता है
3: जी।
4: वैसे ही सिज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक रोग है। सिज़ोफ्रेनिया के व्यक्ति में कई बार कुछ अलग अलग तरह के भ्रम या डिल्यूजन होते हैं।
3: अच्छा।
4: जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा है, मुझे कोई मारने की साजिश रच रहा है, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, या मेरे वाइफ का या मेरी गर्लफ्रेंड का किसी और से अफेयर चल रहा है। तो ऐसे जो बिलीफ्स हैं, गलत बिलीफ्स हैं जो दिमाग में बैठ जाते हैं
3: जी, शक,
4: और जो किसी और समझाने से ठीक नहीं होते
3: जी, जी।
4: तो डिल्यूजन्स हो सकते हैं। फिर कुछ असामान्य आवाजें सुनाई देते हैं जो व्यक्तियों को वैसे नहीं आती।
3: अच्छा।
4: ऐसे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी आवाजें उसे सुनाई देने लग जाती हैं।
3: हुँ।
4: फिर कई बार जो व्यवहार होता है वो बहुत विकृत सा हो जाता है, वो अपना

0: या मेरी नौकरी छूट गई,
1: जी
0: या मेरा ब्रेकअप हो गया, या मैं एग्जाम में फेल हो गया,
1: जी
0: ये सब वो कारण है जो बीमारी को एकदम से बढ़ा देते हैं। बीमारी हो सकता है हमारे शरीर के अंदर कहीं छुपी
1: लक्षण
0: हुई
1: हो,
0: हो,
1: जी
0: पर जब हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेस आता है तो कई बार वो कारण एकदम से उभर के
1: उबर के,
0: सरफेस में आ जाते हैं।
1: जी जी
0: फिर हर इंसान की स्ट्रेस को या तनाव को हैंडल करने की स्किल्स हैं, कोपिंग स्किल्स हैं।
1: जी
0: कई बार हमारी कोपिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती, हम खान पान पर ध्यान नहीं देते, हमारी नींद के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो हमारी कोपिंग स्किल्स वीक हो जाती हैं और उस वजह से भी कई बार मानसिक रोग बढ़ जाते हैं। तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर साइकोलॉजिकल और सोशल कंपोनेंट भी इंपॉर्टेंट है।
1: तो मतलब जैसे भी हमें मालूम पड़ता है सर कि कोई व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो फिर हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये अस्वस्थ है और हमें परामर्श की जरूरत है, चिकित्सकीय परामर्श की जरूरत है?
0: किसी भी व्यक्ति के अगर आपको व्यवहार में बदलाव नजर आता है,
1: जी
0: अगर कोई गुमसुम रहने लगा है, कोई ज्यादा बात करने लगा है, कोई शक करने लगा है,
1: जी
0: किसी की नींद कम हो रही है, या वो खाना नहीं खा रहा है टाइम से, या वो नशा अधिक कर रहा है, या वो छोटी छोटी बातों पे चिंता अधिक कर रहा है, घबरा जाता है,
1: जी
0: तो अलग अलग तरह के अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। तो एक जैसे बीमारी होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी, उसके अंदर व्यक्ति कई बार बार बार हाथ धो रहा होता है या बार बार चीजों को चेक कर रहा होता है।
1: ओके
0: तो अलग अलग बीमारी के अलग अलग लक्षण हैं, पर जो ब्रॉडली हमने बताया कि नींद के अंदर जो चेंजेस आते हैं, व्यवहार में जो चेंजेस आते हैं,
1: जी
0: नशा जो नज की जो प्रवृत्ति है,
1: जी जी
0: वो ये सब अगर किसी में हो रही है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। या आत्महत्या के तो अगर किसी में विचार भी आ रहे हैं तो वो भी मानसिक रोग का लक्षण हो सकता है, और ऐसे व्यक्ति को हमें अतिशीघ्र मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक
1: जी
0: इनमें से किसी के पास अवश्य लेके जाना चाहिए ताकि उसका उचित डायग्नोसिस और उपचार हो पाए।
1: हो पाए। सर एक चीज आती है, अलग अलग वर्गों में अलग अलग मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं, जैसे बच्चे हैं, तो बच्चों की मानसिक अस्वस्थता हमें कैसे पता चलती है?
0: आजकल अगर हम देखें तो आपने कभी अखबार पढ़ा हो तो कई बार ऐसी खबर आती है कि 6 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली,
1: जी
0: 8 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली, वो
1: जी
0: बहुत चिंताजनक है।
1: हाँ जी
0: बच्चों के अंदर जो आमतौर पे डिसऑर्डर्स मिलते हैं वो एक होता है जिसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर,
1: अच्छा
0: जिसके अंदर बच्चा जो है उसकी अटेंशन स्पैन कम होता है, जिससे वो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर हो जाता है और वो बहुत हाइपर एक्टिव होता है, ऐसा एकदम भाग रहा होता है, दौड़ रहा होता है, उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता
1: मुश्किल
0: है।
1: है।
0: तो एक ये बीमारी है। दूसरी बच्चों से संबंधित कई बार होता है कि बच्चों में बुद्धि का विकास बराबर नहीं हो पाया।
1: जी
0: तो जैसे मान लीजिए माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है या मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन है, मंद बुद्धि जिसे कह
1: जी
0: सकते
1: जी
0: हैं, तो वो समस्याएं कई बार बच्चों में देखने को मिलती हैं।
1: जी
0: फिर बच्चों में भी आजकल कॉम्पिटिशन और पीयर प्रेशर इतना हो गया है कि उनमें भी जो बीमारियां हम पहले मानते थे बड़ों में ही मिलती हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, ओसीडी,
1: जी
0: वो जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है वो बच्चों में भी हमें देखने को
1: देखने
0: मिल
1: को मिल
0: रही
1: रही
0: है।
1: है। जी
0: तो
1: जी
0: बच्चों में भी कई बार अर्ली ऑनसेट साइकोसिस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, ओसीडी हो सकता है,
1: जी
0: एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो बच्चों में भी इस तरह की समस्याएं मिल सकती हैं।
1: तो इसका भी चिकित्सकीय समाधान है, हमने
0: बिल्कुल, इनका भी उचित चिकित्सकीय या मनोवैज्ञानिक समाधान है।
1: बच्चों की बात की, ऐसे ही महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: महिलाओं के अंदर कई बार जो पीरियड्स का टाइम होता है
1: जी
0: उसके जस्ट पहले उनके मूड के अंदर कुछ चेंजेस रहते हैं जिसे हम कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर।
1: जी
0: कभी रोने जैसा मन होता है, या इरिटेबिलिटी या चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है, या उदासी जैसा लगता है, खाली खाली सा लगता है,
1: जी
0: तो वो समस्याएं प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर में कहलाती है। इसके अलावा जब हमारी डिलीवरी होती है
1: हाँ जी
0: तो डिलीवरी के बाद करीब 50 से 70% महिलाओं को पहले सप्ताह के अंदर पोस्टपार्टम ब्लूज होते हैं। पोस्टपार्टम ब्लूज मतलब रोने जैसा मन, उदासी,
1: जी
0: जो डिप्रेशन जितनी गंभीर नहीं है पर कुछ दिनों तक रहती है।
1: रहती है।
0: फिर 50 से 70% में पोस्टपार्टम ब्लूज हैं तो करीब 8 से 10% महिलाओं के अंदर डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लक्षण भी आते हैं।
1: अच्छा
0: डिप्रेशन के लक्षण जैसे बाकी लोगों में आते हैं कि मन उदास हो गया है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, जो चीज पहले आनंद दे रही थी उसमें अब मजा नहीं आता है, नकारात्मक विचार आते हैं, एक तरह से हम थोड़ा सा इनएक्टिव से हो गए हैं, और 1% या 0.5% के अंदर कई बार गंभीर साइकेट्रिक सिम्टम्स भी आते हैं जिसे कहते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस।
1: अच्छा
0: इसके अलावा महिलाओं को क्योंकि अपनी लाइफ को वर्क और होम के बीच में बैलेंस करने की जरूरत
1: जी
0: पड़ती है,
1: जी जी
0: क्योंकि समाज आगे बढ़ा है पर महिलाओं ने जैसे बाहर के काम करने चालू कर दिए पर पुरुष अभी भी घर उतना अच्छा नहीं संभाल पाते जितने महिलाएं संभाल पाती
1: हाँ
0: हैं।
1: जी
0: तो महिलाओं को क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, ऑफिस में भी कई बार अच्छा माहौल नहीं होता और घर में भी कई बार काम का बोझ होता है
1: जी।
0: तो उस वजह से वो कई बार ज्यादा स्ट्रेस फील करती हैं, उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण ज्यादा मिल सकते हैं।

0: जी, तो जैसे हमने बच्चों की बात की, महिलाओं की बात की, ऐसे ही एक बहुत बड़ा वर्ग है वृद्धों का
1: जी
0: ना, तो बुजुर्गों में ये जो मानसिक स्वास्थ्य जो है, जैसे अल्जाइमर, तो अल्जाइमर भी क्या मानसिक अस्वस्थता
1: जी
0: में आता है?
1: बुजुर्गों में कई तरह के मानसिक विकार मिल सकते हैं,
0: हाँ जी
1: और हमारी आबादी जैसे आज की तारीख में करीब 10 से 12% हमारी आबादी ऐसी है जो वृद्ध हैं।
0: जी
1: पर जैसे जैसे हमारी हेल्थ फैसिलिटी बेहतर हो रही हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है हमारी 25 से 30% आबादी वृद्ध रहे,
0: वृद्ध
1: जैसे
0: रहे
1: कि डेवलप्ड कंट्रीज में है।
0: जी।
1: जैसे जापान में देखेंगे उनकी करीब 35% आबादी वृद्ध है। तो वृद्धावस्था में कई तनाव आते हैं जो व्यक्ति को लाइफ में पहले वो कर पा रहा था, उसका शरीर साथ दे रहा था, वो काम कर पा रहा था, शरीर की कई बीमारियां आई तो वो
0: जी
1: काम करना कम हो गया, तो उसका मन खराब रहना चालू हुआ। उसने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया पर बच्चे शायद उतनी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वजह से भी व्यक्ति उदास रहता है, खिन्न रहता है,
0: जी
1: फ्रस्ट्रेटेड रहता है कई बार। तो वृद्धावस्था में डिप्रेशन के प्रकरण ज्यादा देखने को मिलते हैं, इवन सुसाइड के केसेस भी बढ़ जाते हैं
0: हाँ
1: वृद्धावस्था में।
0: जी
1: और क्योंकि कई बार परिवार वाले हो सकता है पैसा तो फिर भी शायद वृद्ध व्यक्ति के ऊपर खर्च कर दें, उसके कपड़े ला दें या उनको कहीं ले जाएं,
0: जी
1: पर टाइम की कमी है और वृद्ध व्यक्तियों को लगता है कि उनके साथ कोई ना कोई अगर समय बिता सकता है
0: जी
1: तो उसके कारण वो अकेलापन फील करते हैं। और वृद्ध व्यक्तियों में एक चीज देखने में आती है कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं, उनमें से अगर दोनों जीवित हैं तब तो वो एक दूसरे की देखभाल कर लेते हैं,
0: हाँ जी
1: पर उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे के ऊपर बड़ी भारी समस्या आती है कि
0: जी
1: उनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो चला जाता है। तो
0: बहुत ज्यादा
1: वृद्धजनों के
0: गंभीर,
1: मानसिक स्वास्थ्य की विशेष रूप से देखभाल करनी चाहिए।
0: मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, फिट रहना है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए और हमारे घर वालों के लिए हम क्या कर सकते हैं?
1: लाइफ में हमें एक्सपेक्टेशंस कम करनी चाहिए अपनी।
0: जी
1: अगर हम आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो
0: जी
1: हमें ये समझ में आता है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आगे से आगे की तृष्णा जो है वो हमें एक तरह से तनाव देती है। स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है पर्याप्त नींद, न्यूट्रिशियस डाइट,
0: जी
1: कुछ एक्सरसाइज, अगर लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है तो उसे हैंडल करने के लिए अच्छी कोपिंग मैकेनिज्म, नशे से दूरी,
0: जी
1: और समाज के अंदर एक्टिव योगदान। अगर
0: हाँ
1: हम
0: जी
1: रिलेशनशिप्स में अच्छे से रह रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, मोबाइल के ऊपर कम निर्भर हैं, तो हम मानसिक रूप से ज़्यादा अच्छा स्वस्थ रह पाएंगे।
0: तो आपने जो टेक्निक्स की बात की, कोपिंग टेक्निक्स की, वो क्या है?
1: जब इंसान के लाइफ में तनाव आता है तो वो उसे किस तरीके से हैंडल करता है?
0: जी
1: कोई व्यक्ति होता है जो सोचता है कि चलो आज मेरे को लाइफ में बुरा दिन था, मैं 2 पैग अल्कोहल ले लेता हूँ, उससे शायद मेरे को शांति मिले,
0: जी
1: तो ये अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म हुआ। कुछ लोग काम के तनाव को चाय पी पी के कम कर रहे होते हैं,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: वो भी अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है। हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है समस्याओं को समझना
0: जी
1: कि भाई हर समस्या शायद आपकी अपनी नहीं है, क्या मुझे अभी उसके ऊपर निर्णय लेना है या उसको टैकल करना है, और क्या मैं बाद में कर सकता हूँ। फिर
0: जी
1: टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कोपिंग मैकेनिज्म।
0: जी
1: फिर जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर हमें कुछ ऐसा समय देना चाहिए कि जिससे हम रिलैक्स कर पाए, तो योगा इज अ गुड कोपिंग मैकेनिज्म,
0: हाँ जी
1: प्राणायाम इज अ गुड कोपिंग मैकेनिज्म।
0: जी
1: ऑफिस का तनाव ऑफिस के बाहर तक नहीं आना चाहिए, ऑफिस के तनाव को हमें ऑफिस में छोड़ के आना चाहिए।
0: हाँ जी
1: अगर वो तनाव हम घर पे लाते हैं तो हम घर के वातावरण को और दूषित और खराब करते हैं,
0: हाँ जी
1: और जिससे हमारे बच्चों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हमें एक तरह से समझदारी से अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, और तनाव को जितना हद तक हम बेहतर प्रबंधन कर पाए या लिमिट कर पाए
0: जी
1: उतना हमारे लिए अच्छा है।
0: सर, अब मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, आपके पास आता है, तो आप उसका क्लिनिकली उपचार करते हैं या फिर साइकोलॉजिकली उपचार करते हैं, ये कैसे डिसाइड होता है?
1: जैसे कोई मरीज हमारे पास आया, हम उसकी हिस्ट्री देखते हैं कि क्या क्या उसके रोग कब उत्पन्न हुए, उसका
0: जी
1: एग्जामिनेशन या मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, बीमारी की गंभीरता के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि इसे किस तरह का ट्रीटमेंट देना चाहिए।
0: जी
1: उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी फिजिशियन के पास गया, उसका ब्लड शुगर 125 है जो कि सामान्य से थोड़ा ऊपर है, तो हमें क्या सलाह मिलेगी कि भाई खाने में ये चीजें कम खाओ, वॉक करो, अभी तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं
0: नहीं है
1: है। पर वही पेशेंट अगर डॉक्टर के पास आया और उसका शुगर 350 है, तो फिर जो सलाह थी डाइट कंट्रोल करो, एक्सरसाइज करो, वो तो मिलेगी, पर दवाई के लिए वेट नहीं किया जाएगा, दवाई चालू करनी पड़ेगी।
0: जी
1: तो अगर माइल्ड डिप्रेशन का पेशेंट है तो सिर्फ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या साइकोथेरेपी से भी उसका उपचार हो सकता है, पर आमतौर पे क्योंकि हमारे यहाँ जागरूकता कम है
0: जी
1: तो मरीज बीमारी बढ़ा के ही आता है। तो जब बढ़ी हुई बीमारी के अंदर मरीज आता है तो उसे हमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करनी पड़ती है और साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। नियमित इलाज से मरीज की हालत में सुधार आता है। जैसे जैसे मरीज की हालत में सुधार आता है उसकी दवाइयों को धीरे धीरे कम करके बंद करने की दिशा में जाया जाता है।
0: अच्छा,
1: व्यक्ति नियमित इलाज करता है तो उसकी दवाई समय के साथ में बंद हो जाती है। पर इसमें भी समस्या यह है कि कई बार मरीज अपने आप ही दवाई बंद कर देता है या रेगुलर फॉलोअप के लिए नहीं आता है, तो ऐसे में बीमारी थोड़ी और लाइलाज हो जाती है।
0: हमें यह कैसे पता चलता है कि अब व्यक्ति मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है?
1: उसके व्यवहार के ऑब्जर्वेशन से
0: जी,
1: उसके जो घर वाले उसके बारे में हमें हिस्ट्री देते हैं उससे, और एक मानसिक स्थिति परीक्षण मेंटल सिटेज एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं जो मरीजों पर किए जाते हैं आवश्यकता पड़ने पर।
0: अच्छा,
1: कुछ इन्वेंटरीज होती हैं, कुछ क्वेश्चनेयर्स होते हैं, कुछ बैटरीज होती हैं जो लगाई जाती हैं, जिनके ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि बीमारी की क्या अवस्था है और क्या उपचार दिया जाना चाहिए।
0: अपने आप को कैसे जान सकते हैं कि मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ?
1: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने
0: जी।
1: अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो मध्य प्रदेश का है उसमें हमने और हमारे कुछ सहयोगियों ने मिलकर एक ऐप तैयार किया, एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल ऐप, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। उसका नाम है मनहित।
0: मनहित,
1: मनहित
0: जी।
1: आप वो मनहित ऐप इंस्टॉल कीजिए और उसके अंदर सेल्फ असेसमेंट का कॉलम है
0: जी।
1: तो जैसे आप सेल्फ असेसमेंट क्लिक करेंगे तो उसमें अलग अलग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उसका जवाब आपको हाँ ना में क्लिक करना है। उसमें कई सारी हमने अवेयरनेस मटेरियल जानकारी भी डाली है। तो एक बहुत अच्छा ऐप है जिसके माध्यम से हम स्वयं का मानसिक स्वास्थ्य जज कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: उस मनहित ऐप को हमने टेलीमानस एक तरह से राष्ट्रीय हेल्पलाइन सर्विस है।
0: अच्छा।
1: जो कि केंद्र सरकार की मदद से चल रही है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उसे संचालित कर रहा है
0: जी।
1: उसका नंबर है 14416।
0: एक बार आप फिर दोहरा दीजिए तो अच्छा रहेगा सर।
1: 14416 नंबर है जिसके अंदर ये हेल्पलाइन चलती है टेलीमानस। इसके अंदर ट्रेन काउंसलर्स जो होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपकी समस्याएं सुनते हैं और उसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं।
0: तो बहुत ही नई जानकारी हम लोगों को मिली है, क्योंकि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का तो बहुत ध्यान रख लेते हैं सर, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हमारे पास शायद समय की कमी है और जागरूकता की सबसे ज्यादा कमी है। आप हमारे श्रोताओं को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या संदेश देंगे सर?
1: भरपूर नींद लें, पौष्टिक आहार खाएं, थोड़ी एक्सरसाइज अवश्य करें, तनाव प्रबंधन करें, स्ट्रेस में ना रहें और नशे से दूर रहें। और नशे में आजकल मोबाइल भी आ गया है
0: जी,
1: तो मोबाइल को भी लिमिट कीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो आज थे हमारे साथ डॉक्टर JP अग्रवाल, जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और मैं थी आपके साथ आपकी पूर्वा। तो दीजिए अब इस कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए। अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अमेरिका के पूर्वी तट पर स्वामी जी विभिन्न नगरों में घूम घूम कर व्याख्यान देते रहे। 28 जून को प्रातःकाल वे फिर न्यूयॉर्क में आए। इस बार स्वामी जी ने अपना व्याख्यान ज्ञान योग और राजयोग पर केंद्रित किया। व्याख्यान के बाद प्रश्नोत्तर काल होता। वहां भारी भीड़ होती। कमरा बहुत बड़ा ना था। उत्सुक छात्र छात्राओं को जगह कम पड़ती थी। फिर भी वे भारतीय पद्धति के अनुसार पैर समेटकर अपने प्रिय आचार्य को घेर कर बैठते थे। राजयोग के विषय पर उनके भाषणों को सुनकर कई लोगों का आग्रह इतना बढ़ गया कि उन्होंने स्वामी जी से योग शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया और इस विषय में सफल होने के लिए योग शास्त्र के निर्देशानुसार ब्रह्मचर्य सात्विक आहार इत्यादि नियमों को भी श्रद्धा के साथ पालन करने लगे।
1: इस समय स्वामी जी ने भी योगी की तरह शारीरिक कठोरता का अवलंबन किया, क्योंकि वे सदैव ही शिष्यों के सामने एक जीते जागते आदर्श के रूप में विराजमान रहते थे। इस प्रकार उनका न्यूयॉर्क का छोटा सा निवास गृह सन्यासी व संयमशील व्यक्तियों की नवीन आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्ति की लगातार चेष्टा से मानो एक छोटा सा मठ ही बन गया। एक शिष्य ने उन दिनों का वर्णन करके लिखा है,
2: स्वामी जी द्वारा राजयोग पर दिए गए भाषणों की ख्याति इतनी व्यापक बन गई कि जिस दिन राजयोग के संबंध में भाषण होने का कार्यक्रम रहता था, उस दिन नगर के दार्शनिक वैज्ञानिक व अध्यापकों के आगमन से उनका छोटा सा कमरा भर जाता था और वे लोग बड़ी लगन के साथ उनकी योग शास्त्र की युक्तिपूर्ण वैज्ञानिक व्याख्या सुनते थे। इस प्रकार जून मास के भीतर उनके भाषणों का संग्रह स्वरूप राजयोग नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। स्वामी जी ने उनके परिशिष्ट में पातंजल दर्शन का एक विस्तृत व युक्तिपूर्ण भाष्य भी जोड़ दिया। इसमें संदेह नहीं कि इस पुस्तक ने उच्चतम मनस्तत्व के सूक्ष्म व युक्तिपूर्ण विश्लेषण की दृष्टि से मनीषी पाठकों के समाज में चिरकाल के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। इस पुस्तक का अध्ययन कर अमेरिका के विश्वविख्यात मनस्तत्वविद प्रोफेसर जेम्स महोदय इतने मुग्ध हुए कि वे स्वयं स्वामी जी के निवास स्थान पर जाकर उनसे परिचित हुए और अंत में उनके एक अभिन्न मित्र बन गए। इस पुस्तक के प्रकाशित होने के कुछ ही सप्ताह के बीच में उनके 3 संस्करणों की आवश्यकता हुई थी। इसी से समझा जाता है कि अमेरिका निवासी विद्वानों ने स्वामी जी की अलौकिक प्रतिभा से उत्पन्न इस प्रथम पुस्तक की सादर अभ्यर्थना करने में कोई कोर कसर नहीं रखी थी।
0: इस बीच स्वामी जी ने अनेक प्रतिष्ठित शिष्य तथा प्रचार कार्य के लिए सभी तरह के सहायक मित्र प्राप्त कर लिए थे। उनमें से मैडम मैरी लुई, डॉक्टर लैंड्सबर्ग, ओली बुल, डॉक्टर एलेने डी, कुमारी वॉल्डो, प्रोफेसर वमैन ओराइट, डॉक्टर स्ट्रीट तथा अनेक मिशनरी व सामान्य शिक्षित व्यक्ति भी स्वामी जी की शिक्षा में विशेष रूप से आकृष्ट हुए थे। कुछ दिनों बाद विख्यात गायिका श्रीमती काल्वे ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। अमेरिका के धनी समाज के श्री व श्रीमती फ्रांसिस लेगेट और कुमारी जे मैकग्लाउन भी स्वामी जी का शिष्यत्व ग्रहण कर विविध प्रकार से उनके प्रचार कार्य में सहायता करने लगे।
1: सन 1895 में स्वामी जी को अमेरिका में कठोर परिश्रम करना पड़ता था, परंतु अमेरिका के घोर विलास के बीच उनकी अंतरात्मा समय समय पर विद्रोही बन बैठती थी। उस समय कभी कभी आजन्म त्यागी सन्यासी गहरे क्षोभ के साथ अपने जीवन के विगत दिनों की याद करते हुए कह उठते थे,
3: मैं तो अपने चिथड़े मुंडित मस्तक वृक्षों तले निद्रा और भिक्षा के रूखे भोजन के लिए तरस गया हूं।
0: लगातार उच्चतम दार्शनिक तत्वों का विश्लेषण करते हुए भाषण देने तथा शिक्षा दान के कार्य से थक कर स्वामी जी ने कुछ दिन एकांत में विश्राम लाभ की आवश्यकता का अनुभव किया। सेंट लॉरेंस नदी के बीच थाउसेंड आइलैंड पार्क, जिसे हम सहस्त्र द्वीपों का उद्यान कहते हैं, नामक द्वीप में उनकी एक शिष्या की बड़ी सुंदर कुटिया थी। उन्होंने विशेष आग्रह के साथ स्वामी जी से प्रार्थना की कि वे कृपया उसका उपयोग कर उसे पवित्र करें। स्वामी जी प्रस्ताव से सहमत होकर अपने कुछ अंतरंग शिष्य शिष्याओं के साथ वहां गए। उन्हीं शिष्याओं में से एक थीं कुमारी वाल्डो। उन्होंने लिखा है,
4: इस गंधर्व राज्य में हमने आचार्य देव के साथ 7 सप्ताह दिव्य आनंद से उनके संदेशों से युक्त अपूर्व वचनों को सुनते हुए व्यतीत किए थे। उस समय हम भी जगत को भूल गए थे और जगत भी हमें भूल गया था। उस समय प्रतिदिन सायंकाल का भोजन समाप्त कर हम सभी ऊपर के बरामदे में जाकर आचार्य देव के आने की प्रतीक्षा करते थे। बहुत देर तक प्रतीक्षा न करनी पड़ती थी क्योंकि हमारे समवेत होने के साथ ही उनके कमरे का दरवाज़ा खुल जाता था और वे धीरे धीरे बाहर आकर अपने नियत आसन पर बैठ जाते थे। वे प्रतिदिन हमारे साथ 2 घंटे और कभी कभी इससे भी अधिक समय बिताया करते थे। एक अपूर्व सुंदर रात्रि में बात करते करते चंद्रास्त हो गया। जिस प्रकार हम समय बीत जाने के बारे में कुछ न जान सके, स्वामी जी भी उसी प्रकार न जान सके थे। उन सब भाषणों को लिख लेना संभव नहीं हुआ, पर हाँ, उन्हें हम में से कोई भूल न सकेगा। उन अवसरों पर स्वामी जी हृदय का द्वार खोल दिया करते थे। स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति के साथ निवास करना ही लगातार उच्च अनुभूतियों को प्राप्त करना है। प्रातःकाल से रात्रि तक वही एक भाव, हम एक घनीभूत धर्म भाव के राज्य में निवास करते थे।
1: कुमारी वाल्डो के सजीव वर्णन से हम उन दिनों की कल्पना आसानी से कर पाते हैं। सुंदर परिवेश, चांदनी रात, शिष्य मंडली और स्वामी जी की सार गर्भित बातें, कितने सुखद होते होंगे वे दिन। वे आगे और भी लिखती हैं।
4: प्रत्येक चीज से ही वे कुछ बोलने का या उदाहरण देने का विषय पा लेते थे और एक क्षण में ही वे हमें आकर्षक हिंदू पौराणिक कथाओं से एकदम गंभीर दर्शन के बीच ले जाते थे। स्वामी पौराणिक कथाओं का अशेष भंडार थे और वास्तव में प्राचीन आर्यों से बढ़कर अन्य किसी भी जाति में इतनी अधिक पौराणिक कथाएं नहीं हैं। वे हमें उन कहानियों को सुनाकर प्रसन्न होते थे और हम भी सुनना चाहते थे, क्योंकि वे कभी उन कहानियों की आड़ में जो सत्य निहित है उसे दिखा देना तथा उनमें से मूल्यवान धर्म विषयक उपदेशों का आविष्कार करना न भूलते थे। किसी भाग्यवान छात्र मंडली ने इस प्रकार प्रतिभाशाली आचार्य को प्राप्त कर अपने को धन्य मानने का ऐसा अवसर पाया था या नहीं, इसमें संदेह है।
0: उस खूबसूरत जगह सहस्त्र दीपोद्यान के बारे में हमें कुमारी एमसी फंकी के संस्मरण भी प्राप्त हैं। उन्होंने इस प्रसंग में लिखा है,
5: मेरा यही दृढ़ संकल्प था कि किसी समय कहीं भी उनके साथ साक्षात्कार अवश्य करूंगी। यदि हमें इसके लिए सारी पृथ्वी भी लांगनी पड़े तो वो भी स्वीकार है। करीब 2 वर्ष तक हमें उनका पता नहीं लगा और हमने सोचा कि शायद वे भारत लौट गए हों, परंतु एक दिन तीसरे प्रहर एक मित्र ने हमें सूचित किया कि वे अभी इस देश में ही हैं और ग्रीष्म का अवकाश सहस्त्र दीपोद्यान में बिता रहे हैं। उन्हें ढूंढ निकालकर उनसे शिक्षा प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प को लेकर हमने दूसरे ही दिन प्रातःकाल यात्रा प्रारंभ की।
1: कुमारी फंकी ने यात्रा का वर्णन इस तरह किया है,
5: उस दिन अंधकारमय रात्रि थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, परंतु फिर भी हम उस लंबे पथ पर चले ही जा रहे थे। उनका साक्षात्कार हुए बिना हमारे मन में शांति कहाँ? क्या वे हमें शिष्य के रूप में ग्रहण कर लेंगे? और यदि ना करें तो फिर हम क्या करेंगे? हमें एकाएक ये ध्यान आया कि एक व्यक्ति जो हमारे अस्तित्व तक को नहीं जानता, उससे मिलने हमारा कई मील चले आना शायद मूर्खता का कार्य हुआ है।
1: इस प्रसंग में स्वामी ने कहा था,
3: मेरे शिष्य कई मील लांघ कर मुझसे मिलने आए थे और इतना ही नहीं, रात की आंधी व वर्षा सिर पर उठाकर।
5: मैंने अपने मन में पहले से ही ये सोच रखा था कि मिलने पर उनसे क्या कहूंगी, परंतु जब वास्तव में उनका साक्षात्कार हुआ तो उस समय हम अपने तैयार किए हुए उस भाषण को भूल गए और हम में से एक व्यक्ति किसी तरह बोल उठा, हम डेट्रॉइट से आ रहे हैं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, यदि इस समय भगवान इस पृथ्वी पर मौजूद होते तो हम उनके पास जिस रूप में जाते व उपदेश की शिक्षा मांगते उसी रूप में हम आपके पास आए हैं। वे हमारी ओर अत्यंत स्नेह भरी आंखों से देखते हुए मृदु स्वर में बोले,
3: काश अगर भगवान ईसा की तरह मुझ में तुम्हें इसी क्षण मुक्त कर देने की शक्ति होती।
5: एक दिन तीसरे प्रहर त्याग की महिमा के प्रसंग में ग्यारिक वस्त्रधारी साधुओं के आनंद व स्वाधीनता का वर्णन करते हुए एकाएक वे उठ गए और थोड़े ही समय के बाद त्याग व वैराग्य की चरम सीमा रूपी सन्यासी का गीत शीर्षक कविता को उन्होंने लिख डाला। मैं समझती हूँ उनकी असीम धीरता व कोमलता ने ही मुझे उस समय सबसे अधिक मुग्ध किया था। पिता अपनी संतान को जिस दृष्टि से देखते हैं वे भी हमें उसी दृष्टि से देखते थे, यद्यपि हम में से अनेक व्यक्ति उनसे उम्र में काफी बड़े थे।
3: अब थोड़ी देर के लिए इस पाठशाला की छुट्टी। आप लोगों को भूख तो लग ही गई होगी। मैं आज आप लोगों के लिए भारतीय भोजन तैयार करता हूँ। नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, मैं ठीक ठाक रसोई कर लेता हूँ।
5: फिर कितनी धीरता के साथ वे चूल्हे के पास खड़े होकर हमारे लिए कुछ न कुछ भारतीय भोजन तैयार करते थे। डिट्रॉइट में अंतिम बार भी उन्होंने हमारे लिए बड़े ही स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए थे। विवेकानंद शिष्यों के छोटे छोटे अभावों की पूर्ति अपने हाथों से कर दिया करते थे। शिष्यों के लिए क्या ही अपूर्व उदाहरण है। उस समय वे कितने कोमल

0: बहुत दिनों के बाद स्वामी जी नगरीय कोलाहल, प्रतिद्वंदियों से संघर्ष, व्याख्यान आदि के पंजे से छुटकारा पाकर निश्चिंत होकर विश्राम कर सके। सहस्त्र दीपोद्यान आने से पहले उन्हें ग्रीन एकर कॉन्फ्रेंस में भाषण देने के लिए बुलाया गया था, परंतु उन्होंने उसे अस्वीकार किया। विद्वान दार्शनिकों के सम्मुख भाषण देने की अपेक्षा भावी वेदांत प्रचार कार्य के सहयोगी के रूप में कुछ शिष्य गठित करना ही उन्होंने अधिक आवश्यक समझा।
1: लगातार 7 सप्ताह तक उन्होंने जो अमूल्य उपदेश दिए थे उनका कुछ अंश किसी एक शिष्य ने लिपिबद्ध कर लिया था। बाद में वो इंस्पायर्ड टॉक्स नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। देववाणी पुस्तक उसी का हिंदी अनुवाद है।
0: यहीं पर स्वामी जी ने 5 व्यक्तियों को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी और 2 को संन्यास प्रदान किया। अंत में वे फिर से नवीन उत्साह के साथ न्यूयॉर्क लौटकर वेदांत प्रचार के कार्य में संलग्न हुए।
1: न्यूयॉर्क लौटकर ही स्वामी जी इंग्लैंड जाने के लिए तैयार हुए। मई के महीने में वेदांत की अनुरागिनी कुमारी हेनरिएटा मुलर ने उन्हें इंग्लैंड बुलाया था। इधर श्री ईटी स्टर्डी महोदय भी स्वामी जी को लंदन आने के लिए बार बार पत्र लिखने लगे। इसी बीच स्वामी जी के एक मित्र ने, जो न्यूयॉर्क के एक धन कुबेर थे, जब उन्हें साथ लेकर फ्रांस व इंग्लैंड जाने का प्रस्ताव दिया तो स्वामी जी ने सहर्ष अपनी सम्मति दे दी। 2 वर्ष के कठोर परिश्रम से उन्हें जो शारीरिक एवं मानसिक क्लांति आई थी, समुद्र यात्रा करने पर उसमें कुछ सुधार होगा ये सोचकर उनके शिष्यों ने भी आपत्ति नहीं की। अंत में प्रचार कार्य का भार स्वामी अभयानंद, कृपानंद तथा हरिदासी पर छोड़ मध्य अगस्त में रवाना होकर वे पेरिस गए और वहाँ से लंदन गए।
0: अमेरिका छोड़ने से पूर्व स्वामी जी को समाचार मिला कि भारत में उनके विरुद्ध सुसंगठित रूप से निंदा प्रचार किया जा रहा है। उनके विदेशी आहार आदि के बारे में सुनकर कई हिंदू भी उनके विरोधी बन गए हैं। उनके आचार व्यवहार की आलोचना कर छोटी छोटी पुस्तकें तथा हैंडबिल बांटे जा रहे हैं। प्राचीन पंथी हिंदू संप्रदाय का मुखपत्र बंगवासी अखबार इस दुष्प्रचार का मुखिया बना हुआ है। यद्यपि मठ में रहने वालों ने इन अफवाहों को सच नहीं माना, पर मद्रास तथा अन्य स्थानों पर भारतीय शिष्यगण गुरु निंदा सुनकर विचलित हो उठे। स्वामी जी ने इंग्लैंड यात्रा के पूर्व उन लोगों के पास एक पत्र लिखने की आवश्यकता समझी। स्वामी जी ने शिष्य वृंद को सांत्वना देने के लिए लिखा,
2: मुझे आश्चर्य हो रहा है, तुम लोग मिशनरियों द्वारा प्रचारित बेवकूफियों को सुनकर विचलित हुए हो। यदि कोई हिंदू मुझे कट्टर हिंदू की तरह खाद्य संबंधी परामर्श देते हो तो उन्हें कहो कि वे यहां एक ब्राह्मण रसोईया भेज दें। एक पैसा देकर सहायता करने की शक्ति नहीं, परंतु विज्ञ व्यक्ति की तरह उपदेश देने की खूब योग्यता है। ये देखकर मैं हंसी नहीं रोक सकता। दूसरी ओर यदि मिशनरी गण ऐसा कहते हैं कि मैंने काम कांचन के त्याग रूपी संन्यास जीवन के इस महान व्रत का भंग किया है, तो उनसे कह दो कि वे घोर मिथ्यावादी हैं। स्मरण रखो, मैं किसी के निर्देश पर चलने को तैयार नहीं हूं। अपने जीवन का उद्देश्य मैं भली भांति जानता हूं। किसी प्रकार का हल्ला गुल्ला तथा निंदा आदि की मैं परवाह नहीं करता। क्या मैं किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष का क्रीतदास हूं? क्या तुम कहना चाहते हो कि मैंने कुसंस्कार वाले, निष्ठुर प्रकृति, दुर्बल चित्त तथा तथाकथित शिक्षित व्यक्तियों के बीच निवास करने के लिए जन्म ग्रहण किया है? मैं सभी प्रकार की कापुरुषता से घृणा करता हूं। उन सब कापुरुषों व राजनीतिक मूर्खता के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ईश्वर और सत्य ही मेरी एकमात्र राजनीति है। शेष जो कुछ भी है केवल कूड़ा करकट है।

0: उन दिनों भारत इंग्लैंड के अधीन था। प्रभुत्व के अहंकार से फूले हुए साम्राज्यवादी अंग्रेज पराधीन जाति के एक धर्म प्रचारक सन्यासी को किस भाव से ग्रहण करेंगे, यही सोचते सोचते स्वामी जी लंदन पहुँचे। उनके मन में अंग्रेजों के प्रति प्रतिकूल धारणा रहना स्वाभाविक था, क्योंकि अंग्रेज भारतवासियों के साथ जिस तरह का व्यवहार करते थे उससे उनके मन में शंका उपस्थित होना ही स्वाभाविक था।
1: किंतु थोड़े दिनों में ही वो धारणा दूर हो गई। इंग्लैंड के शिक्षित व उच्च वंशी मध्य श्रेणी व साधारण श्रेणी के अंग्रेजों के साथ घनिष्ठ भाव से परिचित होकर उन्होंने अंग्रेज चरित्र के महत्व का आविष्कार किया। उन्होंने कहा था,
2: अंग्रेज जाति के प्रति मुझसे अधिक घृणा के भाव लेकर और किसी व्यक्ति ने ब्रिटिश भूमि पर पदार्पण नहीं किया है, पर आज यहां कोई व्यक्ति नहीं है जो अंग्रेज जाति को मुझसे अधिक चाहता हो।
1: अंग्रेज चरित्र की क्षत्रियोचित शूरता तथा आत्मसंयम, उसका निर्भीक उद्यम, अध्यवसाय तथा गांभीर्य की स्वामी जी ने बहुत प्रशंसा की है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए इंग्लैंड की नियमानुवर्तिता, आत्मसम्मान, ज्ञान तथा साथ ही विनीत व्यवहार देखकर वे मुग्ध हुए थे। अंग्रेज सहज ही किसी भाव में प्रवाहित नहीं हो जाते, परंतु जिसे वे एक बार सत्य जान लेते हैं उस पर फिर जीवन पर्यंत डटे भी रहते हैं। इंग्लैंड ने स्वामी जी को अमेरिका से भी अधिक प्रभावित तथा आकृष्ट किया।
0: स्वामी जी जहाँ भी जाते एक आंदोलन पैदा कर देते थे, इसलिए पाश्चात्य दुनिया उन्हें आंधी पैदा करने वाला हिंदू या साइक्लोनिक हिंदू नाम से पुकारता था। उन्होंने लंदन को भी हिला दिया। न्यूयॉर्क की तरह लंदन में भी भीड़ उमड़ने लगी। वे अंग्रेजों को भाव प्रचारक मानते थे। वे किसी भी बात को सारी दुनिया में प्रचार करने की क्षमता रखते थे, ऐसा स्वामी जी मानते थे। इसलिए उन्होंने सोचा, अगर मेरा आध्यात्मिक आदर्श अंग्रेजों को समझ में आ जाए तो वो सारे संसार में फैल जाएगा। ये सोचकर उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार की और वेदांत का प्रचार इंग्लैंड में शुरू किया।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 गीगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद। हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद

और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
3: अतुल्य भारत।
2: श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त कंचन।
4: और मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद शर्मा। श्रोताओं, घाटों की नगरी वाराणसी, मंदिरों का शहर वाराणसी, एक धार्मिक स्थल वाराणसी। वाराणसी है ही ऐसा, इसे जितना जाना जाए उतना कम है। इसलिए आज हम आपको परिचित करा रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ खास खास साहित्यकारों से।
2: श्रोताओं, साहित्य विद्या की ही एक शाखा है और विद्या की देवी है सरस्वती।
4: बिल्कुल,
2: बिना सरस्वती की कृपा के साहित्य का सृजन हो ही नहीं सकता। ये कृपा व्यक्ति पर भी होती है और स्थान पर भी। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर साहित्य की फसल खूब लहलहाती है।
4: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा।
2: हाँ, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में सरस्वती की कृपा का सिंचन कुछ अधिक ही होता है।
4: जी, वाराणसी के संदर्भ में बात करें तो यह बात साफ दिखाई देती है कि प्रयाग में सरस्वती आज भले ही अदृश्य हो गई हो, पर उसकी धारा गंगा में जरूर मिलती है और बहती हुई वाराणसी तक पहुंचती है और शायद यहाँ आकर खाली भी हो जाती है।
2: श्रोताओं, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कबीरदास जी की। माँ सरस्वती की कृपा से वाराणसी में साहित्य की जो अक्षय खदान खुदी हुई है उसके एक चमचमाते रत्न हैं कबीरदास जी। भारत में तो शायद ही कोई हो जिसने इनका नाम न सुना हो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको पसंद है वे। बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने वाले ये निर्गुण संत वाराणसी से लगे लहरतारा नाम के स्थान पर एक जुलाहे के घर में पले बढ़े।
4: पर शायद ईश्वर से योग की प्यास पिछले जन्मों से ही लिखा कर लाए थे वे, सो बालपन में ही गुरु की खोज में निकल पड़े। किसी ने कहा रामानंद से बढ़कर कोई गुरु नहीं, पर वे जल्दी किसी को शिष्य बनाते नहीं हैं। बस फिर क्या था, कबीर तो कबीर थे और कबीर के नाम का अर्थ होता है महान।
2: पता चला कि बाबा रामानंद जी मुंह अंधेरे ही गंगा स्नान को आते हैं। फिर क्या था, कबीर जी चुपचाप घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। अंधेरे में बाबा को दिखा नहीं तो उनका पैर कबीर जी की छाती पर पड़ गया। बाबा चौंक उठे, ये क्या, ये तो कोई मानवतन है। एकदम से पीछे हटे और बोले, राम राम बोल बच्चा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी।
4: बस फिर क्या था, कबीर बोले, अपना शिष्य बना लीजिए बाबा। कहते हुए कबीर ने उनके पांव पकड़ लिए। श्रोताओं, आपने कबीर को थोड़ा भी पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि निर्गुण संत होने के बावजूद कबीर की रचनाओं में राम का नाम बार बार आया है। चलिए उनकी कुछ चौपाइयां हम आपके ध्यान में लाते हैं।
2: कबीरा कोता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेहणी, जित खींचे तित जाऊं, दुल्हिन गावहूं मंगल चार, तोरे घर आए राजा राम भरतार। और इसी तरह एक और चौपाई है, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की पाश।
4: श्रोताओं, कबीर व रामानंद के संबंध में एक मुहावरा सामने आता है, गुरु तो गुड़ ही रह गए और चेला शकर बन गया। एक घटना हम आपको बताते हैं।
2: एक बार की बात है, रामानंद जी मंदिर में राम जी की पूजा कर रहे हैं। बाहर कबीर और उनके दूसरे शिष्य बैठे हैं। रामानंद जी राम का श्रृंगार कर रहे हैं। जब मुकुट पहना दिए तो ध्यान आया कि माला पहनाना तो भूल ही गए। माला छोटी थी, मुकुट के ऊपर से पहना ही नहीं जा सकती थी, पर मुकुट उतारना निषिद्ध था। गुरु क्या करें, चिंतित हो उठे वे।
4: बस फिर क्या था, बाहर बैठे कबीर निर्गुण के ध्यान में डूबे हुए थे और आंखों से सारा तमाशा देख रहे थे। सहसा बोल उठे, गुरुजी माला का गांठ खोल करके पहना दीजिए राम जी को और फिर दोबारा गांठ लगा दीजिए।
2: ये सुनते ही रामानंद जी सन्न रह गए। उन्होंने बाहर आते ही कबीर जी को गले से लगा लिया। आखिरकार ये सिद्ध हो चुका था कि निर्गुण और सगुण इनमें कोई भेद नहीं।
4: बिल्कुल,
2: तभी तो कुछ लोग कबीर जी की भक्ति को देखकर अचरज में पड़ जाते हैं।
4: हाँ, वे समझ ही नहीं पाते कि जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई शरीर नहीं है, उसके प्रति कबीर का इतना अनुराग कैसे? कैसे वे उनके वियोग के बावले हो जाते हैं? कैसे वे कहते हैं कि गोविंदा गुनगाइए? कैसे वे कहते हैं कि हरि जननी मैं बाकुल तेरा? जब

हरी निर्गुण है। श्रोताओं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर आप सुन रहे हैं अतुल्य भारत, और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी के कुछ खास साहित्यकारों की। और इसी श्रृंखला में अब हम चर्चा करते हैं तुलसीदास की। कबीरदास के संदर्भ में निर्गुण सगुण की जो चर्चा चली, उसे पूर्ण विराम दिया तुलसीदास ने। उन्होंने साफ कह दिया कि निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेदा।

0: श्रोताओ, इससे आप तो समझ ही सकते हैं कि वाराणसी उस समय शिक्षा का कितना बड़ा केंद्र था।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, तो वाराणसी में नरहरिदास के एक मित्र थे, शेष सनातन। नरहरिदास ने तुलसीदास जी को आगे की पढ़ाई के लिए उन्हीं के पास भेज दिया। शेष सनातन महान विद्वान थे। उनके सानिध्य में तुलसीदास जी ने संस्कृत व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, चारों वेद, छह वेदांग और छह दर्शनों की शिक्षा पाई।
1: 15-16 सालों की पढ़ाई के बाद तुलसीदास अब पुराने तुलसीदास नहीं रहे, वे प्रकांड विद्वान बन चुके थे और उनका श्रेय जाता है भोलेनाथ की इस नगरी को। इसके पास वे वापस लौट आए, पर अपने जीवन के उत्तरार्ध में एक बार फिर वाराणसी लौटे।
0: इस बार की उपलब्धि विद्या नहीं बल्कि भक्ति थी। आज जहां पर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, उसी स्थान पर हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, और वो भी एक प्रेत की कृपा से। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिदिन एक पेड़ पर जल चढ़ाया करते थे। इस पेड़ के भीतर एक प्रेत रहा करता था, तो प्रसन्न होकर उसने ही तुलसीदास जी को वो विधि बताई कि हनुमान जी के दर्शन कैसे होंगे।
1: लेकिन तुलसीदास की इच्छा तो राम से मिलने की थी, तो हनुमान जी ने उन्हें बताया कि राम जी के दर्शन तो उन्हें चित्रकूट में होंगे। यह एक लंबी कहानी है, अतः विषयांतर से बचने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं।
0: गोस्वामी तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार भी माना जाता है। वही वाल्मीकि जी जिन्होंने महान ग्रंथ रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। लेकिन लगता है कि बाद में जब संस्कृत आम जनता की भाषा नहीं रही, तब वाल्मीकि जी ने ही हिंदी भाषा में रामायण की रचना करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में फिर से जन्म लिया।
1: खैर, इस नए रामायण की रचना तुलसीदास ने रामचरितमानस के नाम से राम की जन्मभूमि अयोध्या में और अयोध्या की ही बोली अवधि में की। वैसे वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और चाहते तो संस्कृत में राम कथा लिख करके विद्वानों की वाहवाही लूट सकते थे, पर उनका उद्देश्य तो राम की कथा जनता को सुनाना था, सो उन्होंने जनता की ही भाषा चुनी।
0: रामचरितमानस के आरंभ और अंत की तिथियां भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा निर्धारित की गई थी। आपने सुना है कि तुलसीदास जी ज्योतिष शास्त्र में माहिर थे, तो इस ग्रंथ की रचना मंगलवार के दिन रामनवमी को शुरू की गई, ग्रह नक्षत्रों की उसी स्थिति में जिसमें राम जी का जन्म हुआ था।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसका समापन विवाह पंचमी पर हुआ। यह वह तिथि थी जब राम व जानकी का विवाह हुआ था।
0: अब गोस्वामी तुलसीदास जी की मंजिल एक बार फिर वाराणसी थी। उन्हें अपनी रचना शिव पार्वती जी को सुनानी जो थी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में। लेकिन वाराणसी के ब्राह्मण गोस्वामी तुलसीदास जी से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करके एक लोक भाषा अवधि में की थी।
1: वहां के पंडितों का दावा था कि ईश्वर की कृपा सिर्फ संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथों को ही मिलती है। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वेद, शास्त्र, पुराण जैसे संस्कृत ग्रंथों के ढेर के नीचे अवधि में रचित रामचरितमानस को विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में रख करके बाहर से ताला लगा दिया।
0: और श्रोताओं, सुबह जब ताला खोलकर देखा गया तो पाया गया कि रामचरितमानस पर सत्यम शिवम सुंदरम अंकित था, और उसके नीचे शिव जी के हस्ताक्षर थे। यहाँ तक कि बाहर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष भी सुना। शिव जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना पर अपनी मोहर लगा दी थी।
1: खैर, ये तो कुछ किंवदंतियां हैं। अपने जीवन का अंतिम समय तुलसीदास ने वाराणसी में ही बिताया, पर दार्शनिक तथ्य इसमें यह है कि वे अपने जीवन का अंत वाराणसी में करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा किया भी। 80 घाट पर उन्होंने देह त्यागा। इस संबंध में भी एक रोचक कथा मिलती है।
0: जब गोस्वामी तुलसीदास जी वाराणसी के 80 घाट पर निवास कर रहे थे, तो जीवन की संध्या बेला में कलयुग ने उन्हें सताना शुरू कर दिया। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि वे अपनी अर्जी राम जी के दरबार में लगाएं। ये अर्जी ही उनकी विनय पत्रिका है। राम जी ने इस पर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं।
1: श्रोताओं, गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका वाराणसी के 80 घाट पर ही रची गई थी। इसकी भाषा थी ब्रज भाषा और ये उनकी अंतिम कृति थी। उत्कृष्टता के विद्वान रामचरितमानस के बाद उन्होंने विनय पत्रिका को ही लिखा था। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
0: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अतुल्य भारत और अब हम बात करते हैं आधुनिक काल के साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। वाराणसी से संबंधित आधुनिक कालीन साहित्यकारों की बात करें तो पहला नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें आधुनिक हिंदी का आदि पुरुष कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी की नींव डालने वालों में वे प्रमुख थे।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि हिंदी की अनेक बोलियों में एक बोली का नाम है खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कहते हैं। कोरवी इसलिए क्योंकि इसका जन्म कुरुक्षेत्र के इलाके में हुआ। वही कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुआ, वही कुरुक्षेत्र जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था।
0: तो अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का जब विकास हो रहा था तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसके भिन्न भिन्न रूप विकसित हुए, जैसे अवध में अवधि, ब्रजभूमि में ब्रज, हमारे मालवा क्षेत्र में मालवी, कुरुक्षेत्र में कौरवी। श्रोताओं, ये लिस्ट काफी लंबी है जिसमें लगभग 19 बोलियां आती हैं, लेकिन इन 19 बोलियों में से साहित्य में ज्यादातर प्रयुक्त हुए अवध और ब्रज।
1: और वजह यह थी कि शुरुआती रचनाएं ज्यादातर भक्ति परक थी। राम के भक्तों ने अवधि व कृष्ण के भक्तों ने ब्रज का प्रयोग किया। आगे चलकर रीतिकाल में अवधि का जन्म भी ब्रज ने ही ले लिया, क्योंकि बिहारी धनानंद जैसे कवि श्रृंगार रचनाओं के लिए ब्रज ज्यादा उपयुक्त थी।
0: इस भाषा में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने की पुरानी परिपाटी जो थी,
1: बिल्कुल,
0: जबकि अवधि में राम जानकी के अनुराग का वर्णन अत्यंत मर्यादा के साथ किया गया है। प्रसंगवश तुलसीदास जी की कविता यहाँ पर याद आती है।
1: कौन सी कविता?
0: राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, ताते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही।
1: वाह,
0: ये प्रसंग उस समय का है जब राम जानकी जी का विवाह हो रहा था। माता जानकी भगवान श्री राम को देखना चाहती हैं, पर देखें कैसे, लोकलाज और मर्यादा की दीवार जो सामने है। तो उन्होंने अपने कंगन में लगे नग में राम जी की छवि देखी,
1: लेकिन हाथ हिला नहीं सकती थी, क्योंकि यदि ऐसा किया तो राम की छवि हट जाएगी। पलके भी नहीं झपका सकती थी, क्योंकि इतनी देर के लिए राम पलकों से ओझल हो जाएंगे। इसलिए वे अपना हाथ स्थिर कर लेती हैं और पलके नहीं गिराती।
0: धन्य धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने मर्यादा के साथ इतनी सुंदर श्रृंगारिक रचना की। श्रृंगार का मर्यादित रूप भी कितना सुंदर हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: ये आज के कलाकारों को इनसे सीखने की जरूरत है।
1: जी हाँ, खैर, जब भारतेंदु का अवतरण इस दुनिया में हुआ तो साहित्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा का बोलबाला था, लेकिन भारतेंदु महसूस कर रहे थे कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के लिए यह भाषा उपयुक्त नहीं है, इसके लिए खड़ी बोली अधिक उपयुक्त है। सो उन्होंने विशेषकर गद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली को आगे बढ़ाया।
0: चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक साहित्यकार मात्र ही नहीं थे, बल्कि साहित्यकारों की पूरी मंडली रखते थे, इसलिए उनकी प्रेरणा से खड़ी बोली का व्यापक इस्तेमाल शुरू हो गया।
1: सन 1850 में जन्मे भारतेंदु बचपन से ही पैसे को पैसा नहीं समझते थे। खूब संपदा विरासत में मिली थी तो दीपक में तेल की जगह वे इत्र जलाया करते थे। पूछा जाता तो कहते कि इस धन ने मेरे पुरखों को जलाया है, अब मैं इसे जला रहा हूं। लेकिन उनका यही स्वभाव, हिंदी साहित्य की फसल सींच गया।
0: उन्होंने अपना निजी पैसा खर्च करके साहित्यकारों को उसी तरह आश्रय दिया जिस तरह कभी राजे महाराजे किया करते थे। आज हिंदी में जितनी भी विधाएं हम देखते हैं उनमें से अधिकतर की नींव उन्होंने ही डाली। नाटक, निबंध, पत्रकारिता, कविता, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। खास करके नाटकों के विकास के लिए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हमेशा याद रखा जाएगा।
1: जी हाँ श्रोताओ, आप जानते हैं कि नाटक पढ़ने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए लिखे जाते हैं, और इन्हें खेलने के लिए रंगमंच की भी जरूरत होती है। लेकिन भारतेंदु के समय में हिंदी में रंगमंच ना के बराबर थे, सो भारतेंदु ने ना केवल नाटक लिखे बल्कि उन्हें खेलने के लिए मंचों की भी स्थापना की। वे अच्छे अभिनेता व निर्देशक भी थे, सो वे अपने लिखे नाटकों में अभिनय भी करते थे और निर्देशन भी करते थे।
0: श्रोताओं, हिंदी पत्रकारिता की नींव भी भारतेंदु जी ने ही डाली थी। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन किया। भारतेंदु जी को केवल एक साहित्यकार समझना उनके प्रति अन्याय होगा। हम तो कह सकते हैं कि वे पूरा एक युग थे, इसलिए हिंदी साहित्य में उनका काल भारतेंदु काल कहलाता है।
1: हाँ, एक साहित्यकार के होने के साथ साथ भारतेंदु एक राष्ट्रभक्त भी थे। उन्हें अंग्रेजों के शोषण से बड़ी पीड़ा पहुंचती थी, जिसकी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है, खास करके भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और नील दर्पण में तो उस काल का पूरा भारत ही देखा जा सकता है।
0: राष्ट्रभाषा की अवधारणा संभवतः सबसे पहले उन्होंने ही दी। अपनी भाषा को हेय मानकर विदेशी भाषा के पीछे भागने की प्रवृत्ति से उन्हें दुख पहुंचता था, इसलिए तो उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति अही, सब उन्नति को मूल। अर्थात जो समाज अपनी भाषा की उन्नति नहीं कर पाता, उसकी स्वयं की उन्नति भी नहीं हो पाती।
1: वाराणसी में स्थित काशी नगरी प्राचीरणी सभा आज हिंदी भाषा व साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना की कहानी भी बड़ी ही रोचक है।
0: सन 1893 की बात है। वाराणसी के क्विंस कॉलेज में नवी कक्षा के तीन छात्र श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह देख रहे थे कि अंग्रेजी और फारसी जैसी भाषाओं का इस्तेमाल तो लोग बड़े फक्र के साथ करते हैं, परंतु हिंदी का इस्तेमाल करने में खुद को हेय समझते हैं।
1: हाँ, सो हिंदी को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए उन्होंने इस संस्था की स्थापना अपने छात्रावास के बरामदे में बैठकर की। इसकी बैठक वाराणसी के घुड़साल में होती थी। इसकी खुद की इमारत तो बाद में जाकर के बनी है।
0: इस सभा ने हिंदी की जो सेवा की उसकी गिनती भी करना मुश्किल है। उस समय उत्तर प्रदेश में सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी और उर्दू का प्रचलन था, जबकि आम जनता की भाषा हिंदी थी। संयोग से मदन मोहन मालवीय भी तब तक इस सभा से जुड़ चुके थे, तो इसीलिए इन लोगों के प्रयत्नों से उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए उर्दू के साथ ही हिंदी का ज्ञान भी अनिवार्य कर दिया गया।
1: हिंदी की तितर बितर पांडुलिपियों को ढूंढकर प्रकाशित करने का जो काम नागरी सभा ने किया, उसका मूल्यांकन करना भी संभव नहीं है हमारे लिए। इसके संग्रहालय में आज हिंदी भाषा की लगभग 15,000 हस्तलिखित पांडुलिपियां मौजूद हैं।
0: और आलम यह है कि अगर आप हिंदी विषय में शोध कर रहे हैं तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की लाइब्रेरी में जाए बिना आपका काम नहीं चलने वाला।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है अतुल्य भारत, और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ महान साहित्यकारों के बारे में। और इसी कड़ी में अगला नाम है जयशंकर प्रसाद का। साल 1885, हिंदी के लिए एक दुखद साल था। मात्र 34 साल की उम्र में भारतेंदु दुनिया छोड़ करके चले गए, लेकिन इसके 5 साल बाद ही वाराणसी के ही सुगनी साहू के घर में मानो उन्होंने पुनर्जन्म ले लिया। इस बार उनका नाम था जयशंकर प्रसाद, लेकिन इस बार भगवान ने उन्हें एक साधारण घर में पैदा किया था। पिछले जन्म में तो उन्होंने बहुत पैसा उड़ाया था, शायद इसीलिए उन्हें इस बार एक गरीब घर में जन्म लेना पड़ा।
0: अभी 8वीं कक्षा में ही पढ़ रहे थे प्रसाद कि पिता चल बसे। अब दुकान भी संभालनी थी, पढ़ाई छूट गई, पर साहित्य की ललक मन में थी। घर में रहकर पढ़ना शुरू कर दिया और एक दिन खुद साहित्यकारों की अगली पंक्ति में पहुंच गए। आज हालत यह है कि 8वीं दर्जा पास प्रसाद की रचनाएं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं और उनकी एक एक कविता पर लोग पीएचडी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हिंदी नाटकों की बात करें तो पहला युग यदि भारतेंदु युग है तो दूसरा युग प्रसाद युग है।
0: बिल्कुल ठीक,
1: बात साफ है। भारतेंदु के ही समान प्रसाद भी युग पुरुष थे, खास करके नाटक व कविता के क्षेत्र में तो उनका कोई सानी नहीं था।
0: भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही तरह प्रसाद जी में भी राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और उनकी ये राष्ट्रभक्ति ही उनकी रचनाओं में बखूबी देखने को मिलती है।
1: जिस जमाने में अंग्रेज भारत के पढ़े लिखे लोगों को यह घुट्टी पिला रहे थे कि भारत तो शुरू से ही दीनहीन पिछड़ा व दरिद्र रहा है और ये अंग्रेज ही हैं जो इस देश की तरक्की कर रहे हैं, तो उस जमाने में प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से यह दिखाया कि नहीं, प्राचीन काल से ही भारत एक महान एवं ओजस्वी देश है।
0: उन्होंने पश्चिमी विद्वानों द्वारा परोसा गया ये इतिहास नहीं माना कि सिकंदर ने भारत को हराया था। अपने चंद्रगुप्त नाम के नाटक में उन्होंने ये सिद्ध भी कर दिया कि भारत विजय का सपना देखने वाला सिकंदर इसलिए भारत के किनारे से ही लौट गया क्योंकि वो भारत की शक्ति को जान गया था।
1: बिल्कुल ठीक। और इसी नाटक में प्रसाद ने वह प्रसिद्ध गीत भी लिखा है जो आजादी की लड़ाई के लिए भारतीय लोगों का उद्बोधन गीत बन गया था। उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं।
0: हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में इस गीत को गा देने से देशभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती थी।
1: हाँ, अगर कविताओं की बात करें तो प्रसाद को हिंदी छायावाद काव्यधारा के संस्थापकों में से एक माना जाता है। कामायनी नाटक उनका महाकाव्य तो न केवल छायावाद का बल्कि आधुनिक हिंदी का भी महाकाव्य है। यह महाकाव्य जीवन दर्शन से भरपूर है। इसकी अनेक पंक्तियां जीवन के अंधेरे पलों में राह दिखाती हैं।
0: इनमें से कुछ पंक्तियां हम आपको सुनाते हैं।
1: जी।
0: प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसाद ने ये बताया कि विनाश से ही सृजन होता है। जब फूल बासी हो जाते हैं तो वे झड़ जाते हैं और फिर नए फूल एक बार फिर से निकलते हैं।
1: मैं रीति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ। लज्जा सर की इन पंक्तियों में महाकवि का संदेश है कि लज्जा नारियों में शालीनता उत्पन्न करती है और उन्हें अनेक परेशानियों से बचाती है।
0: इसी सर्ग में वो विश्व प्रसिद्ध काव्य पंक्ति भी है जिसे अपने निबंधों में लिखते हुए हम बड़े हुए हैं, जिसका उपयोग वक्ता सभा पर अपनी छाप छोड़ने के लिए करते हैं। तो लीजिए, आप पर भी अपनी छाप छोड़ने के लिए हम भी इसे आपको सुना देते हैं।
1: नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
0: एक जमाने में संस्कृत भाषा में लिखा गया था कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसके बाद प्रसाद जी ने ये पंक्तियां लिखकर समाज में स्त्रियों का महत्व बताया। अब कुछ बातें कामायनी के मूल संदेश की भी कर लेते हैं श्रोताओं।
1: बिल्कुल।
0: इस काव्य में महाकवि का संदेश है समरसता, संतुलन और समन्वय। मध्यम मार्ग की वकालत की गई है इसमें। अति से बचो, अति भोग से बचो, नहीं तो प्रकृति के कहर से बच नहीं पाओगे, ऐसा बताया गया है इसमें। आज जबकि हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया प्रकृति बार बार कर रही है, तो इन संदेशों को ग्रहण करने की कुछ ज्यादा ही जरूरत है हमें।
1: श्रोताओं, अब हम क्षमा चाहते हैं आपसे। सोचतम यह रहे थे कि इस कार्यक्रम में वाराणसी के अधिक से अधिक साहित्यकारों के बारे में जानकारी आपको दे दें, लेकिन क्या करें, कबीर, तुलसी, भारतेंदु, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद जैसे युग पुरुषों पर चंद बातें करते करते हम भावनाओं में बह गए। अतः शेष बचे लोगों के लिए कुछ एक के बारे में कुछ खास बातें बताकर हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं।
0: श्रोताओं, एक जमाने में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला चंद्रकांता कार्यक्रम आपको याद होगा। ये कार्यक्रम चंद्रकांता नामक जिस उपन्यास पर आधारित था, उसके लेखक देवनंदन खत्री वाराणसी के ही निवासी थे और उन्हें हिंदी में मिस्ट्री नॉवेल्स का जन्मदाता कहा जाता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, राधा कृष्ण दास, मुंशी प्रेमचंद जैसे हिंदी साहित्यकारों ने ही वाराणसी शहर को इज्जत बख्शी है।
0: श्रोताओं, चलिए अब मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी कुछ चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और हिंदी उपन्यास का पूरा एक काल ही प्रेमचंद काल कहलाता है। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। 1930 के दशक में लिखा गया ये उपन्यास भारत के गांवों की इतनी संपूर्ण तस्वीर खींचता है कि इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य तक कहा गया है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। विश्व की लगभग सभी भाषाओं में इसका रूपांतरण हो चुका है। इसके रूसी रूपांतरण पर तो रशिया का सबसे बड़ा साहित्यकार पुरस्कार तक मिल चुका है। एक किसान होरी की कहानी है इसमें, जिसके जीवन काल की केवल एक ही महत्वाकांक्षा थी कि घर के आंगन में एक गाय हो।
0: उसकी ये महत्वाकांक्षा पूरी होती भी है और नहीं भी। वो कर्जदार हो जाता है, किसान से मजदूर हो जाता है और अंत में दम तोड़ देता है। भारत के किसान की बेबसी और लाचारी अगर आपको देखनी हो तो गोदान उपन्यास आप अवश्य पढ़ें। होरी जब मरता है तो ऐसा लगता है कि हमारे भीतर भी कुछ दरक गया।
1: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम अतुल्य भारत। आज का विषय था वाराणसी से जुड़े हुए कुछ साहित्यकारों के बारे में चर्चा। इसका आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और स्वर थे प्रमोद शर्मा
0: और कंचन राजानी के।
1: अब हमें आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: झूलोट के घर न आए।
2: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

0: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भारती, और मैं आपको सुनाऊंगी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी ममता। बाबू राम रक्षादास दिल्ली के एक ऐश्वर्यशील खत्री थे। बहुत ठाट बाट से रहते थे, बड़े बड़े अमीर उनके यहाँ आते थे। हमेशा आदर सत्कार हुआ करता था, पूरे मोहल्ले में धूम थी। रोज ही दरवाजे पर किसी न किसी बहाने इष्ट मित्र एकत्रित होते थे, टेनिस खेलते थे, हारमोनियम के मधुर स्वरों से जी बहलाते, चाय पानी होता, और क्या चाहिए। समाज की भी वो बहुत सेवा करते थे। समाज सुधार के लिए दिल्ली में सोसाइटी थी, बाबू साहब उसके सेक्रेटरी थे, और इस कार्य को असाधारण उत्साह से वो पूरा भी करते थे। जब उनका नौकर बीमार हुआ तो उन्होंने उसकी सेवा की थी। मिस्टर राम रक्षा का जातीय उत्साह यहीं तक सीमाबद्ध नहीं था, वे सामाजिक कुप्रथाओं और अंधविश्वास के प्रबल शत्रु थे। होली के दिनों में जबकि मोहल्ले में सर्वहारा वर्ग नशे करके गाते बजाते थे तो उन्हें बहुत शोक होता था। ये उनके प्रशंसनीय प्रयत्न थे जिन्होंने मुख्य होली के दिन दिल्ली में हलचल मचा दी थी। फाग गाने के अपराध में हजारों आदमी पुलिस के पंजे में आ गए थे। सैकड़ों घरों में मुख्य होली के दिन शोक की लहर फैल गई थी। इधर उनके दरवाजे पर हजारों पुरुष स्त्रियां अपना दुखड़ा रो रही थीं। उधर बाबू साहब के हितैषी मित्रगण अपने उदाशील मित्र के सद्व्यवहार की प्रशंसा करते थे। बाबू साहब दिन भर में इतने रंग बदलते थे कि उन पर पेरिस की परियों को भी ईर्ष्या हो सकती थी। कई बैंकों में उनके हिस्से थे, कई दुकानें थी, किंतु बाबू साहब को इतना अवकाश नहीं था कि उनकी कुछ देखभाल करते। अतिथि सत्कार एक पवित्र धर्म है, वे सच्ची देश हितेशिता की उमंग से कहा करते थे। अतिथि सत्कार आदिकाल से भारतवर्ष के निवासियों का एक प्रधान और सराहनीय गुण है। अभ्यागतों का आदर सत्कार करने में हम अद्वितीय हैं, हम इससे संसार में मनुष्य कहलाने योग्य हैं। मिस्टर राम रक्षा आवश्यकताओं से भी बेपरवाह नहीं थे, वे सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में पूर्ण रूप से योग देते थे। यहाँ तक कि प्रतिवर्ष दो बल्कि कभी कभी तीन वक्तृताएं अवश्य तैयार करते थे। भाषणों की भाषा अत्यंत उपयुक्त, ओजस्वी और सुंदर होती थी। व्याख्यान समाप्त होने पर उनके मित्र उन्हें गोद में उठा लेते थे और आश्चर्यचकित होकर कहते थे, वाह, आपकी भाषा में जादू है। सारांश ये कि बाबू साहब का ये जातीय प्रेम और उद्योग केवल बनावटी, सहायता शून्य और फैशनेबल था। यदि उन्होंने किसी सुद्योग में भाग लिया भी तो वो सम्मिलित कुटुंब का विरोध था। अपने पिता के पश्चात वे अपनी विधवा माँ से अलग हो गए थे। इस जातीय सेवा में उनकी स्त्री विशेष सहायक थी। विधवा माँ अपने बेटे और बहू के साथ नहीं रह सकती थी, इससे बहू की स्वाधीनता में विघ्न पड़ने से मन दुर्बल और मस्तिष्क शक्तिहीन हो जाता है। बहू को जलाना या कुढ़ाना सास की आदत नहीं थी, इसलिए बाबू राम रक्षा अपनी माँ से अलग हो गए थे। इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने मात्र ऋण का विचार करके 10,000 रुपए अपनी माँ के नाम जमा कर दिए थे ताकि उसके ब्याज से उनका निर्वाह होता रहे। किंतु बेटे के इस उत्तम आचरण पर माँ का दिल ऐसा टूटा कि वो दिल्ली छोड़कर अयोध्या चली गईं। तब से वहीं हैं। बाबू साहेब कभी कभी मिसेज राम रक्षा से छिपकर उनसे मिलने अयोध्या जाते हैं, किंतु वो दिल्ली आने का नाम कभी नहीं लेती। हाँ, यदि कुशल क्षेम की चिट्ठी पहुंचने में कुछ देर हो जाती है तो विवश होकर समाचार पूछ लेती थी। उसी मोहल्ले में एक सेठ गिरधारी लाल रहते थे। उनका लाखों का लेन देन था, वे हीरे और रत्नों का व्यापार करते थे। बाबू राम रक्षा के दूर के नाते में वो साड़ू भी होते थे, पुराने ढंग के आदमी थे। प्रातःकाल यमुना स्नान, गाय को अपने हाथों से झाड़ना पोछना, उनसे मिस्टर राम रक्षा का स्वभाव नहीं मिलता था। परंतु जब कभी रुपयों की आवश्यकता होती तो वो सेठ गिरधारी लाल के यहाँ से बेखटके मांग लिया करते थे। केवल 4 अंगुल के पत्र पर रुपया मिल जाता था, ना कोई दस्तावेज, ना स्टाम्प, ना साक्षियों की आवश्यकता। मोटर कार के लिए 10,000 की आवश्यकता हुई, वहां से आ गया। घुड़दौड़ के लिए एक ऑस्ट्रेलियन घोड़ा 1,500 में लिया था, उसके लिए भी रुपया सेठ जी के यहाँ से आया। धीरे धीरे यही कोई 20,000 का अब मामला हो चुका था। सेठ जी सरल हृदय के आदमी थे, समझते थे कि उनके पास दुकानें हैं, बैंकों में रुपया है, जब जी चाहेगा रुपया वसूल कर लेंगे। किंतु जब 2-4 साल बीत गए, सेठ जी के तकाजों की अपेक्षा मिस्टर राम रक्षा की मांग बढ़ गई, तो गिरधारी लाल को भी संदेह हो गया। वो एक दिन राम रक्षा के मकान पर आए और सभ्य भाव से बोले, भाई साहब, मुझे एक हुंडी का रुपया देना है, यदि आप मेरा हिसाब कर दें तो अच्छा होगा। ये कहकर हिसाब के कागजात और उनके पत्र उन्होंने दिखा दिए। मिस्टर राम रक्षा किसी गार्डन पार्टी में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो रहे थे, तो बोल उठे, इस समय क्षमा कीजिए, फिर देख लूंगा, थोड़ा जल्दी है। गिरधारी लाल को बाबू साहब की रुखाई पर क्रोध आ गया, वे गुस्सा हो गए। आपको जल्दी नहीं है, मुझे तो है, 200 रुपए मासिक की मेरी हानि हो रही है। मिस्टर राम रक्षा ने असंतोष प्रकट करते हुए घड़ी देखी, पार्टी का समय बहुत करीब था। वो बहुत विनीत भाव से बोले, भाई साहब, मैं बड़ी जल्दी में हूँ, इस समय मेरे ऊपर कृपा करो, मैं कल स्वयं उपस्थित हूँगा। सेठ जी एक माननीय और धन संपन्न आदमी थे, वे राम रक्षा के इस कुरुचिपूर्ण व्यवहार पर जल गए। उन्होंने कहा, मैं इनका महाजन हूँ, इनसे धन में मान में ऐश्वर्य में बड़ा हूँ, चाहूँ तो ऐसे को तो मैं नौकर रख लूँ, इनके दरवाजे पे आऊँ और आदर सत्कार की जगह ऐसा रूखा बर्ताव, वो हाथ बांधे मेरे सामने ना खड़ा रहे, किंतु क्या मैं पान इलायची इत्र आदि से भी सम्मान करने के योग्य नहीं। वो तिनक गए और बोल उठे, अच्छा तो कल हिसाब साफ हो जाए। राम रक्षा ने भी अकड़कर उत्तर दे दिया, हो जाएगा। राम रक्षा के गौरवशील हृदय पर सेठ जी के इस बर्ताव के प्रभाव का कुछ खेदजनक असर न हुआ। इस काठ के कुंदे ने आज मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिला दी, वो मेरा अपमान कर गया। अच्छा, तुम भी इसी दिल्ली में रहते हो और हम भी यहीं हैं, निदान दोनों में गांठ पड़ गई। बाबू साहब की तबीयत ऐसी गिरी कि हृदय में ऐसी चिंता उत्पन्न हुई कि पार्टी में जाने का ध्यान जाता रहा और वो देर तक इसी उलझन में पड़े रहे। फिर सूट उतार दिया और सेवक से बोले, जा मुनीम जी को बुलाकर लाओ। मुनीम जी आए, उनका हिसाब देखा गया, फिर बैंकों का अकाउंट। किंतु जैसे जैसे इस घाटी में उतरते गए, वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता गया। बहुत कुछ टटोला गया, कुछ हाथ नहीं था। अंत में निराश होकर वो आराम कुर्सी पर पड़ गए और उन्होंने एक ठंडी सांस ले ली। दुकानों का माल बिका, किंतु रुपया बकाया था, वो डूब गया। कलकत्ते के व्यापारियों से जो माल मंगाया था, रुपया चुकाने की तिथि सिर पर थी और रुपया वसूल नहीं हुआ। रात भर करवटे बदलते रहे चिंता में। अब क्या करना चाहिए, गिरधारी लाल सज्जन पुरुष हैं, यदि सारा कच्चा हाल उन्होंने सुना तो अवश्य मान जाएंगे, किंतु ये कठिन कार्य है। जैसे जैसे सुबह हो रही थी, वैसे ही उनका दिल बैठा जा रहा था। कच्चे विद्यार्थी की जो दशा परीक्षा के निकट आने पर होती है, वही हाल अब राम रक्षा की थी। वो पलंग से ना उठे, हाथ मुंह भी नहीं धोया, खाने को कौन कहे। इतना जानते थे कि दुख पड़ने पर कोई साथी नहीं है, इसलिए एक आपत्ति से बचने के लिए कई आपत्तियों का बोझ नहीं उठाना पड़े। इस ख्याल से मित्रों को इस मामले की खबर तक नहीं थी। रोगी को जब जीने की आशा नहीं होती तो औषधि भी छोड़ देता है। मिस्टर राम रक्षा जब इस कुत्ती को ना सुलझा पाए तो चादर तान ली और मुंह लपेट कर सो गए। शाम को एकाएक उठकर देखा, सेठ जी के यहाँ पहुंच गए और कुछ असावधानी से बोले, महाशय, मैं आपका हिसाब नहीं कर सकता। सेठ जी ने भी घबरा कर बोला, क्यों, क्या हो गया। राम रक्षा ने कहा, इसलिए कि मैं इस समय दरिद्र निहंग हूँ, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है, आप अपना रुपया जैसे चाहे वैसे वसूल कर लें। जब ये हाल था तो आपको उचित नहीं था कि मेरे गले पर छुरी फेरते, सेठ जी ने भी कह दिया। तब राम रक्षा ने अभिमान से कहा, मैं आपके यहाँ उपदेश सुनने के लिए नहीं आया हूँ। ये कहकर मिस्टर राम रक्षा वहां से चले गए। सेठ जी ने तुरंत नालिश कर दी, 20,000 रुपए मूल, 5,000 रुपए ब्याज, डिग्री हो गई, मकान नीलाम पर चढ़ गया, 15,000 की जायदाद 5,000 में निकल गई, 10,000 की मोटर 4,000 में बिक गई, सारी संपत्ति उड़ जाने पर कुल मिलाकर 16,000 से अधिक रकम न खड़ी हुई। सारी गृहस्थी नष्ट हो गई, तब भी 10,000 के ऋणी वो रह गए। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही दिल्ली म्यूनिसिपलिटी के मेंबरों का चुनाव हुआ। सेठ गिरधारी लाल के मोहल्ले में उनके एक और प्रतिवादी थे, नाम था मुंशी फैजुल रहमान खां, बड़े जमींदार और प्रसिद्ध वकील थे। बाबू राम रक्षा ने अपनी दृढ़ता, साहस, बुद्धिमानी और मृदु भाषण में मुंशी साहब की सेवा करनी आरंभ कर दी। सेठ जी को परास्त करने का ये अपूर्व अवसर हाथ आया। वे रात और दिन इसी धुन में लगे रहते। उनकी मीठी और रोचक बातों का प्रभाव उपस्थित जनों पर बहुत पड़ता। एक बार अपने असाधारण श्रद्धा उमंग में उन्होंने कहा, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि मुंशी फैजुल रहमान से अधिक योग्य आदमी आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा। ये वो आदमी है जिनकी गजलों पर कवि जनों में वाह वाह मच जाती है। ऐसे श्रेष्ठ आदमी की सहायता करना मैं अपना जातीय और सामाजिक धर्म समझता हूँ। अत्यंत शोक का विषय है कि बहुत से लोग इस जाति और पवित्र काम को व्यक्तिगत लाभ का साधन बनाते हैं। धन और वस्तु है, श्रीमान वायसराय के दरबार में प्रतिष्ठित होना और वस्तु, किंतु सामाजिक सेवा और जाति चाकरी और चीज है। वो मनुष्य जिसका जीवन ब्याज प्राप्ति, बेईमानी, कठोरता और निर्दयता और सुख विलास में व्यतीत होता है, इस सेवा के योग्य कभी नहीं है। सेठ गिरधारी लाल इस अनुक्तिपूर्ण भाषण पर हाल सुनकर क्रोध से आग हो गए। क्या मैं बेईमान हूं, ब्याज का धन खाता हूं, विषयी हूं, कुशल हूं, जो तुमने मेरा नाम नहीं लिया, किंतु अब भी तुम मेरे हाथ में हो। मैं अब भी तुम्हें जिस तरह चाहूं नचा सकता हूं। खुशामदियों ने आग पर तेल डाल दिया। इधर राम रक्षा अपने काम में तत्पर रहे। यहां तक कि वोटिंग डे आ गया। मिस्टर राम रक्षा को उद्योग में बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई। आज वो प्रसन्न थे। गिरधारी लाल को नीचा दिखाऊंगा, आज उसको पता पड़ेगा कि धन संसार में सभी पदार्थों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। जिस समय फैजुल रहमान के वोट अधिक निकलेंगे और मैं तालियां बजाऊंगा, उस समय गिरधारी लाल का चेहरा देखने योग्य होगा। मुंह का रंग बदल जाएगा, हवाइयां उड़ने लगेंगी और वो मुझसे आंख न मिला पाएगा। शायद फिर मुझे मुंह ना दिखा सके। इन्हीं विचारों में मग्न राम रक्षा शाम को टाउन हॉल में पहुंच गए। उपस्थित जनों ने बड़ी उमंग के साथ उनका स्वागत किया। वोटिंग आरंभ हुई। मेंबरी मिलने की आशा रखने वाले महानुभाव अपने अपने भाग्य का अंतिम फल सुनने के लिए आतुर थे। 6 बजे चेयरमैन ने फैसला सुना दिया। सेठ जी की हार हो गई। फैजुल रहमान ने मैदान मार लिया। राम रक्षा ने तो हर्ष के मारे आवेग में टोपी हवा में उछाल दी और स्वयं भी कई बार उछल पड़े। मोहल्ले वालों को अचंभा हुआ। चांदनी चौक से सेठ जी को हटाना, मेरू को स्थान से उखाड़ना था। सेठ जी के चेहरे से राम रक्षा की जितनी आशाएं थी वो सब पूरी हो गई और उनका रंग फीका पड़ गया। खेद और लज्जा की मूर्ति बन गए। सेठ जी ने बहुत रोकना चाहा, परंतु आंखों से आंसू डबडबा ही गए। किंतु बाबू राम रक्षा बहुत देर तक इस आनंद का मजा ना लूट पाए। सेठ जी को बदला लेने के लिए बहुत देर प्रतीक्षा नहीं करना पड़ा। सभा वर्जित होते ही जब बाबू राम रक्षा सफलता की उमंगों में ऐंठते, मूछों पर ताव देते और चारों ओर गर्व की दृष्टि डालते हुए बाहर आए, तो दीवानी के 3 सिपाहियों ने आगे बढ़कर उन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिखा दिया। आपकी बाबू राम रक्षा के चेहरे का रंग उतर गया और सेठ जी के इस मनोवांछित दृश्य से आनंद उठाने की बारी थी। गिरधारी लाल ने आनंद की उमंग में तालियां तो नहीं बजाई, परंतु मुस्कुरा कर मुंह फेर लिया और रंग में भंग पड़ गया। मिस्टर राम रक्षा के घर पर ज्यों ही ये खबर पहुंची, कोहराम मच गया। उनकी स्त्री पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। होश में आई तो रोने लगी। रोने से छुट्टी मिली तो उन्होंने गिरधारी लाल को कोसना शुरू कर दिया। मिसेज राम रक्षा बहुत देर तक अपने विचारों में डूबी रही। रात करवटे बदलने में बीत गई। गिरधारी लाल बड़ा बदमाश और घमंडी है। मेरा सब कुछ लेकर भी उसे संतोष नहीं है। इतना भी इस निर्दय कसाई ने नहीं देखा। भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों से मिलकर एक रूप धारण हुआ और क्रोधाग्नि को दहलाकर और प्रबल हो गई। ज्वालामुखी शीशे में जब सूर्य की किरणें एक होती हैं, तब अग्नि प्रकट हो जाती है। उसी तरह इस स्त्री के हृदय में रह रहकर क्रोध की एक असाधारण लहर उत्पन्न हो रही थी। बच्चे ने मिठाई के लिए हट किया, उस पर बरस पड़ी। मेहरी ने चौका बर्तन करके चूल्हे में आग जला दी तो उसके पीछे पड़ गई। मैं तो अपने दुखों को रो रही हूँ। इस चुड़ैल को रोटियों की धुन सवार है। और हुआ ये कि 9 बजे उससे रहा नहीं गया और उसने एक पत्र लिखकर अपने हृदय की ज्वाला ठंडी कर ली। सेठ जी, तुम्हें अब अपने धन के घमंड ने अंधा कर दिया है। किंतु किसी का घमंड इसी तरह सदा नहीं रहता, कभी न कभी सिर अवश्य नीचा होता है। अफसोस कि कल शाम को जब तुमने मेरे प्यारे को पकड़वाया, मैं वहां मौजूद नहीं थी, नहीं तो अपना और तुम्हारा रक्त एक कर देती। तुम धन के मद में भूल गए हो, मैं उसी समय तुम्हारा नशा उतार देती। एक स्त्री के हाथों अपमानित होकर तुम फिर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। इसका बदला तुम्हें किसी न किसी तरह जरूर मिलेगा। मेरा कलेजा उस दिन ठंडा होगा जब तुम निर्वश हो जाओगे और तुम्हारे कुल का नाम मिट जाएगा। सेठ जी पर यह फटकार पड़ी तो वो क्रोध से आग बबूला हो गए। ये भी ध्यान नहीं रहा कि एक सताई हुई स्त्री की ये मानसिक दुर्बलता का विचार है। उसकी धनहीनता विवशता पर उन्हें तनिक भी दया नहीं आई। मरे हुए को मारने का उपाय वो फिर सोचने लगे। तीसरे दिन सेठ गिरधारी लाल पूजा के आसन पर बैठे। मेहरा ने आकर कहा, सरकार कोई स्त्री आपसे मिलने आई है। सेठ जी ने कहा, कौन स्त्री? नौकर ने कहा, सरकार मुझे क्या मालूम, लेकिन है कोई भले मानुष, रेशमी साड़ी पहने हैं, हाथ में सोने के कड़े हैं, पैरों में टाट के स्लीपर हैं, बड़े घर की स्त्री जान पड़ती है। यूं तो साधारण सेठ जी पूजा के समय किसी से नहीं मिलते, कोई भी कितना ही काम क्यों ना हो, ईश्वर उपासना उनके लिए जरूरी है, किंतु ऐसी दशा में जबकि किसी बड़े आदमी की स्त्री उनसे मिलने आई है तो वो थोड़ी देर के लिए पूजा में विलम्ब करना उचित समझ बैठे। ऐसा विचार करके वो बोल दिए, बुला लाओ। जब स्त्री आई तो सेठ जी स्वागत के लिए खड़े हो गए। अत्यंत कोमल वचनों में, कारुणिक शब्दों में बोले, माता कहाँ से आना हुआ? जब ये उत्तर मिला कि वो अयोध्या से आई हैं, तो आपने उन्हें फिर एक बार दंडवत किया। चीनी और मिश्री से भी अधिक मधुर और नवनीत से भी अधिक चिकने शब्दों में कहा, अच्छा आप श्री अयोध्या से आई हैं, आपकी नगरी का क्या कहना, देवताओं की पूरी है, बड़े भाग्य थे कि आपके दर्शन हुए, और यहाँ आपका आगमन कैसे हुआ माते? तब उस स्त्री ने उत्तर दिया, घर तो मेरा यही है। सेठ जी का मुख पुनः मधुरता का चित्र बन गया। वो बोले, अच्छा तो मकान आपका यही इसी शहर में है, तो आपने माया जंजाल को त्याग दिया। ये तो मैं पहले ही समझ गया था, ऐसी पवित्र आत्माएं संसार में बहुत थोड़ी हैं, ऐसे देवियों के दर्शन दुर्लभ होते हैं, आपने मुझे दर्शन दिया, बड़ी कृपा की। मैं इस योग्य नहीं जो आप जैसी विदुषियों की सेवा कर सकूं, किंतु जो काम मेरे योग्य हो, जो कुछ मेरे लिए हो सकता हो, उसे करने के लिए मैं सब भांति तैयार हूं। यहां सेठ साहूकार ने मुझे बदनाम कर रखा है, मैं सबकी आंखों में खटकता हूं। इसका कारण सिवा इसके और कुछ नहीं कि लोग जहां लोभ का ध्यान रखते हैं, वहां मैं भलाई रखता हूं। यदि कोई बड़ी अवस्था का वृद्ध मनुष्य मुझसे कुछ कहने सुनने के लिए आता है, तो विश्वास मानिए मुझसे उसका वचन टाला नहीं जाता। कुछ बुढ़ापे का विचार, कुछ उसके दिल टूट जाने का डर, कुछ ये ख्याल कि कहीं ये विश्वासघातियों के फंदे में ना फंस जाऊं, मुझे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवश कर देता है। मेरा सिद्धांत है कि अच्छी जायदाद और कम ब्याज। किंतु इस प्रकार बातें आपके सामने करना व्यर्थ है माता जी, आपसे तो घर का मामला है। मेरे योग्य जो काम हो, उसके लिए मैं सिर आंखों से तैयार हूं। तब वृद्ध स्त्री ने कहा, मेरा काम आप ही से हो सकता है। सेठ जी ने तो प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, आज्ञा दीजिए। स्त्री ने कहा, मैं आपके सामने भिखारिन बनकर आई हूं, आपको छोड़कर कोई मेरा सवाल पूरा कर ही नहीं सकता। सेठ जी ने भी तत्पर होकर कहा, कहिए कहिए। तब स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, आप राम रक्षा को छोड़ दीजिए। सेठ जी के मुंह का रंग उतर गया, सारे हवाई किले जो अभी अभी तैयार हुए थे सारे गिर पड़े। उसने मेरी बहुत हानि की है, उसका घमंड तोड़ डालूंगा तब छोड़ूंगा, सेठ जी ने बोल दिया। तब स्त्री ने कहा, तो क्या कुछ मेरे बुढ़ापे का, मेरे हाथ फैलाने का, कुछ अपनी बड़ाई का विचार ना करोगे? बेटा ममता बुरी होती है, संसार से नाता टूट जाए, धन जाए, धर्म जाए, किंतु लड़के का स्नेह हृदय से नहीं जाता। संतोष सब कुछ कर सकता है, किंतु बेटे का प्रेम माँ के हृदय से नहीं निकल सकता। इस पर हाकिम का, राजा का, यहाँ तक कि ईश्वर का भी बस नहीं है। मुझ पर तरस खाओ, मेरे लड़के की जान छोड़ दो बेटा, तुम्हें बड़ा यश मिलेगा, मैं जब तक जीऊँगी तुम्हें आशीर्वाद देती रहूँगी। सेठ जी का हृदय कुछ पसीज गया, पत्थर की तह में पानी रहता है, किंतु तत्काल ही इन्हें मिसेज राम रक्षा के पत्र का ध्यान आ गया। तो वो बोल उठे, मुझे राम रक्षा से कोई उतनी शत्रुता नहीं है। यदि उन्होंने मुझे ना छेड़ा होता तो मैं ना बोलता। आपके कहने से मैं अब भी उनका अपराध क्षमा कर सकता हूँ, परंतु उनकी बीवी साहिबा ने जो मुझे पत्र भेजा है उसे देखकर मेरे शरीर में आग लग गई है। दिखाऊं आपको? राम रक्षा की माँ ने पत्र लेकर पढ़ लिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो भीगी आंखों से बोली, बेटा, इस स्त्री ने मुझे भी दुख दिया है। उसने मुझे देश से निकाल दिया। उसका मिजाज और जुबान उसके वश में नहीं है, किंतु इस समय उसने जो गर्व दिखाया है उसका तुम्हें ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम उसे भुला दो। तुम्हारा देश देश में नाम है बेटा। ये नेकी तुम्हारे नाम की और भी फैल जाएगी। मैं तुमसे प्रण करती हूँ कि सारा समाचार राम रक्षा से लिखवाकर किसी अच्छे समाचार पत्र में छपवा दूंगी। राम रक्षा मेरा कहना नहीं टालेगा। तुम्हारे इस उपकार को वो कभी नहीं भूलेगा बेटा। जिस समय ये समाचार संवाद पत्रों में छपेंगे उस समय हजारों मनुष्यों को तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा होगी। सरकार में तुम्हारी बड़ाई होगी और मैं सच्चे हृदय से कहती हूँ कि शीघ्र ही तुम्हें कोई ना कोई पदवी जरूर मिल जाएगी। राम रक्षा की अंग्रेजों से बहुत मित्रता है, वे उसकी बात नहीं टालेंगे। सेठ जी के हृदय में अब गुदगुदी हो गई। यदि व्यवहार में वो पवित्र और माननीय स्थान प्राप्त हो जाए जो माताजी कह रही हैं, जिसके लिए हजारों खर्च किए, हजारों डालियां दी, हजारों अनुनय विनय की, हजारों खुशामदे की, खानसामों की झिड़कियां सही, बंगलों के कई चक्कर लगाए, तो इस सफलता के लिए ऐसे कई हजार में खर्च कर सकता हूँ। निसंदेह मुझे इस काम में राम रक्षा से बहुत कुछ सहायता मिल सकती है, किंतु इन विचारों को प्रकट करने से क्या लाभ? उसने कहा, माताजी, मुझे नाम नमूद की बहुत चाह नहीं। बड़ों ने कहा है, नेकी कर दरिया में डाल। मुझे तो आपकी बात का ख्याल है। पदवी मिले तो लेने से इनकार नहीं और ना मिले तो तृष्णा नहीं, परंतु ये तो बताइए कि मेरे रुपयों का क्या प्रबंध होगा? आपको मालूम होगा कि मेरे 10,000 रुपए आते हैं, वो कैसे मिलेंगे? तब राम रक्षा की माँ ने कहा, तुम्हारे रुपए की जमानत मैं करती हूँ। ये देखो, बंगाल बैंक की पासबुक है, इसमें मेरा 10,000 रुपया जमा है। उस रुपए से तुम राम रक्षा को कोई व्यवसाय करा दो। तुम उस दुकान के मालिक रहोगे, राम रक्षा को उसका मैनेजर बना दो। जब तक वो तुम्हारे कहे पर चले निभाना, नहीं तो दुकान तुम्हारी। मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। मेरी खोज खबर लेने वाला ईश्वर है। मेरा राम रक्षा अच्छा रहे, इससे अधिक मुझे और नहीं चाहिए। ये कहकर पासबुक सेठ जी को दे दी। माँ के अतः प्रेम ने सेठ जी को विहल कर दिया। पानी उबल पड़ा और पत्थर के नीचे ढक गया। ऐसे पवित्र दृश्य देखने के लिए जीवन में कम ही अवसर मिलते हैं। सेठ जी के हृदय में परोपकार की लहर उठ गई, आंखें डबडबा आई। जिस प्रकार पानी के बहाव से कभी कभी बांध टूट जाता है, उसी प्रकार परोपकार की एक उमंग ने स्वार्थ और माया के बांध को तोड़ दिया। वे पासबुक वृद्ध स्त्री को वापस देकर बोले, माता जी, ये अपनी किताब ले लो, मुझे अब अधिक लज्जित ना करो। ये देखो, राम रक्षा का नाम वही से उड़ा देता हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपना सब कुछ पा लिया। आज तुम्हारा राम रक्षा तुमको मिल जाएगा। इस घटना के 2 वर्ष बाद टाउन हॉल में बड़ा जलसा हुआ। बैंड बज रहा था, झंडियां और ध्वजाएं वायुमंडल में लहरा रही थी। नगर के सभी माननीय पुरुष उपस्थित थे। एकाएक मुश्की घोड़ों की एक फिटन अहाते में प्रवेश हुई। सेठ गिरधारी लाल बहुमूल्य वस्त्रों से सजे हुए उसमें से उतरे। उनके साथ फैशनेबल नवयुवक अंग्रेजी सूट पहने मुस्कुराते हुए उतरा। ये मिस्टर राम रक्षा थे। वे अब सेठ जी की एक खास दुकान के मैनेजर हैं। केवल मैनेजर ही नहीं, किंतु उनके मैनेजिंग प्रोप्राइटर ही समझ लीजिए। दिल्ली दरबार में सेठ जी को राय बहादुर का पद मिला है। आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नियमानुसार इसकी घोषणा करेंगे और सूचित करेंगे कि नगर के माननीय पुरुषों की ओर से सेठ जी को धन्यवाद देने के लिए ये बैठक हुई है। सेठ जी की ओर से धन्यवाद का वक्तव्य मिस्टर राम रक्षा करेंगे। जिन लोगों ने उनकी वक्तृताएं सुनी वो बहुत उत्सुकता से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। बैठक समाप्त होने पर सेठ जी राम रक्षा के साथ अपने भवन पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि आज वही वृद्धा उनसे मिलने आई है। सेठ जी दौड़कर राम रक्षा की माँ के चरणों से लिपट गए। उनका हृदय इस समय नदी की भांति उमड़ रहा था। राम रक्षा एंड फ्रेंड्स नामक चीनी बनाने का कारखाना अब बहुत उन्नति पर है। राम रक्षा अब भी उसी ठाट बाट से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किंतु पार्टियां कम देते हैं। दिन भर में 3 से अधिक सूट नहीं बदलते। वे अब उस पत्र को जो उनकी स्त्री ने सेठ जी को लिखा था संसार की एक बहुत अमूल्य वस्तु समझते हैं, और मिसेज राम रक्षा को भी अब सेठ जी के नाम को मिटाने की अधिक चाह नहीं है, क्योंकि अभी हाल में जब लड़का पैदा हुआ तब मिसेज राम रक्षा ने अपना सुवर्ण कंकन धाय को उपहार दिया था और मनो मिठाई बांटी थी। ये सब हो गया, किंतु वो बात जो अब होनी चाहिए थी नहीं हुई। राम रक्षा की माँ अब भी अयोध्या में रहती है और अपनी पुत्र वधु की सूरत कभी नहीं देखना चाहती।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: मैं हूं हरिप्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
3: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, मैं हूं कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये मेरा इंडिया। देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं,

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं गायन गौरव अभ्यंकर का, और इसके बाद प्रस्तुति होगी रघुनंदन पंचीकर के गायन की। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गौरव अभ्यंकर का गायन।
2: गायन का प्रारंभ एक स्वर रचित शिव वंदना से करूंगा, जो कि याग रमन राग यमन में एक ताल में निबद्ध है, मध्य लय की रचना है।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: मैं हूं हरिप्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं संतोष तिवारी और साथी कलाकारों द्वारा बघेली लोक गायन।
2: बसंत के ऋतु के ऊपर कुछ गीत सुनाते हैं। पहला गीत है छाई छाई बसंत बयार, कुहक उठी कोयलिया।

अक्सर आपने देखे होंगे, देखा होगा कि बसंत ऋतु जब आती है तो बसंत पंचमी में हमारे तरफ यहाँ भी होता होगा कि मेले लगते होंगे, मकर संक्रांति का मेला, बसंत पंचमी का मेला, और अभी शिवरात्रि है, शिवरात्रि के भी मेले लगेंगे। मेलों की अपनी अलग परंपरा रही है, 9 दिन चैत्र में और 9 दिन कुमार में भी मेले लगते हैं। मेले में अक्सर आपने देखा होगा कि वो 4 मच्छियाँ छोटी छोटी रहती हैं, उनके वो झूले जो ऊपर से नीचे घूमते हैं, पुराने ज़माने में लकड़ी के वो आते थे, उनको रहट या यहाँ जो भी बोलते हो लहचुआ है ना, यहाँ लहचुआ बोलते हैं और रहट बोलते हैं, उसका एक गीत सुनिएगा, उस को कहते हैं हिंडोला। और हमारे बघेले में वो हिंडोला आते आते उसका जो गायन परंपरा थी वो हिंडुली हुई, और आजकल उसे हिंदुली कहते हैं। सुनिए हिंदुली।

लीजिए, एक शंकर जी का भी गीत होना चाहिए और शिवरात्रि की परंपरा के अनुसार है। का दई के शिव का मनाई रे, मतलब हम क्या दें कि शिव मान जाएं, शिव मानत नहीं। सुनिए गीत।

एक सुनिए हुरी, सिर बांधे मुकुट खेले हुरी। इसमें सतयुग से शंकर भगवान पार्वती के साथ, फिर त्रेता में भगवान श्री राम सीता जी के साथ, और द्वापर में कृष्ण भगवान राधा के साथ होली खेल रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया चित्रण है।

तो श्रोताओं, संतोष तिवारी और साथी कलाकारों द्वारा बघेली लोक गायन अभी आपने सुना। इसके बाद सुनिए जुगलबंदी सरोद और सितार वादन की, जिसमें कलाकार हैं पंडित तेजेंद्र नारायण और पंडित पूर्वायन चटर्जी।

तो श्रोताओं, पंडित तेजेंद्र नारायण और पंडित पूर्वायन चटर्जी की सरोद सितार जुगलबंदी को सुनने के बाद आज का कार्यक्रम भारत भारती संपन्न होता है। दीजिए अपने दोस्त दानिश को इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: कुछ यादें उन्हें भी कर लो।
1: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: जो लौट के घर न आए।
2: शुभ संध्या। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। शाम के 5 बजे हैं, अब से लेकर रात्रि 10 बजे तक हमारा प्रसारण यूं ही जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुने अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
4: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के दशम मंडल के सूक्त 116 से वाचन। ऋषि हैं अग्नियुत सथौर अथवा अग्नियुप सथौर, देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टुप।
5: पिबा सोमम महत इंद्रियाय पिबा वृत त्राय हंतवे शविष्ठ पिबराये शवसे हुयमानः पिब मध्वस्त्री पदिंद्रा वृषस्व। बलशालियों में अग्रणी हे इंद्रदेव, आप प्रचुर सामर्थ्य की प्राप्ति और वृत्रासुर के वध के लिए सोमपान करें। आप स्तुति किए जाने पर हमें अन्न और ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए सोमपान करें। आप मधुतुल्य सोमरस पान से संतुष्ट होकर हमारी कामनाओं को पूर्ण करें। अस्य पिब क्षुमतः प्रस्थितस्येन्द्र सोमस्य वरमा सुतस्य स्वस्तिदा मनसा मादयस्वार्वाचीनो रेवते सौभगाय। हे इंद्रदेव, आप श्रेष्ठ रीति से प्रस्तुत अभिशवित हविरूप सोमरस के श्रेष्ठ भाग का पान करें। कल्याणकारी मन से आप आनंदित हों तथा ऐश्वर्य और सौभाग्य प्रदान करने के लिए अग्रसर हों। ममत्तु त्वा दिव्यः सोम इंद्र ममत्तु यः सूयते पार्थिवेषु ममत्तु येन वरिवश्चकर्थ ममत्तु येन निरिणासि शत्रून। हे इंद्रदेव, आपको दिव्य सोम प्रोत्साहित करे। पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा संपादित यज्ञों में जो अभिशवित किया जाता है वह भी आपको प्रशंसित करे, जिससे आप श्रेष्ठ ऐश्वर्यों को धारण करते

शांति निकेतन में रहते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य का गहन अध्ययन किया। यहीं से उन्होंने स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। शांति निकेतन में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और आचार्य क्षिति मोहन सेन की साहित्यिक ऊर्जा ने उन्हें लेखन हेतु प्रेरित किया और शांति निकेतन के खुले वातावरण में उन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा और कबीर जैसे श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लगभग 20 वर्षों तक शांति निकेतन में अध्यापन का कार्य किया। इस दौरान वो सन 1940 से 1950 तक हिंदी भवन शांति निकेतन के निदेशक भी रहे। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। 20 वर्षों तक शांति निकेतन में अध्यापन कार्य करने के बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सन 1950 में बनारस वापस आ गए और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। इसके बाद सन 1952 में उन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला, जो कि हिंदी भाषा, साहित्य और देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था रही है। सन 1955 में उन्हें प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। कुछ वर्षों तक इस पद पर कार्य करने के बाद उन्होंने सन 1960 से 1967 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसके बाद सन 1968 से वो पुनः बनारस आ गए और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। यहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद वो देश की हिंदी विषयक योजनाओं से संबद्ध रहे। जीवन के अंतिम दिनों में भी वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में सेवाएं दे रहे थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक हिंदी साहित्य की कई विधाओं में साहित्य सृजन किया, जिनमें मुख्य रूप से निबंध, आलोचनाएं और उपन्यास शामिल हैं। उनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विष के दांत, कल्पतरु, साहित्य सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व आदि। आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ भी अत्यंत प्रसिद्ध हुए। हिंदी साहित्य में इनका विशिष्ट स्थान है। उनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास आदि। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा उनके लिखे प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इसके अलावा उनकी अनेक संपादित और अनुदित रचनाएं भी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के एक महान साधक थे, जो अपनी सृजन यात्रा पर अनथक चलते रहे।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें विशेष ज्ञान था। उन्होंने विपुल साहित्य का सृजन किया। हिंदी निबंध और आलोचनात्मक ग्रंथों के लेखन में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। वो हिंदी साहित्य जगत के उच्च कोटि के निबंधकार और उत्कृष्ट आलोचक माने जाते हैं। उन्होंने सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास आदि पर जो विद्वत्तापूर्ण रचनाएं लिखी हैं, वो हिंदी में पहले नहीं लिखी गईं। उनका निबंध साहित्य हिंदी की स्थायी निधि है। उनकी सभी कृतियों पर उनके गहन विचारों और मौलिक चिंतन की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। सूर साहित्य उनकी पहली रचना है, जिसका प्रकाशन 1930 के दशक में हुआ था। इस रचना के प्रथम दो अध्याय राधा कृष्ण का विकास, स्त्री पूजा और उसका वैष्णव रूप निश्चित रूप से सूचना प्रधान और शोधपरक है। हिंदी साहित्य की भूमिका के प्रकाशन के साथ द्विवेदी जी को हिंदी साहित्य जगत में व्यापक स्वीकृति मिली थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकालीन साहित्य का अध्ययन कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों के द्वारा करना उचित समझते थे। उन्होंने चार प्रमुख बातों पर बल दिया। पहला, हिंदी साहित्य को संपूर्ण भारतीय साहित्य से संबद्ध करके देखा जाए। दूसरा, हिंदी साहित्य के माध्यम से व्यक्त चिंतन धारा को भारतीय चिंतन के स्वाभाविक विकास के रूप में स्वीकार किया जाए। तीसरा, हिंदी साहित्य को ठीक से समझने के लिए मात्र हिंदी ग्रंथों पर निर्भर न रहकर जैन, बौद्ध, अपभ्रंश साहित्य, कश्मीर के शैव और दक्षिण तथा पूर्व के तांत्रिकों का साहित्य, नाथ योगियों का साहित्य, वैष्णव आगम, पुराण और लौकिक कथा साहित्य, ये सब कुछ देखा परखा जाए। और चौथा, साहित्य के इतिहास को जन चेतना के इतिहास के रूप में व्याख्यायित किया जाए। इस तरह एक बहुत विस्तृत दृष्टि उनके पास थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कबीर जब प्रकाशित हुई, तब उनका समीक्षक रूप उभर कर सामने आया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना था कि कबीर ने जाति पाति का विरोध, निर्गुण साधना परंपरा, योग परक उलटबासियां, ये सब कुछ अपने पूर्ववर्ती साधकों से ग्रहण किया था, क्योंकि जाति भेद, ऊंच नीच तथा कर्मकांड पर प्रहार की पुरानी परंपरा भारत में रही है। इसके साथ ही उन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल में हिंदी के आरंभिक साहित्य संबंधी उलझनों का समाधान प्रस्तुत किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य को सामाजिक संदर्भों में देखने और परखने का आग्रह करते हैं। सामाजिकता का ये आग्रह ही उन्हें मानवतावादी बनाता है। साहित्य जगत में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। वो जब तक जीवित रहे, हिंदी की सेवा करते रहे। 19 मई सन 1979 को उन्होंने अंतिम सांस ली। कबीरदास आजीवन उनके आदर्श रहे और वो फक्कड़पन हमेशा उनके व्यक्तित्व और जीवन में बना रहा। नमन ऐसी महान साहित्य विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: वर्ष

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।

0: दोस्तों नमस्कार, प्रकृति की पुकार कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं मनीषा। और आज इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि विशेषज्ञ हैं श्री ओम शंकर श्रीवास्तव जी। आप भोपाल मध्य प्रदेश के अधिवक्ता हैं और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के साथ साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने अनेक राष्ट्रीय और शासकीय संस्थानों के विधिक सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं और निभाई है, जिनमें सेंट्रल वाटर कमीशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस सहित कई प्रमुख संस्थाएं शामिल हैं। पर्यावरण और वन कानून के क्षेत्र में आपकी विशेषज्ञता के कारण आप भारतीय वन अधिनियम 1927 के संशोधन समिति के सदस्य भी हैं, मध्य प्रदेश के शासन की पर्यावरण परिषद से भी जुड़े हुए हैं। भूविज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और प्रबंधन जैसे विषयों में आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि आज की चर्चा को और अधिक सार्थक बनाएगी। तो आइए, आपके साथ हम भी आपका स्वागत कर रहे हैं।
1: धन्यवाद मनीषा जी।
0: सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत ही हम यही करना चाहेंगे कि पर्यावरण और प्रदूषण की चर्चा एक साथ करने की जरूरत क्यों पड़ने लगी?
1: पर्यावरण और प्रदूषण की चर्चा एक साथ करने के पहले जरा हमें थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहिए।
0: जी।
1: सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने राष्ट्र गीत की, तो राष्ट्र गीत के वो जो दो छंद है वही अपने आप में काफी है पर्यावरण का बोध और प्रकृति के बोध के लिए। जैसे हम कहते हैं वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, इसका अर्थ यही है। यही पर्यावरण बोध अपने आप में काफी है। अगर इस विचार को और इस सोच को और इसके शब्दों को अगर हम अपने आप में अगर ढाल ले, तो मुझे लगता है कि पर्यावरण के साथ साथ प्रदूषण के बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं थोड़ा सा दो लाइन में इसको और विस्तार में बता दूंगा। सुजलाम साफ जल, सुफलाम साफ और स्वच्छ फल, मलयज शीतलाम एक शीतल की तरह, और सस्य श्यामलाम मतलब हमारी धरती हरी भरी हो, साफ जल हो, साफ अच्छे पेड़ पौधे हो, इसके साथ साथ सबसे आवश्यक है कि हरी भरी पृथ्वी हो। अगर ये सोच के साथ अगर हम चलते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण की आवश्यकता एक साथ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
0: बिल्कुल। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब हम बात कर रहे हैं कि सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम की अगर हमें पर्यावरणीय बोध हो तो हमें ये चर्चा नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे में आप क्या समझते हैं एक आम नागरिक को क्या भूमिका निभानी चाहिए पर्यावरण के संरक्षण में?
1: अपनी सजगता से हम पर्यावरण के क्षेत्र में हम काफी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत पहले से कहा जाता था जब हम स्कूलों में भी थे, एक्ट लोकल थिंक ग्लोबल। आपको लोकली अपने काम करना है और बड़ी सोच के साथ काम करना है। हम एक आम व्यक्ति अपने आसपास में जब भी हमें ऐसा लगता है कि उनके पर्यावरण में चाहे उनके पास में किसी भी तरह का वायु प्रदूषण हो रहा हो, किसी भी तरह का जल प्रदूषण हो रहा है या और भी कोई प्रदूषण जो से उन्हें से देखने से लगता है, तो ऐसे विषयों पर चर्चा करें, परिवार में बातचीत करें, मोहल्ले में बातचीत करें, लोगों के साथ बातचीत करें, और ऐसे विषयों को अगर हम उठाते हैं तो तत्काल उस पर कार्रवाई करने के लिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्था हमारे शासन में भी व्यवस्था है, इसी तरह से ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जो इस पर काम करने के लिए तत्पर हैं।
0: एक आम नागरिक की तरह अभी अभी मेरे जहन में ये प्रश्न आया है कि ऐसी बहुत सारी चीजें देखकर हमारे को भी उलझन होती है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि अगर कोई पेड़ लगा है तो उसके आसपास कच्ची जो जमीन छोड़ी जाती है उसे जैसे मान लीजिए कि पूरी तरह से सीमेंट से पैक कर दिया गया। अब मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों है, मैं चर्चा भी कर रही हूँ लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं इस पर कोई एक्शन लूँ तो वो कानूनी क्या जानकारी है जो, या ये कहें वो कैसे नियम है जिनके तहत हम कहीं शिकायत कर सकते हैं, हम आम नागरिक की तरह इस बात को आगे भी बढ़ा सकते हैं, सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रह सकते।
1: आपने जो विषय उठाया बड़ा छोटा सा विषय है लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ों के आसपास लगभग 1 से 1.5 मीटर के रेडियस में मिट्टी छोड़ा जाना चाहिए। इस संबंध में आज से 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी इस पर एक गाइडलाइन इसमें दे चुके हैं। वर्ष 2013 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी ये विषय उठा था, क्योंकि बहुत सीधी सी बात है जिस तरह से हम सांस लेते हैं पेड़ भी सांस लेते हैं, ये सोच क्यों नहीं है कि वो पेड़ों के आसपास 1 मीटर का दायरा हम छोड़ दें ताकि वो सांस ले सके, वहीं से तो अपने भोजन के लिए वो पानी लेंगे, वर्षा का जल वहीं आएगा, और वर्षा का जल अगर वहां आएगा नहीं उनको जड़ पे पानी नहीं जाएगी, ये एक छोटी सी सोच है। तो ऐसे विषय को अगर आपको ऐसे देखने में आते तो बिना किसी देरी के उस संबंध में उसकी फोटोग्राफ लीजिए और तत्काल संबंधित विभागों को भेजिए और कार्रवाई होती है, अब लोग सजग हो गए।
0: आपने एक अभी नाम लिया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, उसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं?
1: राष्ट्रीय हरित अधिकरण भारत में एक बहुत बड़ी पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका के साथ है। विश्व में 3 ऐसे देश हैं जहां एक्सक्लूसिव एनवायरमेंटल कोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके बाद से भारत। वर्ष 2010 में ये कानून बना था और उसके बाद से लगभग 5 बेंच है पूरे भारत में, जिसमें भोपाल में भी एक बेंच है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 राज्यों के पर्यावरण संबंधी जो भी मामले आते हैं इनका निराकरण यहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल में होता है।
0: हमारे स्टूडियो से बच्चों के लिए कार्यक्रम जाता है और उसमें एक बार एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि वो कैसे पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, तो वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: देखिए, बच्चों की बात है, सबसे बड़ी बात है कि हम बच्चों में ये बोध विकसित करने की कोशिश करें कि वो पर्यावरण के प्रति अधिक सजग हो
0: जी,
1: उन्हें आने वाले जीवन अधिक जीना है
0: जी,
1: उनके लिए पूरी की पूरी धरती सब कुछ उनका है, भविष्य उनका है। एक बेसिक प्रिंसिपल यह है कि बच्चों को एक शब्द से जोड़ना चाहिए और उनको अपने अधिकारों की बात करनी चाहिए। पर्यावरण का उनके अधिकार है इंटरजेनरेशनल इक्विटी का, इंटरजेनरेशनल इक्विटी
0: जी।
1: आज जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो रहा है तब तक तो ठीक है, सदुपयोग होगा तब भी ठीक है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग होगा, इसका मतलब ये कि आने वाले बच्चों के भविष्य को हम मारकर भविष्य से समझौता करके उनके हिस्से के जो संसाधन है उसका हम दुरुपयोग करने पर हम उतारू हो चुके हैं। तो ऐसे में बच्चों की जिम्मेदारी बनती है और बच्चों की क्या माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को ये बताएं कि बच्चे आप लोग अपने अधिकारों की बात करो, इंटरजेनरेशनल इक्विटी की बात करो, अपने संसाधन की बात करो, अपने भविष्य की बात करो, और आप अपनी बात ये रखो कि प्राकृतिक जो भी संपदा है इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, तो हम बाल सभा कार्यक्रम में भी ये बात जरूर बताएंगे कि कैसे बच्चे भी अपने अधिकारों को पहचान कर पर्यावरण के संरक्षण में बहुत महती भूमिका निभा सकते हैं। सर, नीतियां बनाते समय स्थानीय जरूरतों को कैसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि आप इस तरह के केसेस को बहुत सारा देख रहे हैं।
1: पर्यावरण संबंधित नीति बनाने के लिए जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि एक नोडल एजेंसी है भारत सरकार की, तो भारत सरकार जब भी नीति बनाती है तो वो नीति के लिए राज्य सरकारों से उस संबंध में चर्चा करती है और संबंधों में चर्चा करने के उपरांत भारत सरकार ऐसी नीतियां बनाती है। हम किसी भी तरह की नीति की अगर हम बात करें, जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स की बात करें, तो जितने हमारे कोस्टल एरियाज हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2011 नोटिफिकेशन, CRZ नोटिफिकेशन है, फिर 2019 नोटिफिकेशन है। इसके बाद से उस नोटिफिकेशन में ये आई कि स्टेट अपने कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएंगे, तो हर राज्य को स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी बनानी है। इसी तरह से अगर हम बात करें सैंड के रूल्स बनाए, तो इस रूल्स में भी भारत सरकार जब नीति बनाती है तो राज्य सरकारों की भूमिका को तय करते हुए बनाती है। ये तो बात हो गई भारत सरकार और राज्य सरकार की, लेकिन एक प्रश्न आपका बड़ा आवश्यक है कि क्या एक राज्य सरकार का एक जो नियम है वो क्या नियम सब पर प्रकृति के मामले में क्या सब जगह उसी तरह से प्रभावी होगा? शायद नहीं, क्योंकि हमारी जलवायु और हमारी जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो एक ही राज्य में ऐसी भौगोलिक स्थितियां हैं कि एकदम बदल जाती है। भोपाल की भौगोलिक स्थिति और रीवा की भौगोलिक स्थिति, ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति और डिंडोरी मंडला की भौगोलिक स्थिति सब बदल जाती है।
0: जी, आपने बोला कि सबकी स्थानीयता के हिसाब से कानून की बात कही, नीतियों की बात कही, ऐसे में एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि जब प्रकृति को लेकर कोई कानून या कोई नीति बनाई जाती है तो क्या वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका भी इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए या होता है?
1: पर्यावरण में फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो फॉरेस्ट के जो पुराने कानून थे और अब और आने वाले दिनों में जो कानून बन रहे हैं उसमें संशोधन हो रही है, ऐसे में तो लोकल लोगों को देखकर और उनके हितों को देखकर बनाए गए हैं। जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है या पेशा का कानून था, तो ऐसे जो कानून है वो लोकल लोगों को देखते हुए उनकी जंगल के प्रति उनसे जुड़ाव और जंगल में किस हद तक उनके अधिकार है इन सब चीज़ों को देखकर तो कानून बनाए गए हैं। रही बात बाकी अगर हम पर्यावरण की बातें करते हैं तो उसमें भी जैसे कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप होना है या कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या एरिया डेवलप होना है तो उसके लिए भी कुल मिलाकर जो हमारी नीतियां हैं उस नीतियों में गाइडलाइन बनाए गए हैं जिस गाइडलाइन के तहत उन लोकल समस्याओं को या व्यक्तियों की उपस्थिति और इन सब चीज़ों को देख कर ही वहां पर इंडस्ट्रियल सेटअप भी हो सकता है। तो इस संबंध में भी कानून है और जहां पर लोकल और एकदम ग्राउंड लेवल पर लोगों की समस्या को मीट करने का एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आपने बोला कि क्या हम लोकल लोगों की नीतियों में हम ध्यान देते कि नहीं देते हैं। यस, जब पर्यावरण स्वीकृति की बात आती है, जैसे कोई भी बहुत बड़ा प्लांट लगने वाला है या माइनिंग एक्टिविटी होने वाली है, तो ऐसी एक्टिविटी के लिए पर्यावरण स्वीकृति एक कानूनी आवश्यकता है
0: जी।
1: उसके लिए उसे कानूनी तौर से पर्यावरण स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसमें पब्लिक हियरिंग की। पब्लिक हियरिंग का मतलब जब वो प्रोजेक्ट इस जगह पे आएगा तो आसपास के गांव के लोगों को सूचना देकर बुलाई जाती है और उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे बातें रखी जाती है, उनके सवालों का उत्तर देने जाने आवश्यक है, ताकि उनके तरफ से कोई उनकी समस्या है, चाहे उनके रोजगार की समस्या होगी या उनकी खेती जमीन छीन जाने की समस्या होगी या पर्यावरण प्रदूषण से उनके जमीनों पर असर आने वाला है, तो उसमें उनकी सहभागिता है। वो अपनी बातों को रखते हैं और उनके बातों को रखने के बाद से जो भी माइनिंग के हैं या जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो उसको संतुष्ट करते हैं। उसके संतोषजनक होने के बाद से भी उनको पर्यावरण स्वीकृति मिलती है, मतलब लोकल लोगों की भी भूमिका आवश्यक होती है।
0: भूमिका की बात तो हो गई, लेकिन कुछ नियम होते होंगे कानूनी दृष्टि से भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर, जो आम व्यक्तियों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या कोई ऐसी खास जानकारी है जो हर आम नागरिक को होनी चाहिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर?
1: सबसे पहले तो ये जो पर्यावरण का बोध होना, सोच होना, ये सब सारी चीज़ें हम अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अपने मोहल्लों में हमको चर्चा का हमेशा विषय रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, रही बात पर्यावरण के कानून की जानकारी, तो जो कानून क्या है, कानून एक सिंपल लॉजिक है। सिंपल लॉजिक, अगर आपको कोई समस्या कहीं दिखाई दे रही है उसका समाधान भी है और हर समस्या का कानूनी समाधान भी है। किसी भी तरह का ऐसा, जैसे कोई जल को प्रदूषित कोई कर रहा है या वायु प्रदूषण कहीं हो रहा है, ऐसे कोई भी विषय अगर आपके पास आते हैं आज की तारीख में, बहुत सिंपल, आप आवेदन के तहत आप कलेक्टर को आवेदन कर सकते हैं, इसी के साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी आप आवेदन भेज सकते हैं। कई बार तो आपके मात्र आवेदन से ही उस मामले को न्यायालय उसको सुमोटो लेकर और उस पर काफी बड़ी कार्रवाई कर चुकी है और कर रही है।
0: आपसे बातचीत करके एक बात तो समझ में आई है कि हमें कहीं ना कहीं पर्यावरण का बोध होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये सारी बातें बेमानी हैं जो हम कर रहे हैं। और क्योंकि एक बहुत अच्छी बात जब सर से मेरी ऑफ द माइक बात हो रही थी, वो ये भी थी कि हम हमेशा, हमें क्या करना चाहिए या दूसरों को क्या करना चाहिए, उससे बेहतर ये भी है कि हमारी जिम्मेदारी क्या हो। स्व जिम्मेदारी लेना भी एक बहुत बड़ा वो है कि हम कई बार हम सिर्फ इसीलिए बच के निकल जाते हैं चीज़ों से कि कहीं उलझ ना जाएं। जैसे रोड पे भी कोई एक्सीडेंट होता है तो कितनी भी इस चीज़ को लेकर कितनी कार्यशालाएं होती हैं, कितने जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं कि आपको पहले उस आदमी को बचाना है।
1: एकदम सही बात है।
0: आपका सबसे पहला कर्तव्य वो है।
1: और तो, इस संबंध में कानून भी अब यही बन गया है।
0: यही बन गया है, लेकिन हम अपनी उलझनों से बचने के लिए कई बार बहुत बड़ी बड़ी कीमत चुका देते हैं। तो बेहतर होगा कि आप छोटी छोटी उलझनों में पड़िए और अपने पास की जो बड़ी दिक्कतें हैं उनको समझिए, ना कि बच के रास्ते निकाल।

0: बहुत सारी चीज़ों से वैसे ही निजात मिल जाएगी।
1: एकदम
0: अगर
1: एकदम।
0: हमारे आसपास हरियाली रही तो हो सकता है कि हमको इतने कानूनी दाव पेच में भी उलझना सुलझना ना पड़े। लेकिन क्या कोई गाइडलाइन या कोई कानूनी भाषा में अगर हम कहें तो क्या कुछ आप बता सकते हैं हमारे सुनने वालों को कि वो कहाँ सबसे पहले संपर्क करें अगर उन्हें कोई भी चीज़ दिखती है तो? कोई ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर या कुछ आप बताना चाहेंगे?
1: ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर तो नहीं है पर्यावरण के संबंध में, जैसा मैंने पहले से भी मैंने बताया आपको कि इस संबंध में आप तुरंत लिखना सीखिए, शिकायत करना सीखिए। आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई भी ऐसा विषय है तो इसको लिखकर और आवेदन के माध्यम से आप संबंधित विभाग को आप पत्र लिखिए, एक बार लिखिए, संबंधित विभाग से ऊपर एस्केलेट कीजिए। आपके हर मामले में सुनवाई होती है, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपका एक लिखा हुआ वो जाया जाएगा, उस पर जरूर कार्रवाई होती है। बशर्ते कि आप अपना लिखना या काम करना बंद ना करें, स्वयं लिखे और भेजे।
0: जी, पर्यावरण के लिए आपने बहुत सारे मुकदमे में आप हाजिर रहे हैं, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसके कारण आपको लगा कि आप खुद बहुत संतोषजनक स्थिति में आए हों कि आपकी आवाज़ से कोई स्थितियां और बहुत बेहतर हुई हों, जो आप हमारे दोस्तों के साथ साझा करना चाहें?
1: देवास के पास कुछ पहाड़ियां हैं, एक प्रकरण आया ताकि ये माइनिंग बहुत तेजी से हो रही है, ये पहाड़ियां कट जाएंगी तो जंगल तो फिर से बनाए जाते हैं, पहाड़ी नहीं बनाए जा सकते, तो इस संबंध में एक प्रकरण चला। प्रकरण के बाद से अच्छी बात यह है कि उस पहाड़ी में देवास के लोग, आम जन, स्कूलों के बच्चे, कॉलेज के बच्चे और पास में कई इंडस्ट्रीज जो है, उस इंडस्ट्रीज के भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ तक कि बैंक्स और पुलिस विभाग के लोगों ने भी वहां पे पार्टिसिपेट किया और धीरे धीरे धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा जंगल का रूप ले लिया।
0: जी।
1: जंगल तो मैं बन चुका, लेकिन जंगल की पहचान कागजों में है। कागज में मैं रेवेन्यू लिखा गया था क्योंकि वो रेवेन्यू की जमीन थी। अचानक ये मुझे पता चला कि चूंकि रेवेन्यू की जमीन है इसीलिए रेवेन्यू पर्पस के लिए किसी और को अलॉट कर दिया। वो लोग फिर हमारे पास आए 10 सालों के बाद से। जब 10 साल के बाद से आए थे तो फिर इस प्रकरण को लेके हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गए और ये बताने के लिए मैं जंगल हूँ, उस जंगल में हर तरह के पेड़ पौधे हैं, हर तरह की वनस्पति है, यहाँ तक कि वहाँ वल्चर्स का एक हैबिटेट बन चुका है, वहाँ हाल में चीते भी देखे गए, वहाँ तमाम तरह के जीव जंतु हैं और कुछ वाटर बॉडीज भी हो गए हैं जो कि जलीय जंतुओं के लिए, जंगली जानवरों के लिए, सबके लिए पीने का पानी का स्रोत बन गया है। पूरी तरह से एक मैंने पहाड़ी का रूप ले लिया है। लोग मुझे शंकरगढ़ के पहाड़ी के नाम से पुकारते हैं, लेकिन मेरी पहचान कागजों में रेवेन्यू होने से आज उस मेरी जंगल की कटाई हो रही है। कोर्ट ने मेरी बात सुनी और उस जंगल को जंगल का रूप दे दिया।
0: ये सुनना ही इतना सेटिस्फैक्टरी था, ये जो आपने सफलता की कहानी सुनाई है, इसको सुनते हुए वही साहित्यिक दिमाग अलग तरह से सोचता है कि बाकी सारे केसेस तो ऐसे होते होंगे जहाँ खुद व्यक्ति कह सकता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, पर प्रकृति की आवाज़ ऐसी ही सशक्त आवाज़ें बनती हैं। जैसे मैं हमेशा इस बात को ज़रूर मेंशन करना पसंद करती हूँ कि रेडियो खुद होकर कोई पेड़ नहीं लगा सकता, लेकिन रेडियो पर आने वाली ऐसी सशक्त आवाज़ें हजारों लाखों पेड़ बचा जरूर सकती हैं।
1: जरूर।
0: आप स्टूडियो में आए, इतनी बेहतरीन बातें और आखिर में ये जो सक्सेस स्टोरी है, इसे सुनकर बहुत आनंद आया। दोस्तों, आप हैं ओम शंकर श्रीवास्तव जी, जिनका इतना कीमती समय हमने लेकर आज आपसे बातचीत की और प्रकृति के कानूनी दाव पेचों को जाना कि किस तरह हम पर्यावरण संरक्षण के कदम में एक कानूनी सहारा और सहायता भी ले सकते हैं। इसी के साथ प्रकृति की पुकार कार्यक्रम अब यहीं समाप्त तो होता है। सर, आपका एक बार पुनः शुक्रिया स्टूडियो आने।
1: आपका भी धन्यवाद और आभार।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंतानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और आपके साथ मैं थी आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। श्रोताओं, आशा है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर इस कार्यक्रम को लेकर आपके कोई सुझाव या अगर आप अपने मन की कोई भी बात हमसे कहना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioazadhind@gmail.com। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों बाद।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

पुर्तगाली और सेंट थॉमस ईसाई। सन 1498 में जब वास्को दी गामा का छोटा बेड़ा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर आगे बढ़ा तो वे एक जुनूनी विजन से प्रेरित थे, ईसाई और मसालों की खोज। सदियों से यूरोप में पूर्व में एक खोए हुए ईसाई साम्राज्य की किंवदंतियां प्रचलित थीं, जिस पर पौराणिक प्रेस्टर जॉन का शासन था। जब पुर्तगाली मालाबार तट पर पहुंचे तो वे इस उम्मीद में इतने अंधे थे कि वे अपने सामने मौजूद सभ्यता की वास्तविकता को देख ही नहीं पाए। इन प्राचीन विश्वासियों के साथ पहली मुलाकात भारत में नहीं बल्कि अप्रैल सन 1498 में पूर्वी अफ्रीकी तट पर मालिंदी में हुई थी। वहां पुर्तगालियों की मुलाकात क्रैंगानोर के 4 जहाजों से हुई। उन पर ऐसे लोग सवार थे जिन्होंने खुद को मसीह का अनुयायी सेंट थॉमस ईसाई बताया। ये समुदाय अपनी जड़ों को प्रेरित थॉमस से जोड़ता था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पहली शताब्दी में भारत आए थे और यहीं बस गए, और संभवतः यहीं उनकी हत्या भी कर दी गई। हालांकि पुर्तगालियों का शुरुआती अवलोकन घोर अज्ञानता से भरा था, जब वे कालीकट पहुंचे तो इतिहासकार अल्वारो वेल्हो को पक्का विश्वास था कि उन्होंने एक ईसाई शहर खोज लिया है। मूरों यानी मुसलमानों के खिलाफ एक ईसाई सहयोगी खोजने की बेताबी में पुर्तगालियों ने हिंदू मंदिरों को चर्च और स्थानीय धार्मिक रीति रिवाजों को ईसाई अनुष्ठान समझ लिया। जैसे जैसे पुर्तगालियों ने एस्टादो द इंडिया की स्थापना की, उन्हें समझ में आया कि ये समुदाय उनकी कल्पना से अधिक जटिल था। उन्होंने क्रैंगानोर और कोल्लम जैसे केंद्रों की पहचान की जो सेंट थॉमस ईसाइयों के गढ़ थे। ये समुदाय सदियों से अपने हिंदू और मुस्लिम पड़ोसियों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते थे। उनकी आस्था यूरोप के लैटिन संस्कार ईसाई धर्म से मौलिक रूप से भिन्न थी। इस खोज का दिलचस्प विरोधाभास तब सामने आया जब धार्मिक टकराव शुरू हुआ। पुर्तगाली इन खोए हुए ईसाइयों को खोजने के लिए महासागर पार कर आए थे, लेकिन उन्हें पाने के बाद उन्होंने उनकी आस्था को मान्य और धर्म सम्मत मानने से इनकार कर दिया। पुर्तगालियों की नजर में सेंट थॉमस ईसाई विधर्मी पूर्वी संस्कारों से दूषित थे। 16वीं शताब्दी के मध्य में जेसुइट्स के आगमन और काउंटर रिफॉर्मेशन की उग्र भावना के साथ पुर्तगाली दृष्टिकोण जिज्ञासा से बदलकर सुधार में बदल गया। सन 1560 तक इक्विजिशन को गोवा लाया गया और पुर्तगालियों ने सेंट थॉमस ईसाइयों को जबरदस्ती रोम के अधिकार में लाने का प्रयास किया। वो प्राचीन समुदाय जो कभी पुर्तगालियों की यात्रा का औचित्य था, अब उनके आध्यात्मिक अनुशासन का लक्ष्य बन गया। ये कहानी एक डरावना उदाहरण है कि कैसे साम्राज्यवादी आंखें वही ढूंढती हैं जो वे देखना चाहती हैं, और फिर उसे केवल इसलिए नष्ट कर देती हैं क्योंकि वो उनके घर से लाई गई छवि से मेल नहीं खाता।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम योग संवाद।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, जब मनुष्य संसार की चकाचौंध के पीछे भागते भागते थक जाता है, तब उसके भीतर एक प्रश्न जन्म लेता है कि क्या यही जीवन का सत्य है? क्या धन वैभव, यश, दीर्घायु जैसी बातें ही मानव जीवन की उपलब्धि हैं? इन्हीं गहरे प्रश्नों से उद्वेलित हैं अयोध्या के राजकुमार श्री राम। उनका मन संसार की क्षणभंगुरता को देखकर अत्यंत विचलित है। उन्हें प्रतीत होता है कि धन संपत्ति, भोग और आयु सब कुछ समय के प्रवाह में विलीन हो जाने वाले स्वप्न मात्र हैं। योग वासिष्ठ में भगवान श्री राम का विचलन और उसके समाधान हेतु दिया गया उत्तर केवल कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन के अज्ञान को दूर करने वाला सूत्र है। श्री राम के मन में उठने वाले प्रश्न हर उस व्यक्ति के प्रश्न हैं जो जीवन के वास्तविक अर्थ को जानना चाहता है। तो आइए शामिल होते हैं योग वासिष्ठ की उस दिव्य संवाद यात्रा में, जहां वैराग्य की अग्नि में तपकर सत्य का सोना खरा होता है। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: भगवान श्री राम की वैराग्य दशा पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप श्रोताओं को याद दिला दें कि वो क्या घटना थी, और उसके बाद फिर हम आज के विषय पर आ जाएंगे।
1: जी, जब राम जी गुरुकुल से आते हैं और तीर्थ यात्रा की याचना करते हैं अपने पिताजी से कि मुझे तीर्थ दर्शन करना है, जो ज्ञान उन्होंने गुरुकुल में प्राप्त किया है उस ज्ञान के साथ लोग व्यवहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखने की जिज्ञासा उनके मन में होती है। और तीर्थ दर्शन से जब लौट के आते हैं तो वो वैराग्य की स्थिति में हैं, और जब उनको भरी सभा में बुलाया जाता है तो उनके चित्त को जो देखते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, आपने तो विषय रूपी शत्रुओं को जीत लिया है, ऐसे में आपके चित्त में इस तरह की व्यग्रता क्यों है? और विश्वामित्र जी कहते हैं कि आपके आंखों में जो चंचलता दिखाई दे रही है ये आपके चित्त की व्यग्रता को दर्शा रही है, तो इसका कारण क्या है, इसको विस्तार से कहिए। और यही बात वाल्मीकि जी अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज से कह रहे हैं, उसमें ये पूरी कथा चल रही है। तो राम जी जब लौट के आते हैं, जैसे आज का संसार है हम लोग देख रहे हैं, ऐसे ही लोग व्यग्र दिखाई दिए, कहीं कोई किसी कर्म से संतुष्ट नहीं दिखा, तो ऐसे में उनको लगा कि जब कोई कर्म व्यक्ति को संतुष्टि नहीं दे सकता तो कर्म ही छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने अपने को कर्म से विरत कर लिया।
0: तो संसार को देखकर बहुत विचलन उनके मन में है, और कुछ उनके मन में जो बातें हैं वो धन संपत्ति को लेकर भी हैं, जो वो मुनिश्री के सामने रखते हैं।
1: जी,
0: और सबसे बड़ी बात यह है कि धन संपत्ति को वो कष्ट का कारक मान रहे हैं।
1: हाँ,
0: है ना, जबकि आज का जो समय है सुख का आधार हम धन संपत्ति को मानते हैं, सफलता का आधार हम धन संपत्ति को मानते हैं, और आनंद का आधार भी धन संपत्ति को माना जाता है आज के संसार में, लेकिन ठीक इसके विपरीत बात कर रहे हैं भगवान श्री राम। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि धन संपत्ति को हमें किस रूप में देखना चाहिए, एक जो विवेकवान व्यक्ति होता है वो इसे कैसे देखता है?
1: विवेकवान व्यक्ति इसको व्यामोह की तरह देखता है। वो कहता है कि धन संपत्ति जो है ये जैसे हम विषय को अर्जित करते जाएं और उस विषयों में कभी संतोष की प्राप्ति नहीं होती, संतुष्टि नहीं मिलती, ऐसे ही धन संपत्ति में भी व्यक्ति को कभी संतुष्टि नहीं मिलती। इसलिए आप देखिएगा कि धन की कोई सीमा नहीं है,
0: जो
1: व्यक्ति जितना पैसा या धन अर्जित करता है उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती है। और कहा जाए तो दरिद्रता का संबंध धन की आकांक्षा से है, किस व्यक्ति को कितना धन की आवश्यकता है उसके अनुपात में उतना ही दरिद्र होगा।
0: बहुत ही सुंदर बात, क्योंकि बहुत धन संपत्ति होने के बाद भी आदमी दरिद्र हो सकता है, क्योंकि उसकी आकांक्षा भी धन के लिए है, वो अभाव महसूस कर रहा है।
1: होता ही है, आप देखिए कि जिसको जितने अधिक धन की आवश्यकता है इसका मतलब उसकी गरीबी उतनी बड़ी है,
0: जी जी जी,
1: है ना,
0: बिल्कुल।
1: तो ये कहते हैं कि एक प्रकार का व्यामोह पैदा करता है। तो विवेकवान पुरुष इस रहस्य को जानता है, वो देखता है कि एक व्यक्ति जो छोटी सी इच्छा लेके आया था, फिर वो इच्छा इतनी बड़ी होती चली गई कि इतना कुछ आने के बाद भी उसकी दरिद्रता कभी समाप्त नहीं हुई। इसलिए आप देखेंगे कि धन के पीछे जो लोग भागते हैं वो पूरा जीवन असंतोष में बिताते हैं। और भारतीय चिंतन में गांव और हमारे लोक कथाओं में भी कहते हैं कि सबसे बड़ा जो धन है वो संतोष धन है।
0: संतोष को धन कहा गया।
1: लेकिन संतोष धन की प्राप्ति धन से नहीं होती।
0: हाँ, हाँ।
1: धन से हमेशा असंतोष की प्राप्ति होती है। तो ये एक प्रकार का व्यामोह हुआ कि नहीं हुआ?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: विवेकवान इसको जानता है कि जो धन है वो व्यक्ति को असंतुष्ट करेगा। और असंतुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं होगा।
0: और वो संतुष्टि के लिए धन एकत्रित करता है।
1: एक कथा आती है कि धन का तीन प्रकार का भोग होता है। भारत के ऋषियों ने ऐसा चिंतन किया, कहा कि सबसे उत्तम भोग उसका ये है कि उसका दान हो, क्योंकि आपके पास अगर धन आया है आपकी आवश्यकता से अधिक, तो ऐसे में जो लोग धन के अभाव में अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए आप उसका दान करें, तो उस समय आपको इतनी आनंद की अनुभूति होगी, शायद जितना आप उसका भोग करके आनंद का अनुभव नहीं करेंगे। उतना आपके द्वारा अर्जित सामर्थ्य से अगर कोई दूसरा भोग करता है जिसको आप चाहते हैं कि आप दें, तो उस समय आपको खुशी होती है। देखिए, त्याग और दान में फर्क है। त्याग में व्यक्ति को कष्ट होता है, दान में प्रसन्नता होती है। तो दान में आप दूसरे की पुष्टि कर रहे हैं और आपको लगता है कि देखिए परमात्मा ने कैसी कृपा आप पर की कि आप में इतना सामर्थ्य आया कि आप अपने को तो संतुष्ट कर ही पा रहे हैं, लेकिन दूसरा भी आपसे संतुष्ट हो रहा है। इसको कबीरदास जी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा न रहूं साथ में भूखा जाए। तो मतलब ये हुआ कि दान सबसे उत्तम भोग है। उसके बाद मध्यम भोग कहा गया कि आप उस संपदा का अपने इच्छानुसार जो आपको उपयुक्त लगे, जो उचित लगे, जो सार्थक लगे, उसमें उसका उपभोग करें। और जो लोग परिग्रही होते हैं, क्योंकि धन के साथ परिग्रह भी आता है, संकलन की प्रवृत्ति भी आती है, तो कहते हैं ये परिग्रही लोग धन का नाश करते हैं, उनके लिए धन नष्ट हो जाता है। वो परिग्रह आप करते हैं और फिर कोई दूसरी पीढ़ी आती है जो उसे नष्ट करती है। तो ऐसा देखने को आपको या तत्त्व सर्वत्र दिखेगा। तो राम जी कहते हैं कि जो विवेकवान पुरुष है वो धन के व्यामोह में कभी नहीं आता, जानता है कि ये व्यामोह का कारण है, व्यक्ति को मोहित करेगा।
0: तो जो मूढ़ बुद्धि के लोग हैं वो धन संपत्ति को किस तरह से देखते हैं?
1: आपने सुंदर कहा। राम जी कहते हैं कि ये लोगों को भ्रम है कि वो सोचते हैं कि धन संपत्ति संसार में यदि स्थिर होकर रहे तो बहुत से सुखों का साधन हो सकती है और सब में उत्कृष्ट वस्तु है, क्योंकि धन के द्वारा किसी भी वस्तु का विनिमय हो सकता है। जो आपने अभी कहा कि विकास में आज के समय में सामाजिक आर्थिक विकास की बात की जाती है, तो धन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु की प्राप्ति की जा सकती है। तो वस्तु विनिमय में धन का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऐसे जो मूढ़ लोग हैं वो सोचते हैं कि अगर संसार में हमारे पास धन स्थिर रहा तो हम किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, ये सबसे उत्कृष्ट वस्तु धन है। ऐसी जो सोच रखता है उसको कहते हैं कि वो मूढ़ है। वास्तव में धन जो है वो व्यामोह में डालता है। और राम जी तो ये तक कहते हैं कि सारे अनर्थ का कारण अर्थ है।
0: अच्छा।
1: हाँ, ऐसी दृष्टि है।
0: जी,
1: और
0: जी।
1: अगर आप इस पर विचार करके देखें तो आपको लगेगा कि जब आपके पास धन आता है तो धन के आने के साथ साथ आपके अंदर भय भी आता है, आपके अंदर सुरक्षा की प्रवृत्ति भी आती है, आप लोगों से झूठ भी बोलते हैं, आप हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से भी देखते हैं कि कोई कहीं आपसे धन न मांग ले या इसी धन के लिए लोग आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो आप मूलतः भाव को पकड़ने के बजाय सबके केंद्र में आपके धन आ जाता है, तो धन से तमाम सारे विकार आपके मन में भी जन्म लेते हैं और धनवान व्यक्ति हमेशा सशंकित और चौकन्ना रहता है कि कहीं उससे कोई कुछ मांग न ले।
0: तो क्या मनुष्य को मलिन बनाने का काम धन संपत्ति ही से होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि मनुष्य के चित्त को जो धूमिल करता है, जो उसके चित्त पर धूल आता है, वो धन के कारण आता है। आप सामान्य तौर पर विचार करें कि जैसे आपके पास धन है और आपके जानने वाले लोगों को ये पता चल गया कि आप धनवान हैं। तो फिर ऐसे में जैसे ही लोग आपके पास आएंगे तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे मिलने आ रहे हैं?
0: हाँ, वो भावनाओं का जुड़ाव नहीं रहेगा।
1: आपको लगता है कि ये जो अच्छी अच्छी बातें कर रहा है भले वो अच्छे भाव में हो, लेकिन आपको लगता है ये किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए कर रहा है या मुझसे कुछ चाहता है। आप अक्सर ये देखेंगे व्यवहार में, जीवन व्यवहार में देखिए तो मनुष्य कहता भी है और कहते भी हम लोग हैं कि आपको लोग नहीं चाहते तब जब आपके पास संपन्नता आती है तब आपसे चाहते हैं, और जब आपके पास संपन्नता नहीं होती है या कहा भी जाता है कि आप देखिए कि जब आपके पास धन नहीं होता है तब सही लोगों की पहचान होती है कि कोई आपको चाहता है या फिर आपसे चाहता है। तो मित्रों की परख गोस्वामी जी ने लिखा धीरज धर्म मित्र अनुनारी आपतकाल परीख उचारी। तो जब आपत्ति का समय हो, अनुकूल समय में तो सब आपके प्रेमी हैं और सब लगेंगे कि जैसे आपके लिए ही जी रहे हैं, लेकिन अगर कहीं लक्ष्मी से आपका वियोग हो गया, धन संपत्ति का अभाव हो गया, तो उस समय आप देखिए कि आपके पास कितने लोग हैं। शायद आदमी अपने लोगों से भी दूर हो जाता है और अपने लोग भी आपसे दूर हो जाते हैं। तो ये चित्त में जो मलिनता का कारण है, जैसे कहते हैं मुट्ठी भर धूल मड़ियों को मलिन कर देती है, ऐसे ही संपत्ति जो है मनुष्य के चित्त को मलिन कर देती है। लेकिन इसके लिए बहुत विवेक की जरूरत है, वैराग्य की जरूरत है।
0: लेकिन धन संपत्ति को लेकर जो आज वर्तमान समय में जो आम आदमी की सोच है वो इसके ठीक उलट है।
1: उलट है जी,
0: है ना। वो समझते हैं कि धन संपत्ति से ही सुख की प्राप्ति होती है। योग वासिष्ठ में क्या कहा गया है?
1: योग वासिष्ठ में कहा गया है कि ये धन संपत्ति उसी प्रकार है जैसे बड़े बड़े विद्वान, शूरवीर, कृतज्ञ, सुंदर, कोमल स्वभाव वाले पुरुषों को भी कलंकित कर देता है ये। मतलब आप इसके सामने कभी भी चाहें कि अपने चित्त की शुचिता बचा के रखें, तो ये धन संपत्ति होने की वजह से ये रह नहीं सकता। और इस पर मैं आपको कथानक कहूं, ऐसा कहा जाता है कि एक महात्मा थे, तो उनको किसी राजा ने कुछ स्वर्ण मोहरों का दान कर दिया। तो जब वो चलने लगे तो इसके पहले बड़े निश्चिंत रहते थे वो, लेकिन उस समय उनका चित्त बड़ा विचलित था, कहीं कोई मुझे लूट न ले, कहीं कोई बदमाश ना आ जाए। अब ये सारे ख्याल क्यों आए? क्योंकि आपके पास कोई ऐसी चीज आ गई है जिसकी जरूरत लोगों को है, जिससे लोगों की जरूरत पूरी हो सकती है। तो फिर आपने क्या किया, आपने अपनी स्वाभाविक दशा खो दी। तो शिष्य को लगा कि महाराज तो ऐसे थे नहीं, आज क्या हो गया इनको। तो उसको लगता है कि जैसे राजा के द्वारा दी गई जो मुहर है उसके प्रभाव में आ गए हैं। तो जब थोड़ा शाम होने लगा, सूर्यास्त होने का समय आया, तो उन्होंने शिष्य से कहा कि थोड़ा और तेज चलो
0: जी,
1: क्योंकि जल्दी पहुंचना है गांव में। तो शिष्य समझ गया महाराज की व्यग्रता का कारण, जो चित्त उनका जो विचलित था। तो कहा महाराज मैंने वो कारण ही मिटा दिया है जिस कारण की वजह से आपके चित्त में ये भय समाया हुआ है। मैंने उस स्वर्ण मोहरों को बाहर फेंक दिया। वो थोड़ा सा झुझलाए, लेकिन एक पल के लिए फिर उन्हें होश आया, कहा ठीक ही हुआ कि मेरे चित्त में विचलन का कारण ये धनी था। और रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी ये बात कही जाती है कि स्वामी जी को जब एक कलकत्ता के बहुत बड़े सेठ ने एक बहुत कीमती वस्त्र दिया जिस पर रत्न जड़ित थे, और कहा कि ये मैंने आपके लिए बनाया है, चूंकि आपसे बड़ा कोई संत नहीं है, इसे आप धारण करें। तो जब वो वस्त्र धारण करके माँ काली के मंदिर में गए, तो उन्हें माँ के समक्ष लेटने में वस्त्र का ख्याल आता था, माँ का ख्याल धूमिल हो गया। तो उन्हें लगा कि अरे ये तो मेरे और माँ के बीच बाधा बन रहा है। तो उन्होंने उस
0: वस्त्र को संभालना है
1: जी, तो उन्होंने उस रत्न जड़ित वस्त्र को निकाल दिया। तो ये है विवेकमान की दृष्टि। और आप देखें तो हम लोग भी इसी दृष्टि से कहीं कहीं ग्रसित हैं। और एक बार हम विचार करके देखें, आत्मन्वेषण करें, तो हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं संसार की अपेक्षाओं को पूरा करने की कामना लेकर, तो आप देखिए हमारी कितनी रुचि भगवान में होती है। सच यह है कि बार बार ध्यान हमारा अपनी अपेक्षाओं पर रहता है, कामनाओं पर रहता है। तो ये सारी कामनाओं की जड़ ये संपत्ति ही तो है। अगर आपके पास संपत्ति न हो तो आप घर से बाजार नहीं जाएंगे, और संपत्ति आते ही आपको बार बार बाजार का चिंतन आएगा कि कहाँ चलें, क्या खरीदें। तो ये वो चित्त को विचलित कर देता है, मलिन कर देता है।
0: चाहे संपत्ति की बात करें, चाहे आकांक्षाओं की बात करें, चाहनाओं की बात करें, दूर कर
1: जी बिल्कुल।
0: तो खुद का एक अगर हम ईमानदार विश्लेषण करना चाहें कि हम धन को लेकर किस तरह की दृष्टि रखते हैं, तो इसमें कुछ दुर्लभ पुरुष की भी चर्चा हुई है, तो मैं चाहती हूँ वो आप जरूर बताएं।
1: हाँ, इसके लिए बहुत अच्छा योग वासिष्ठ में राम जी ने कहा है। राम जी ने कहा है कि जो मैंने देखा इस जगत को, वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, कि जो मैंने जगत को देखा उसमें तीन तरह के लोग मिले। वो कैसे मिले? कहते हैं जो धन संपत्ति से युक्त होकर भी जनता की निंदा का पात्र न हो, ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। अब देखिए कितनी बड़ी बात है ये। आज के समय में अगर इस एक लाइन पर आप विचार करें
0: जी जी जी,
1: कि आपकी निंदा ही तब होती है
0: जब आप
1: संपन्न होते हैं,
0: धनवान हो जाते हैं। बिल्कुल।
1: तो कहते हैं कि ऐसा आदमी दुर्लभ है जिसके पास धन संपत्ति हो
0: और उसकी निंदा ना हो। बिल्कुल।
1: लोग बाग तो ये तक कहते हैं कि अरे वो कैसे धन संपत्ति आया मैं जानता हूँ। मतलब नहीं आपको मिला और उनको मिल गया तो वो निंदा के पात्र हो गए। आपके पास होता तो आप सम्मान के पात्र होते। तो ऐसी दृष्टि आपको देखने को मिलेगी सामान्य तौर पर। तो कहते हैं ऐसा आदमी हमने नहीं देखा कि जिसके पास संपत्ति हो और निंदा का पात्र न हो।
0: जी, जी, जी।
1: फिर कहते हैं कि शूरवीर हो और अपने मुंह से बढ़ा चढ़ा कर अपनी प्रशंसा न करता हो।
0: अच्छा।
1: आप देखेंगे कि अगर थोड़ी बहुत आप में शक्ति आई तो आदमी यथार्थ नहीं बताता, उसमें दो चार जोड़ के बताता है
0: ताकि, जी जी जी।
1: ताकि और वो प्रशंसनीय हो सके। तो कहते हैं कि ऐसा भी आदमी दुर्लभ है। एक ऐसा आदमी दुर्लभ है कि धन संपत्ति हो और निंदा का पात्र
0: ना हो,
1: और शूरवीर हो और अपनी शक्ति को बढ़ा चढ़ा कर न बताए।

0: शूरवीर हो और अपनी वीरता को बढ़ा चढ़ा के न बताए, तो ये दुर्लभ लोग हैं। इस पैरामीटर पर अगर आज के समय में आप लोगों को देखें तो मैक्सिमम लोग आपको इसी तरह के मिलेंगे जो ऐसा करते हैं, यानी ये दुर्लभता आज भी है।
1: आज भी है, बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, इस जीवन में भय और भ्रांति का क्या कारण है?
0: भय और भ्रांति का कारण जो अभी हम लोगों ने पहले भी बात की, धन संपत्ति भय और भ्रांति रूपी विषय को बढ़ाने वाला है। ऐसा राम जी ने साफ कह दिया कि मैंने जो जगत देखा उसमें धन संपत्ति ने ही व्यक्ति को भय और भ्रांति में डाल रखा है। भ्रांति का मतलब ये हुआ कि जैसे धन से हम संसार में सुख प्राप्त करेंगे, जबकि धन से असंतोष प्राप्त होता है और असंतोष दुख ही देता है।
1: जी, जी, जी।
0: संतोष धन के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती और धन कभी संतुष्ट करता नहीं है, तो एक प्रकार की भ्रांति ने जन्म दिया इसको। और भय ये है कि जब आपके पास कुछ खोने को होता है तभी आप भयभीत होते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो धन जब आपके पास आता है, वो आते ही सबसे पहले आपको भयभीत करता है कि कहीं आपसे ये छिन न जाए, क्योंकि आपके पास इकट्ठा हुआ है। इसके लिए कथा भी आती है, आप गांव में लोग सुनाते हैं कि एक बड़ा पहलवान था, वो था तो बहुत गरीब लेकिन बहुत निश्चिंत रहता था और उसको कोई हरा नहीं पाता था। तो एक दिन जो वहां के सामंत लोग थे वो पूछे कि इसकी इस ताकत की वजह क्या है, तो कहा साहब उसको चिंता नहीं है इसलिए ये ऐसे रहता है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, एक दिन जाओ उसको 99 रुपए दो,
1: चिंतित कर दो,
0: चिंतित करो उसे। तो 99 जैसे ही आपके पास आएगा, अब आप खर्च करने नहीं, एक को जोड़ने की सोचेंगे ताकि 100 हो जाए,
1: है
0: ना। तो वो कहते हैं ना कि 99 के चक्कर में लोग फंसे हैं, तो यही है 99 का चक्कर कि जहां आप जोड़ने पर, संग्रह पर लग जाए, तो संपत्ति जो है ये आपको संग्रह करने की तरफ ले जाती है। तो हालांकि ये गलत नहीं है, संग्रही होना चाहिए, इसका कभी भी हमें सही और गलत के संदर्भ में इसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। एक दृष्टि की दृष्टि से देखना चाहिए कि वास्तव में जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं क्या वो हमारे सुख की वजह है, और अगर हमारे पास नहीं है तो जिनके पास है उनको तो सुखी होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो जब उनको भी आप देखेंगे तो ऐसे में देखेंगे चित्त आपका शांत हो जाएगा। देखिए, चित्त की शांति का एक मूल कारण है वैराग्य। इसीलिए योग वासिष्ठ जैसा ग्रंथ या कभी भी योग की शुरुआत हमेशा वैराग्य से होती है। वैराग्य का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप संसार को छोड़ करके कहीं दूर भागें। वैराग्य का अर्थ यह है कि आपके चित्त को संसार जिन कारणों से मलिन करे, दूषित करे, उन कारणों को सही अर्थों में समझ करके अपने चित्त को दूषण से बचा लें, इसका नाम है वैराग्य। और इसी का अभ्यास करके आप अपने चित्त की चंचलता को रोक सकते हैं,
1: रोक सकते हैं,
0: एकाग्रता आप में विकसित हो सकती है। और जीवन में जब एकाग्रता आती है तो बहुत सारी चीजें अपने आप अर्जित हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसी को भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तुकोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि तुम अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस जो चित्त को अपने वश में कर सकते हैं। तो वैराग्य प्रकरण ये आता है। तो चित्त जो है ये संपत्ति भय और भ्रांति रूपी बादलों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाली है, ऐसा साफ साफ राम जी कह रहे हैं। राम जी को देखने में ऐसा आया। और ये विषाद रूपी विष को बढ़ाती है और व्यक्ति के जीवन में तमाम संकल्पों का विकल्प खड़ा करती है।
1: अच्छा।
0: आप देखिए, संपत्ति के नाते हम बहुत सारे विकल्प खड़ा करते हैं, ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, तो ये विकल्पों में ले जाती है। इसलिए आप एक ऐसी यात्रा में शामिल हो जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है।
1: योग वासिष्ठ में क्या बताया गया है कि अनर्थकारी जो कर्म है उनका जन्मदाता कौन है?
0: अनर्थकारी कर्मों का जन्मदाता अर्थ है, ये योग वासिष्ठ में राम जी कहते हैं कि जो ये अर्थ है यही व्यक्ति को अनर्थ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आज के समय में भी देखें तो तमाम सारे जो जांच होने के बाद कुछ लोगों के पास जो संपत्ति मिलती है उसमें आप देखिए तो वो जो अनर्थकारी कर्म उन्होंने किया है किसके लिए किया है? अर्थ के लिए किया है, उससे अर्थ ही प्राप्त हुआ है और उस अर्थ ने उनका पूरा साम्राज्य व्यर्थ कर दिया। तो ये अनर्थकारी ही कर्म तो हुआ, अनर्थकारी कर्म करके अर्थ इकट्ठा हुआ और फिर इकट्ठा अर्थ ने अनर्थकारी कर्म का रूप ले लिया और आप समाज में किसी लायक नहीं बचे, है ना, कोई प्रतिष्ठा नहीं बची। तो इस तरीके से अगर देखें तो धन का ये महत्व जो लोग जानते हैं, जो विवेकवान पुरुष हैं, वो धन के इस प्रभाव से अपने को मुक्त कर पाते हैं, या जो धन के प्रति वैराग्य का भाव उनके अंदर है वो सदा बना रहता है, तो इसलिए वो उसका अर्थकारी उपयोग करते हैं।
1: तो अर्थ से अनर्थ है और अनर्थ से सब व्यर्थ है।
0: हाँ हाँ जी, अनर्थ से सब व्यर्थ है।
1: अर्थ है। आयु के संबंध में भी योग वासिष्ठ में बात हुई है, क्या आयु मनुष्य के जीवन में क्लेश का कारण हो सकती है?
0: बिल्कुल।

0: आयु ही मनुष्य के जीवन में क्लेश का कारण बनती है, क्योंकि महापुरुषों की आयु लाभ हानि सुख दुख में चित्त को समान भाव से सुस्थिर रखने वाली होने के कारण सुखदायिनी है। यानी जो महापुरुष लोग हैं उनकी आयु सुखदायिनी है, लेकिन जो लोग विवेकवान नहीं हैं उनके आयु में आप देखें तो वो सुख को पाना चाहते हैं, दुख से अपने आप को बचाना चाहते हैं, मतलब सुख दुख के प्रति उनके अंदर समदृष्टि नहीं है। जबकि सच ये है कि सुख और दुख दोनों आपके आयु को खाते हैं। जिसको कहा जाता है ना रात दिन, ये दो काले और सफेद चूहे हैं, जिसको काल भी कहा गया है, जो आपकी आयु को कुतर रहे हैं। तो अगर देखें तो सारे क्लेश का कारण जो है ये आयु है। अब ऐसे में क्लेश से बचने का उपाय क्या है, तो कहते हैं कि वो सुख दुख में चित्त को समान भाव से स्थिर रखा जाए, योग की सिद्धि की जाए, जो समत्वम योग उच्चते भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। तो उस समान बुद्धि वाली जब दृष्टि आपकी होगी, उस बुद्धि से जब आप युक्त होंगे जिसमें सुख दुख समान भाव से आप ग्रहण कर सकें, तो फिर आपके लिए आयु सुखकारी है और ऐसा महापुरुषों के साथ है। अन्यथा ऐसी दृष्टि अगर नहीं है, सुख दुख में विषम भाव है, तो ये जो दुख आयु है ये क्लेश का ही कारण है, ये दुख ही देगी, अहंकार की वृत्ति को बढ़ाएगी और अंततः व्यक्ति सुख दुख राग द्वेष में अपना जीवन व्यतीत कर देगा।
1: तो जीवन को लेकर महापुरुषों का जो भाव है वो इस तरह का होता है। संत कबीरदास ने भी अमनी भाव दशा का जिक्र किया है और योग वासिष्ठ में भी ये बात आती है। तो मैं चाहती हूँ कि इसको थोड़ा सा हमारे सुनने वालों के लिए आप इसकी व्याख्या करें।
0: देखिए अमनी मतलब कहते हैं ये कि मन से मनन करके आप अमनी दशा को प्राप्त हो जाएं।
1: मन से मनन
0: करके अमनी दशा, अब देखिए इसको थोड़ा समझिए, ये अमनी दशा कबीर साहब भी कहते थे अमनी भाव। अमनी भाव का मतलब जहां मन अब क्रियाशील नहीं है, मन में अब वेग नहीं आ रहे हैं। जब अमनी की बात आई तो मुझे एक दोहा याद आ गया जिसमें कहते हैं कि लहरें ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत।
1: अच्छा,
0: अब देखिए लहरें अगर पानी को खोजने लगे और कपड़ा सूत को खोजने लगे, क्योंकि सूत से ही तो बना है,
1: उसी से बना है,
0: और जीव ब्रह्म को खोजने लगे, तो जीव ब्रह्म ही तो है, अज्ञानतावश जीव बना हुआ है।
1: जी जी।
0: तो ये एक प्रकार की क्या है, इसको कहते हैं ये दोनों जो है मूर्ख हैं, दोनों जो है ये कोई बहुत बुद्धिमान नहीं है, इसलिए भगवान की खोज तक भी नहीं होनी चाहिए। यानी मन ही भगवान खोजता है, अमनी दशा में भगवान की भी खोज नहीं होती। और ये मनन करके, ये चूंकि जिसके मनन किया है, ये मनन में ही ये दोहा बोला गया है कि लहरें पानी से बनी है, सूत से कपड़ा बना है, और ब्रह्म ही जीव अविद्या के कारण बना हुआ है। तो ऐसे में ये जो ज्ञानी लोग हैं ये मन से इस बात का मनन करके अपनी को अमनी दशा में लाते हैं, यानी फिर वहां मन का प्रभाव नहीं होता, मन लहरों की तरह ऊपर नीचे नहीं आता, मन डोलता नहीं है। जिसको कबीर साहब कहते हैं मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, है ना, हीरा पायो गांठ गठियायो बार बार फिर क्यों खोले। तो अमनी दशा मतलब हीरा की प्राप्ति, अब उसको फिर बार बार आपको खोलने और जांचने की जरूरत नहीं है। महंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, तो मान सरोवर की दशा है अमनी दशा।
1: जी जी जी। शशिकांत जी, बहुत ही अच्छी चर्चा रही आज की, मुझे लगता है कि हमारे जो सुनने वाले हैं उन्हें बहुत पसंद आई होगी। अगले अंक में फिर आपसे भेंट होगी, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, आज योग संवाद कार्यक्रम में हमने चर्चा की धन संपत्ति के वास्तविक स्वरूप पर। उम्मीद है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें, नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज, देश का चैनल देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं हमारा आज का विशेष कार्यक्रम।

0: जिसका मंचन हुआ 23 मार्च यानी शहीद दिवस के मौके पर। इस नाटक का निर्देशन किया सुंदरलाल मालवीय ने। यह प्रस्तुति रही माच शैली में। ये इस कार्यक्रम का पहला भाग है।
1: तो देवियों और सज्जनों, शहीद भगत सिंह के बलिदान को हम लोक स्वर में कहने जा रहे हैं। पंजाब की मिट्टी के लाल को मालवा की मिट्टी की ओर से एक भावांजलि है ये। आप जानते ही हैं कि माच मालवा की लोक संस्कृति का परिचायक है, जिसका इतिहास लगभग 300 साल पुराना है। हम आपको बता दें कि माच में गायन और अभिनय साथ साथ होता है, कथानक के संवाद गायन के साथ आगे बढ़ते हैं। परंपरागत रूप से माच में स्त्री पात्र को भी पुरुष ही निभाया करते थे, लेकिन अब मुख्य स्त्री पात्र को स्त्रियां भी निभाती हैं। हारमोनियम, ढोल, नगाड़ा, सारंगी और बांसुरी के साथ कई लयकारियों और अलग अलग तालों में माच का खेल आकार लेता है। देवी और सज्जनों, माच का एक रोचक पूर्व रंग होता है, जिसमें जर्जर की स्थापना, जय जयकार, पात्रों की सलामी यानी परिचय और लोक देवता भैरवनाथ की वंदना का क्रम होता है, और फिर माच की गजल गाई जाती है। इसके बाद बेठक आता है, परिचय देता है, भिष्टी को बुलाता है, छिड़काव करवाता है, फिर भर्रासन को जाजम बिछाने के लिए बुलाता है, यूं ठाट बाट जमाता है और कहानी आगे बढ़ती है। तो इस तरह माच मालवा की एक समृद्ध लोक नाट्य परंपरा है, जिसके साक्षी आप बनेंगे मालवा की माटी की सुगंध के साथ। तो लीजिए, प्रस्तुत है माच शैली में नाटक शहीद भगत सिंह।

देख लो सारू, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने कहीं करना छुटकाव कर ही देना, तो इक्का लिए सबसे पहले भिष्ट जी के बोलो

0: मैडम साहब बोलो क्यों आवाज नहीं आता।
1: अरे ऐसा है क्या, यहाँ अमर शहीद सरदार भगत सिंह जी की सवारी आ वाली है।
0: भगत सिंह जी की सवारी आ रही है, बात कर रही थी।
1: तुम्हारा भाग खुली गया भाग,
0: अरे वाह,
1: तुम्हारा कई काम मिले मालूम। अरे यहाँ पे तरी में छिटकाव करना है।

0: लो, इतनी जल्दी भूली गया। आ तो जा सकली बच्चा घर में से कर लो, नहीं अरे बाहर आ, जहाँ तुम बताओ वो सखी सहेली के लेता आज
1: लो जानी है मामा पे।
0: आ

0: लो मैं भी आएगी ना सबके बुलाई लाई। बताओ कई काम पड़ेगी जो हम सबके बुलाई।
1: इसो भाभी साहब क्या यहाँ सरदार भगत सिंह जी की सवारी आने वाली?
0: अरे वाह।
1: हाँ मैं आपके यहाँ पे जाजम बिछाई।
0: लो अभी बिछाई ना।
1: हाँ बिछाओ बिछाओ।

0: अच्छा ये बताओ कि आप कौन सा देवी देवता का पूजन करो।
1: लो यो भी सुनावा
0: सुना।

0: अरे वाह, तो अब हमारे यो बताओ, क्या आपके जाजन में और कई कई विशेषता है?
1: लो यो भी सुनावा।
0: सुनाओ।

0: क्या आपका जो है आपकी जाजम में सात रंग है न, वो जीवन में जैसे निर्गुण को प्रकाश फैले है सात रंग को, वैसो प्रकाश आपके की जाजम में है, वो आपको काम हुई हो, अभी आप जय सको।
1: अरे हमारा काम हुई क्या? हाँ।

0: चलो अबे सगलो काम हो गया, अब तो बस एक ही इंतजार है कि सरदार भगत सिंह जी की सवारी आई जाए। वाह वाह वाह बस। अरे अरे लो भगत सिंह जी की सवारी आई आई तो बोलो इनकलाब
1: जिंदाबाद।

0: जिंदाबाद जिंदाबाद बेटा इनकलाब जिंदाबाद। कई बात है, तू भी क्रांतिकारी हुई क्यों?
1: अरे क्या, अरे क्रांतिकारी हुई जो इतनी मारी हैसियत का,
0: अरे
1: मैं तो बस आपका साथे रह रही के नारो लगानो सीखी जाऊं।
0: हमारा साथ अच्छा अच्छा लोग नारो लगाना सीखी जाए।
1: अब आप आइया हूँ तो मैं यूँ कहूँ कि ये माँ देखवा वाला भला भला मनक है, तो इसको थोड़ा अपना परिचय दे दो।
0: अरे तो बेटा ये सब हमारे पहचाने नहीं कहीं।
1: अरे आपके तो देश को बच्चों बच्चों जाने हैं, पर कही है कि सभा में आए तो एक कायदो
0: सही बात।
1: तो आप थोड़ा सा परिचय दे दोगे तो अच्छा रहेगा।
0: ठीक है, सुनो हमारी बात।

0: कई सुनियो।
1: अरे हमने सुनियो कि आप आजादी का दीवाना हो, ने आपको नाम भगत सिंह है।
0: फिर
1: अब हमारे यो बताओ कि आपका माता पिता कौन है, ने आपको जन्म कहाँ हो।
0: यो भी सुनो।
1: सुना

0: आपने क्योंकि आपको जन्म 1907 में हुआ न, आपके पिताजी का नाम किशन सिंह जी न, माता जी का नाम विद्यापति। अब हमारे आप यो बताओ कि आपका गुरु जी कौन है?
1: पहला हमारा भाई बहन का बारे में।
0: अरे हाँ हाँ, पूरे परिवार को तो मालूम पड़ना चाहिए। तो आप हमें ये बताओ कि आपका भाई बहन कितना है, ना आपका काका जी कहीं करें।
1: यो भी सुनो,

0: अरे आपने, क्योंकि आपके दो भाई
1: क्रांतिकारी
0: अब तो बताइए तो मारे कि आपको गुरुजी कौन है,
1: उनको भी नाम सुनो
0: ना।

0: आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नाटक शहीद भगत सिंह के संपादित अंश। ये इस कार्यक्रम का पहला भाग था। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में, जहां नृत्य गायन और वादन पर केंद्रित श्रृंखला संभावना के तहत गायन और नृत्य की प्रस्तुतियां हुईं।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए मध्य प्रदेश जनजाति के संग्रहालय में। यह है बघेली गायन। कलाकार हैं प्रेमिला मिश्रा और उनके साथी।
1: अब अपना पंची सुनी बिटिया के शादी में अजुरी गाई जाती है।

ये थी रेडियो रिपोर्ट, नृत्य गायन एवं वादन पर केंद्रित श्रृंखला संभावना की। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

कोचीन का अल्बुकर्क विद्रोह। सन 1503 में कोचीन की नम और खारी हवा में एक उभरते हुए वैश्विक साम्राज्य की नियति लगभग पटरी से उतर गई थी। स्थानीय प्रतिद्वंदियों की नौसैनिक शक्ति के कारण नहीं, बल्कि दो चचेरे भाइयों के तीखे बोल और टकराते अहंकार के कारण। ये एशिया में पुर्तगालियों के लिए सीखने का दौर था, जहां पदानुक्रम यानी हायरार्की में गहरा भ्रम था और अक्सर कई कैप्टन मेजर एक साथ सत्ता संभालते थे, जिससे विस्फोटक और आंतरिक संघर्ष पैदा होते थे। कोचीन का विद्रोह या अल्बुकर्क विवाद फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क और उसके चचेरे भाई अल्फोंसो दे अल्बुकर्क के बीच कड़वी प्रतिद्वंदिता पर केंद्रित था। हालांकि उनका एक ही उपनाम था, लेकिन वे साम्राज्य के दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते थे। फ्रांसिस्को दे अल्बुकर्क एक गौरवशाली फिदाल्गो मध्यम कुलीन वर्ग था, जो व्यापार पर बढ़ते शाही नियंत्रण को संदेह की दृष्टि से देखता था। उनका मानना था कि साम्राज्य को कुलीन वर्ग के हितों की सेवा करनी चाहिए, जबकि अल्फोंसो दे अल्बुकर्क एक अवैध संतान था जिसके पास डॉम की उपाधि लगाने का अधिकार नहीं था। इस कारण वो राजा डॉम मैनुअल प्रथम का कट्टर वफादार बन गया। वो मैनुअल साम्राज्यवाद का जीवित अवतार था, जो सारी शक्ति और लाभ को शाही खजाने में केंद्रित करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। सन 1503 के उत्तरार्ध में एक लकड़ी के किले के निर्माण के दौरान ये विवाद अपने चरम पर पहुंच गया। जैसे ही लकड़ी की घेराबंदी खड़ी की गई, इसके नामकरण को लेकर एक प्रतीकात्मक युद्ध छिड़ गया। फ्रांसिस्को ने पारिवारिक विरासत के गौरव में इसका नाम कास्टेलो अल्बुकर्क रखने की मांग की। दूसरी ओर अल्फोंसो ने संप्रभु के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा दिखाने के लिए इसका नाम कास्टेलो मैनुअल रखने पर जोर दिया। ये केवल एक मामूली पारिवारिक झगड़ा नहीं था, ये राजशाही पूंजीवाद और कुलीन विशेषाधिकार के बीच एक बुनियादी संघर्ष था। हालांकि किला अंततः बन गया, लेकिन इस झगड़े ने गुटबाजी और अंतःवंश संघर्ष की एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने दो शताब्दियों तक एशिया में पुर्तगाली उपस्थिति को प्रभावित किया। अल्फोंसो दी अल्बुकर्क के इंडीज के महान गवर्नर बनने के बाद भी कोचीन के उसके पुराने दुश्मनों जैसे लॉरेंको मोरेनो और गैस्पर परेरा ने उसे बदनाम करना जारी रखा। उन्होंने लिस्बन में राजा के कान भरे कि अल्फोंसो खुद गोवा का ड्यूक बनना चाहता है और एशियाई व्यापार को अपनी निजी जागीर में बदलना चाहता है। कोचीन का ये विद्रोह याद दिलाता है कि पुर्तगाली एशिया में एक एकजुट शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक खंडित कुलीन वर्ग के रूप में आए थे, जिनके आंतरिक नागरिक युद्ध किसी भी बाहरी खतरे जितने ही खतरनाक थे।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुने कार्यक्रम आजाद हिंद।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: आवाज के इस ऐतिहासिक मंच से आज फिर आजाद हिंद रेडियो के इस कार्यक्रम में मैं इतिहास
1: और मैं इतिहास की सतत साथ ही तारीख आपका अभिनंदन करते हैं। आज हम आपके समक्ष आज के हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत को लाने जा रहे हैं जो समाज सेवा के पथ पर चलते चलते बस कुछ ही समय पहले इस दुनिया की मंजिल से कहीं आगे निकल गई हैं।
0: एक ऐसी महिला जिसने अपना सारा जीवन अपने देश और अपने समाज के नाम कर दिया था, स्वर्गीय निर्मला देशपांडे जी।
1: इतिहास, निर्मला देशपांडे जी ने अपना संपूर्ण जीवन गांधीवादी विचारधारा को समर्पित कर दिया था। उनके दैनिक कामकाज में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जो गांधी जी या विनोबा भावे जी के विचारों से पृथक हो।
0: बिल्कुल तारीख, अगर उनके दैनिक जीवन को याद किया जाए तो लगता है कि उनके जीवन में समाज या देश की सेवा के अतिरिक्त कोई और काम था ही नहीं। जीवन पर्यंत सिर्फ यही उनकी रुचि रही, यही उद्देश्य और यही आराधना।

0: निर्मला जी का जन्म नागपुर में विमला और पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे के घर 19 अक्टूबर 1929 को हुआ था। 11 वर्ष की उम्र से ही निर्मला जी को गुड़ियों से खेलने के बजाय अपने आसपास के लोगों की सेवा करने में आनंद आता था। तब से जीवन के अंत तक बिना किसी पुरस्कार या पारिश्रमिक की आशा के वो अपना कार्य सतत करती रही। अपने विद्यार्थी जीवन से ही निर्मला जी गांधी जी के सादे जीवन और ऊंचे आदर्शों से बहुत प्रभावित थी। एक बार जब उन्हें विनोबा भावे जी से मिलने का अवसर मिला तो निर्मला जी ने उस छोटी सी उम्र में ही विनोबा जी से देश सेवा करने की इच्छा व्यक्त की। उस समय विनोबा जी ने उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने की सलाह दी और फिर एक दिन निर्मला जी ने एमए पूरा करते ही विनोबा जी के चरणों को अपनी सतत समाज सेवा के पथ का पहला पड़ाव बना लिया।
1: विनोबा जी के सानिध्य में आते ही निर्मला जी विनोबा जी और गांधी जी के अहिंसात्मक सिद्धांतों का पालन करने लगी। खादी पहनने, सूत कातने, शाकाहारी भोजन करने और सत्य का पालन करने जैसे नियम वैसे भी निर्मला जी के लिए कोई नए तो थे नहीं, क्योंकि ये नियम तो उन्हें अपने देशभक्त माता पिता से ही सीखने को मिले थे। निर्मला जी के पिता को मराठी साहित्य अनामिकाची चिंतनिका में उत्कृष्ट काम के लिए 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था।
0: जिस समय निर्मला जी ने विनोबा जी का सानिध्य प्राप्त किया उस समय विनोबा जी भूदान आंदोलन में व्यस्त थे। विनोबा जी ने निर्मला जी को जो सबसे पहला महत्वपूर्ण काम सौंपा वह था इस आंदोलन के अंतर्गत पढ़ने लिखने का काम। ये काम महत्वपूर्ण और उनकी रुचि का तो था, लेकिन वो जमीनी स्तर पर समाज सेवा करने के लिए छटपटाती रहती और जब भी उन्हें ऐसा कोई अवसर मिलता तुरंत उसे पूर्ण करने के लिए दौड़ पड़ती।
1: फिर भी तारीख निर्मला जी ने भूदान आंदोलन के दौरान अपने आचार्य विनोबा भावे जी के विचारों को लिपिबद्ध किया और समय समय पर होने वाले उनके भाषणों को भी लिख लिया। उन्होंने नूतन नामक पत्रिका का संपादन भी किया जिसमें गांधी एवं विनोबा जी के विचारों का संग्रह एवं उनसे संबंधित लेख आदि हुआ करते थे। आंदोलन के दौरान निर्मला जी ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के संदेश को लेकर भारत भर में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा की। निर्मला जी ने स्वीकार किया कि गांधीवादी सिद्धांतों का अभ्यास कठिन है, लेकिन उन्हें ये विश्वास था कि पूर्ण लोकतांत्रिक समाज की प्राप्ति के लिए यही एक रास्ता है।
0: इतिहास मुझे एक बार का किस्सा याद आ रहा है, जब इंदौर के एक गांव कस्तूरबा ग्राम में शांति भंग हो गई थी और वहां शांति को पुनः स्थापित करने के लिए विनोबा जी नारी कल्याण हेतु चलाई जा रही शांति सेना की व्यवस्था का कार्यभार किसी योग्य प्रबंधक को सौंपना चाहते थे। उन्होंने अपने पास में बैठी निर्मला जी की ओर गौर से देखा और समाधान उन्हें अपने बगल में बैठा दिखाई दे गया। उन्होंने निर्मला जी से वार्तालाप किया और उन्हें इंदौर जाने के लिए राजी कर लिया। आखिर इंदौर के कस्तूरबा ग्राम को निर्मला जी से ज्यादा अनुशासित व योग्य प्रबंधक कौन मिल सकता था, और इस प्रकार निर्मला जी को शांति सेना का निर्देशक बनाकर इंदौर भेज दिया गया।

0: वहां पहुंचकर निर्मला जी ने अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए सर्वप्रथम एक ऐसा शांति शिविर स्थापित किया जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंची महिलाओं ने हिस्सा लिया। वहां उन्होंने उन सभी महिलाओं को अक्षर ज्ञान के साथ सिलाई कढ़ाई का भी प्रशिक्षण दिया, साथ ही उन्हें गांधीवादी विचारों से भी परिचित कराया ताकि यही महिलाएं इन विचारों को देश के कोने कोने तक पहुंचा सकें। निर्मला जी के पूरे कार्यकाल के दौरान एक बार भी शांति सेना के कामकाज में कोई दिक्कत नहीं आई। एक दो दफा जो दिक्कतें आई भी उन्हें निर्मला जी ने अपनी शांतिपूर्ण सूझबूझ के कारण सुलझा दिया।
1: इस कार्य को पूर्ण करने के पश्चात निर्मला जी ने बस्तर के जंगलों की ओर अपनी समाज सेवा यात्रा के मार्ग का अगला पड़ाव खोजा। वहां वे बस्तर के आदिवासियों के साथ रहीं और उनके साथ काम करने का अवसर पाया। बस्तर में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने लगभग 4000 आदिवासी बच्चों और महिलाओं को साक्षर बनाया तथा उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में स्वयं तथा बस्ती की सफाई जैसे मूलभूत ज्ञान से परिचित भी कराया, जिससे बस्तर का क्षेत्र पहले से अधिक साफ स्वच्छ एवं कुछ मूलभूत सुविधाओं से युक्त दिखाई दिया।
0: तारीख, निर्मला जी की गतिविधियां सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। ये गतिविधियां जनसंपर्क को प्रोत्साहित करने वाली संस्थाओं जैसे एसोसिएशन ऑफ पीपल ऑफ एशिया तथा पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के माध्यम से एशिया के अन्य देशों में भी फैल गई थी। निर्मला जी की विश्व बंधुत्व में गंभीर आस्था थी। वो हमेशा से एक ऐसे विशाल विश्व परिवार की कल्पना करती थीं जिसमें हर स्त्री पुरुष बिना किसी रंग भेद के प्रेम और पारस्परिक सहिष्णुता के साथ रह सके। इसी सपने को अपने दिल में रखे हुए उन्होंने अन्य देशों में भी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। वो सदा भारत पाकिस्तान मैत्री के लिए प्रयत्नशील रहीं और इस हेतु उन्होंने कई दफा पाकिस्तान की यात्रा भी की। वे जीवन भर दोनों देशों में शांति के साथ आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान की पक्षधर रहीं।

0: और इतिहास जैसा कि हर मनुष्य के जीवन में कई प्रश्न सामने आकर खड़े होते हैं, निर्मला जी के मन में भी हुए। जब एक बार उनके मन में संन्यास का पौधा अंकुरित हुआ, जब निर्मला जी अपने उस प्रश्न को लेकर अपने गुरुदेव के पास पहुंची, तो उन्होंने उन्हें समझाया कि संन्यास तो पलायन का दूसरा नाम है। उन्होंने उन्हें आभास कराया कि संन्यास लेने पर तुम्हें समाज से दूर जाना होगा, जो कि ना तो सही है और ना तुम्हारे व्यक्तित्व के अनुकूल। इस बात का अनुभव होते ही निर्मला जी ने संन्यास का विचार तुरंत त्याग दिया और समाज सेवा के कार्य में जुट गईं।
1: निर्मला जी को पंजाब और कश्मीर में हिंसा की चरम स्थिति पर शांति मार्च के लिए जाना जाता है। 1994 में कश्मीर में शांति मिशन और 1996 में भारत पाकिस्तान वार्ता आयोजित करना उनकी दो मुख्य उपलब्धियों में शामिल है। चीनी दमन के खिलाफ तिब्बतियों की आवाज को बुलंद करना भी इनके दिल के करीब था।
0: निर्मला जी ने अपना जीवन सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं, आदिवासियों और अवसर से वंचित लोगों की सेवा में अर्पण कर दिया। निर्मला जी ने हिंदी में अनेक उपन्यास लिखे, जिनमें से एक को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा उन्होंने ईशा उपनिषद पर टिप्पणी और विनोबा भावे की जीवनी लिखी है।
1: निर्मला जी 1997 से 2007 तक राज्यसभा में मनोनीत सदस्य रहीं। 2007 में हुए भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उनके नाम पर भी विचार किया गया। उन्हें 2006 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार और पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनकी उम्मीदवारी रखी गई थी। 13 अगस्त 2009 को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पाकिस्तान सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा-ए-इम्तियाज से वो सम्मानित हुईं।
0: बिल्कुल, इतिहास मुझे याद है निर्मला जी के वो शब्द जो उन्होंने बस्तर आदिवासियों से कहे थे, जो समस्या वार्ता से सुलझाई जा सकती है उसे सुलझाने का कोई और बेहतर उपाय नहीं हो सकता। हिंसा से हिंसा बढ़ती है और अगर कोई बात हिंसा से सुलझा भी ली जाए तो उसका हल स्थायी नहीं होता। विश्व में आदिकाल से अनेक युद्ध लड़े गए हैं, परंतु प्रत्येक युद्ध अगले युद्ध का बीजारोपण ही साबित होता है। अहिंसात्मक समाधान सदा स्थायी रहा है।

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। तो अब दीजिए हमें इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे,
3: तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आजाद हिंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
3: श्रोताओ, आज के युग में इंसान अपने सर्वाइवल के लिए न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के बल्कि अपने मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से भी जूझ रहा है। श्रोताओ, हमारी मानसिक स्थिति, हमारी सोच, हमारे व्यवहार, हमारे आपसी संबंधों और हमारी दैनिक जीवन के कार्यों को भी प्रभावित करती है और इन्हीं बातों से प्रभावित भी होती है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और बेहतर तरीके से हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जेपी अग्रवाल, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष साइकेट्री डिपार्टमेंट, गांधी मेडिकल कॉलेज, हमीदिया हॉस्पिटल। सर, स्वागत है आपका रेडियो आजाद हिंद में।
4: नमस्कार।
3: प्रश्न यही उठता है दिमाग में कि आखिर मानसिक स्वास्थ्य है क्या?
4: जैसे शारीरिक स्वास्थ्य है, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ की जो डेफिनेशन है, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो ऐसा नहीं है कि हमें बीमारी नहीं है इसका नाम स्वस्थ है। ये एक स्थिति है जहाँ पे हम अच्छा महसूस करते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सोशल सामाजिक रूप से। वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य हम तब कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यताओं को पहचान पाता है, अपने प्रतिदिन के तनाव को हैंडल कर पाता है, समाज में अपना योगदान दे पाता है और बेहतर एक तरह से अपना सब कुछ काम कर पाता है, उस व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। मानसिक रोग ना होना उसका एक फैक्टर है
3: जी।
4: सिर्फ मानसिक रोग ना होने की वजह से ही वह मानसिक स्वस्थ है, ऐसा नहीं है। तो इट्स अ स्टेट ऑफ वेलबींग
3: जी,
4: वेयर एनीवन रिकॉग्नाइजेस हिज पोटेंशियल, वर्क्स प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली, एबल टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, कैन हैंडल डे टू डे स्ट्रेस।
3: यानी आपका कहने का मतलब है कि मानसिक अस्वस्थता जो है वो एक परिस्थिति है, बीमारी नहीं है।
4: देखिए, एक तरफ मानसिक स्वास्थ्य है
3: जी,
4: फिर हमें कुछ मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं, और अगर हम मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझकर उसे दूर नहीं कर पाते हैं तो हमें मानसिक रोग भी हो सकते हैं।
3: अच्छा,
4: तो एक स्पेक्ट्रम है जिसके एक छोर पर मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से मानसिक स्वस्थ व्यक्ति है,
3: हाँ जी,
4: दूसरे छोर पर पूरी तरह से मानसिक बीमार व्यक्ति है
3: जी,
4: और बीच में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं।
3: कितने प्रतिशत मानसिक रोगों से लोग ग्रस्त हैं, अनुमानित क्या है ये आंकड़ा?
4: इसमें दो तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं। एक होते हैं जिसे बोलते हैं कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स।
3: हाँ जी।
4: कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, घबराहट से संबंधित रोग है, नींद से संबंधित रोग है,
3: हाँ जी,
4: या पर्सनैलिटी से संबंधित रोग है, या कुछ कहते हैं हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स या सोमेटिक डिसऑर्डर्स, ये है कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स। और एक होते हैं जिसे कहते हैं सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स। सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स जहां आपको देखने में लगे कि व्यक्ति थोड़ा विक्षिप्त है, इसका व्यवहार सामान्य नहीं है। कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स के जब हम व्यक्ति को देखते हैं तो उसका व्यवहार हमें देखने में बहुत असामान्य प्रतीत नहीं होता है, पर जब हम सीवियर मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट देखते हैं तो उनका आपको दूर से लगता है कि हाँ, इसमें कुछ तो असामान्यता है। टोटल जो प्रेविलेंस है करीब करीब 12.5 से 15% के बीच में प्रेवलेंस है मानसिक रोगों की।
3: अच्छा,
4: भारत में अगर मान लीजिए हमारी आबादी करीब 150 करोड़ के आसपास है
3: जी,
4: तो हमारे यहाँ कम से कम 20 करोड़ के आसपास लोग हैं जिनको मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित रोग या समस्याएं हैं।
3: तो
4: इसमें से जो 1 से 2% है वो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स के पेशेंट है
3: जी,
4: और 10 से 12% जो है आबादी वो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त है
3: जी।
4: तो 12 और 2, इतना करीब करीब प्रेवलेंस रेट है।
3: क्या आत्महत्या भी जो है वो मानसिक अस्वस्थता का कारण है?
4: आत्महत्या परिणति है खराब मानसिक स्वास्थ्य की।
3: अच्छा।
4: कोई भी व्यक्ति जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, जो व्यक्ति अपने, जैसे हमने जो डेफिनेशन बताई, अपने स्ट्रेस हैंडल कर पा रहा हो, जो समाज के प्रति योगदान दे पा रहा हो, जो अपनी योग्यता को समझ पा रहा हो, वो व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता। कई बार पारिवारिक तनाव की वजह से आत्महत्या हो जाती है
3: जी,
4: पर वो भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ही बिगाड़ती है।
3: जी।
4: कई बार मानसिक रोग कारण होते हैं आत्महत्या का, जैसे कि डिप्रेशन की वजह से व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, सिज़ोफ्रेनिया की वजह से व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, नशे की लत की वजह से व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है
3: जी।
4: तो आत्महत्या डायरेक्ट कारण भी होती है, पारिवारिक समस्याओं की वजह से होती है
3: जी।
4: फिर लाइफ में हमारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो हम एग्जाम में फेल हुए, या हमारा ब्रेकअप हो गया
3: जी,
4: या हमारी कोई आर्थिक हानि हो गई, फसल का नुकसान हो गया, या कोई और बड़ी हानि हो गई जिसकी वजह से आमतौर पे हम आत्महत्या पाते हैं
3: जी,
4: वो अल्टीमेटली हमारे मानसिक स्वास्थ्य को खराब करती हैं
3: जी।
4: हमें आगे का रास्ता नजर नहीं आता
3: जी,
4: ऐसा लगता है जैसे आगे भी सब कुछ अंधकार में है। आत्महत्या इंसान उस अवस्था में करता है जब उसे लगता है आगे भी कुछ ठीक नहीं होने वाला है
3: जी।
4: तो इसी कारण ये कहा जा सकता है कि आत्महत्या जो है और मानसिक स्वास्थ्य आपस में बहुत लिंक्ड हैं
3: जी,
4: और खराब मानसिक स्वास्थ्य की वजह से ही आत्महत्या होती है
3: जी। यदि मानसिक स्वास्थ्य को हम सुधार लें तो आत्महत्या का प्रतिशत बहुत कम हो जाएगा
4: जी। इसमें ये समझना जरूरी है कि समस्याएं जो होती हैं टेम्परेरी होती हैं। कोई भी समस्या लाइफ में आती है वो थोड़े समय बाद अपने आप सॉल्व हो जाती है, उसका कोई ना कोई हल निकल जाता है। इवन कई बार आपने ट्रैफिक जैम भी देखे हो जहां इंसान कई बार 3-3 घंटे फंसा रहता है
3: जी।
4: तो आप देखेंगे 3-4 घंटे बाद ट्रैफिक जैम क्लियर हो जाता है।
3: हाँ जी।
4: पर उस ट्रैफिक जैम में फंसे हुए व्यक्ति को लगे कि ये ट्रैफिक जैम कभी क्लियर होगा ही नहीं और इससे अच्छा मैं आत्महत्या कर लूं। तो ये वैसी ही अवस्था है जैसा एक कई बार जाम में फंसा हुआ व्यक्ति सोचे कि मेरे को आगे कोई रास्ता मिलेगा ही नहीं, शायद आगे सब कुछ ठीक होगा ही नहीं। तो अगर उस समय उसे किसी भी तरीके से रोका जा सके, क्योंकि आत्महत्या भी एक तरह से फॉर द टाइम बीइंग इम्पल्स आता है कि मुझे कर लेना चाहिए
3: जी।
4: उस समय अगर उसकी देखभाल कर ली जाए, उसे अकेला ना छोड़ा जाए, उसका उचित उपचार हो जाए
3: हाँ जी,
4: तो उस आत्महत्या से बचा जा सकता है। तो आत्महत्या या सुसाइड इज अ प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ। अगर आप आंकड़े देखेंगी तो वर्ष 2018 के अंदर करीब 1,34,000 लोगों ने भारत के अंदर आत्महत्या से अपने प्राण गंवाए। ये आंकड़ा बढ़ के 2019 में 1,39,000 तक पहुंचा। 2020 में जब कोविड आया तो ये आंकड़ा एकदम से बढ़ा और 1,53,000 पे पहुंच गया
3: जी।
4: 2021 में 1,53,000 से 1,64,000, क्योंकि उस समय भी कोविड की भयावहता चल ही रही थी
3: जी।
4: और 2022 के अंदर 1,71,000। तो ये इतनी गति से बढ़ रहा था। अभी हाल ही के अंदर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने अपने लेटेस्ट जो आंकड़े हैं 2023 के जारी किए हैं
3: जी,
4: जिसके अंदर 1,72,000 के आसपास व्यक्तियों ने आत्महत्या की वजह से प्राण गंवाए हैं। और इसमें दुख की बात ये भी है कि जो मध्य प्रदेश है हमारा स्टेट है
3: हाँ जी,
4: वो टॉप 3 में है, वो 3rd रैंक पे है। तो करीब 15,000 व्यक्तियों ने मध्य प्रदेश में अपने प्राण गंवाए हैं आत्महत्या की वजह से।
3: देखिए यदि इस क्षणिक आवेश को यदि रोका जा सकता है तो आत्महत्या का प्रतिशत काफी कम हो जाएगा। एक बात ये आप कुछ टर्म्स यूज कर रहे हैं जैसे सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, ये चीजें जो क्या है, आप क्या ये मानसिक अवस्था के प्रकार है, अस्वस्थ मानसिक अवस्था के?
4: कोई भी व्यक्ति उसे लगता है कि कई बार उसे उदासी है, पर हर उदासी डिप्रेशन नहीं है
3: जी।
4: डिप्रेशन हम तब कहते हैं जबकि किसी के मन की उदास अवस्था 2 सप्ताह से ऊपर की हो।
3: अच्छा।
4: 2 सप्ताह से ऊपर व्यक्ति का मन उदास रह रहा है, उसे किसी काम में मन नहीं लग रहा है, उसे जो चीज पहले प्लेजर देती थी, आनंद देती थी, वो उसे आनंद नहीं दे रही है। उसकी नींद असामान्य हो गई है, उसकी भूख असामान्य हो गई है, या तो कम हो गई है या ज्यादा हो गई है
3: जी।
4: उसके अंदर नकारात्मक विचार आ रहे हैं, आत्महत्या के विचार आ रहे हैं
3: जी।
4: जब ये लक्षण आते हैं
3: जी,
4: या एक तरह से कहते हैं वो आपको एकदम सुस्त दिखाई देता है, आप डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है जैसे ये चल फिर नहीं रहा, ये कोने में सुस्त गुमसुम सा बैठा है
3: जी।
4: तो जब इस तरह के सारे सिम्टम्स आते हैं तब उसे डिप्रेशन कहते हैं
3: जी।
4: कई बार इंसान को भ्रम होता है कि मैं उदास हूं इस कारण मैं डिप्रेशन में हूं, पर डिप्रेशन एक क्लिनिकल बीमारी है जिसका की जो डायग्नोसिस है वो साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर के द्वारा ही किया जाता है
3: जी।
4: वैसे ही सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक रोग है। सिजोफ्रेनिया के व्यक्ति में कई बार कुछ अलग अलग तरह के भ्रम या डिल्यूजन्स होते हैं।
3: अच्छा।
4: जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा है, मुझे कोई मारने की साजिश रच रहा है, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, या मेरे वाइफ का या मेरी गर्लफ्रेंड का किसी और से अफेयर चल रहा है। तो ऐसे जो बिलीफ्स हैं, गलत बिलीफ्स हैं जो दिमाग में बैठ जाते हैं
3: जी, शक,
4: और जो किसी और समझाने से ठीक नहीं होते
3: जी जी,
4: तो डिल्यूजन्स हो सकते हैं। फिर कुछ असामान्य आवाजें सुनाई देती है जो व्यक्तियों को वैसे नहीं आती।
3: अच्छा।
4: ऐसे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी आवाजें उसे सुनाई देने लग जाती हैं।
3: हुँ।
4: फिर कई बार जो व्यवहार होता है वो बहुत विकृत सा हो जाता है, वो अपना स्वयं का देखभाल नहीं कर पाते हैं, दिनों दिनों तक नहाते नहीं है, गुमसुम रहते हैं। तो ये भी सब सिजोफ्रेनिया के लक्षण हो सकते हैं।
3: तो ये सब अवस्थाएं हमारे अंदर आती क्यों है, इसका कारण क्या है?
4: देखिए जो मानसिक रोग हैं उनका एक जो डिजीज डेवलप करने का मॉडल है उसे हम कहते हैं बायोसाइकोसोशल मॉडल
3: जी।
4: तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है पहला वो है बायोलॉजिकल।
3: अच्छा।
4: पहला कारण है जेनेटिक्स। अच्छा। इनहेरिटेंस
3: यानी अनुवांशिक भी हो सकता है। अनुवांशिक,
4: हमारे अंदर सभी चीजें अनुवांशिक हैं एक तरह से। हमारे स्किन के कलर से लेके, हमारी हाइट से लेके, हमने जो भी अपनी लाइफ में मिला है हमें वो अपने माता पिता के जीन्स से ही मिला है
3: जी।
4: तो डायबिटीज भी उतनी ही अनुवांशिक है जितनी की सिजोफ्रेनिया या डिप्रेशन।
3: ओके।
4: बीमारी के दोनों फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स, एक होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो सबसे पहला तो जेनेटिक्स कारण है, फिर हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनका आपस में जो कम्युनिकेशन है वो कुछ केमिकल्स के थ्रू होता है जिसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो इम्बेलेंस होते हैं वो मानसिक रोग करते हैं।
5: अच्छा,
4: अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर है जिनसे अलग अलग तरीके के मानसिक रोग हो सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक कारण भी होते हैं, मेरी लाइफ में कोई नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, कोई किसी की फैमिली में डेथ हो गई, या मेरी नौकरी छूट गई
5: जी,
4: या मेरा ब्रेकअप हो गया, या मैं एग्जाम में फेल हो गया
5: जी।
4: ये सब वो कारण है जो बीमारी को एकदम से बढ़ा देते हैं। बीमारी हो सकता है हमारे शरीर के अंदर कहीं छुपी हुई हो
5: जी,
4: पर जब हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेस आता है तो कई बार वो कारण एकदम से उभर के सरफेस में आ जाते हैं। फिर हर इंसान की स्ट्रेस को या तनाव को हैंडल करने की स्किल्स हैं, कोपिंग स्किल्स हैं। कई बार हमारी कोपिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती, हम खान पान पे ध्यान नहीं देते, हमारी नींद के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो हमारी कोपिंग स्किल्स वीक हो जाती हैं और उस वजह से भी कई बार मानसिक रोग बढ़ जाते हैं। तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर साइकोलॉजिकल और सोशल कंपोनेंट भी इम्पोर्टेंट है।
5: तो मतलब जैसे भी हमें मालूम पड़ता है सर कि कोई व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो फिर हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये अस्वस्थ है और हमें परामर्श की जरूरत है, चिकित्सकीय परामर्श की जरूरत है?
4: किसी भी व्यक्ति के अगर आपको व्यवहार में बदलाव नजर आता है
5: जी,
4: अगर कोई गुमसुम रहने लगा है, कोई ज्यादा बात करने लगा है, कोई शक करने लगा है
5: जी,
4: किसी की नींद कम हो रही है, या वो खाना नहीं खा रहा है टाइम से, या वो नशा अधिक कर रहा है, या वो छोटी छोटी बातों पर चिंता अधिक कर रहा है, घबरा जाता है
5: जी,
4: तो अलग अलग तरह के अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। तो एक जैसे बीमारी होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी, उसके अंदर व्यक्ति कई बार बार बार हाथ धो रहा होता है या बार बार चीजों को चेक कर रहा होता है।
5: ओके,
4: तो अलग अलग बीमारी के अलग अलग लक्षण हैं, पर जो ब्रॉडली हमने बताया कि नींद के अंदर जो चेंजेस आते हैं, व्यवहार में जो चेंजेस आते हैं
5: जी,
4: नशा जो नज की जो प्रवृत्ति है
5: जी, जी,
4: वो ये सब अगर किसी में हो रही है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, या आत्महत्या के तो अगर किसी में विचार भी आ रहे हैं तो वो भी मानसिक रोग का लक्षण हो सकता है, और ऐसे व्यक्ति को हमें अतिशीघ्र मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक इनमें से किसी के पास अवश्य लेके जाना चाहिए ताकि उसका उचित डायग्नोसिस और उपचार हो पाए।
5: सर एक चीज आती है, अलग अलग वर्गों में अलग अलग मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण है, जैसे बच्चे हैं, तो बच्चों की मानसिक अस्वस्थता हमें कैसे पता चलती है?
4: आजकल अगर हम देखें तो आपने कभी अखबार पढ़ा हो तो कई बार ऐसी खबर आती है कि 6 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली
5: जी,
4: 8 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली, वो बहुत चिंताजनक है।
5: हाँ जी।
4: बच्चों के अंदर जो आमतौर पे डिसऑर्डर्स मिलते हैं वो एक होता है जिसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
5: अच्छा।
4: जिसके अंदर बच्चा जो है उसकी अटेंशन स्पैन कम होता है जिससे वो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर हो जाता है, और वो बहुत हाइपर एक्टिव होता है, ऐसा एकदम भाग रहा होता है, दौड़ रहा होता है, उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो एक ये बीमारी है। दूसरी बच्चों से संबंधित कई बार होता है कि बच्चों में बुद्धि का विकास बराबर नहीं हो पाया
5: जी।
4: तो जैसे मान लीजिए माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है या मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन है, मंद बुद्धि जिसे कह सकते हैं, तो वो समस्याएं कई बार बच्चों में देखने को मिलती है
5: जी।
4: फिर बच्चों में भी आजकल कॉम्पिटिशन और पीयर प्रेशर इतना हो गया है कि उनमें भी जो बीमारियां हम पहले मानते थे बड़ों में ही मिलती है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, ओसीडी, वो जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है वो बच्चों में भी हमें देखने को मिल रही है
5: जी, जी।
4: तो बच्चों में भी कई बार अर्ली ऑनसेट साइकोसिस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, ओसीडी हो सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो बच्चों में भी इस तरह की समस्याएं मिल सकती हैं।
5: तो इसका भी चिकित्सकीय समाधान है?
4: बिल्कुल, इनका भी उचित चिकित्सकीय या मनोवैज्ञानिक समाधान है।
5: हमने बच्चों की बात की, ऐसी महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
4: महिलाओं के अंदर कई बार जो पीरियड्स का टाइम होता है उसके जस्ट पहले उनके मूड के अंदर कुछ चेंजेस रहते हैं जिसे हम कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। कभी रोने जैसा मन होता है, या इरिटेबिलिटी या चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है, या उदासी जैसा लगता है, खाली खाली सा लगता है
5: जी।
4: तो वो समस्याएं प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर में कहलाती है। इसके अलावा जब हमारी डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद करीब 50-70% महिलाओं को पहले सप्ताह के अंदर पोस्टमार्टम ब्लूज होते हैं। पोस्टमार्टम ब्लूज मतलब रोने जैसा मन, उदासी
5: जी।
4: जो डिप्रेशन जितनी गंभीर नहीं है पर कुछ दिनों तक
5: रहती है।
4: फिर 50-70% में पोस्टपार्टम ब्लूज हैं तो करीब 8-10% महिलाओं के अंदर डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लक्षण भी आते हैं।
5: अच्छा।
4: डिप्रेशन के लक्षण जैसे बाकी लोगों में आता है साइकोसिस।
5: अच्छा।
4: इसके अलावा महिलाओं को क्योंकि अपनी लाइफ को वर्क और होम के बीच में बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि समाज आगे बढ़ा है, पर महिलाओं ने जैसे बाहर के काम करने चालू कर दिए, पर पुरुष अभी भी घर उतना अच्छा नहीं संभाल पाते जितने महिलाएं संभाल पाती हैं। तो महिलाओं को क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, ऑफिस में भी कई बार अच्छा माहौल नहीं होता और घर में भी कई बार काम का बोझ होता है
5: जी।
4: तो उस वजह से वो कई बार ज्यादा स्ट्रेस फील करती हैं, उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण ज्यादा मिल सकते हैं
5: जी। तो जैसे हमने बच्चों की बात की, महिलाओं की बात की, ऐसे ही एक बहुत बड़ा वर्ग है वृद्धों का
4: जी
5: ना। तो बुजुर्गों में ये जो मानसिक स्वास्थ्य जो है, जैसे अल्जाइमर, तो अल्जाइमर भी क्या मानसिक अस्वस्थता में आता है?
4: बुजुर्गों में कई तरह के मानसिक विकार मिल सकते हैं।
5: हाँ जी।
4: और हमारी आबादी, जैसे आज की तारीख में करीब 10-12% हमारी आबादी ऐसी है जो वृद्ध है
5: जी।
4: पर जैसे जैसे हमारी हेल्थ फैसिलिटी बेहतर हो रही है, आने वाले टाइम में हो सकता है हमारी 25-30% आबादी वृद्ध रहे, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज में है
5: जी।
4: जैसे जापान में देखेंगे उनकी करीब 35% आबादी वृद्ध है। तो वृद्धावस्था में कई तनाव आते हैं जो व्यक्ति को लाइफ में पहले वो कर पा रहा था, उसका शरीर साथ दे रहा था, वो काम कर पा रहा था, शरीर की कई बीमारियां आई तो वो काम करना कम हो गया, तो उसका मन खराब रहना चालू हुआ। उसने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया पर बच्चे शायद उतनी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वजह से भी व्यक्ति उदास रहता है, खिन्न रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है कई बार। तो वृद्धावस्था में डिप्रेशन के प्रकरण ज्यादा देखने को मिलते हैं, इवन सुसाइड के केसेस भी बढ़ जाते हैं वृद्धावस्था में। और क्योंकि कई बार परिवार वाले हो सकता है पैसा तो फिर भी शायद वृद्ध व्यक्ति के ऊपर खर्च कर दें, उसके कपड़े ला दें या उनको

0: घर वालों के लिए हम क्या कर सकते हैं?
1: लाइफ में हमें एक्सपेक्टेशंस कम करनी चाहिए अपनी
0: जी।
1: अगर हम अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आगे से आगे की तृष्णा जो है वो हमें एक तरह से तनाव देती है। स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है पर्याप्त नींद, न्यूट्रिशियस डाइट
0: जी,
1: कुछ एक्सरसाइज, अगर लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है तो उसे हैंडल करने के लिए अच्छी कोपिंग मैकेनिज्म, नशे से दूरी
0: जी,
1: और समाज के अंदर एक्टिव योगदान। अगर
0: हाँ
1: हम रिलेशनशिप्स में अच्छे से रह रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, मोबाइल के ऊपर कम निर्भर हैं, तो हम मानसिक रूप से ज्यादा अच्छा स्वस्थ रह पाएंगे।
0: तो आपने जो टेक्निक्स की बात की, कोपिंग टेक्निक्स की, वो क्या है?
1: जब इंसान के लाइफ में तनाव आता है तो वो उसे किस तरीके से हैंडल करता है?
0: जी,
1: कोई व्यक्ति होता है जो सोचता है कि चलो आज मेरे को लाइफ में बुरा दिन था, मैं 2 पैग अल्कोहल ले लेता हूँ, उससे शायद मेरे को शांति मिले।
0: जी,
1: तो ये अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म हुआ। कुछ लोग काम के तनाव को चाय पी पी के कम कर रहे होते हैं।
0: हाँ जी।
1: तो वो भी अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है समस्याओं को समझना
0: जी,
1: कि भाई हर समस्या शायद आपकी अपनी नहीं है, क्या मुझे अभी उसके ऊपर निर्णय लेना है या उसको टैकल करना है, और क्या मैं बाद में कर सकता हूँ। फिर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कोपिंग मैकेनिज्म। फिर जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर हमें कुछ ऐसा समय देना चाहिए कि जिससे हम रिलैक्स कर पाए। तो योगा इज अ गुड कोपिंग मैकेनिज्म, प्राणायाम इज अ गुड कोपिंग मैकेनिज्म। ऑफिस का तनाव ऑफिस के बाहर तक नहीं आना चाहिए, ऑफिस के तनाव को हमें ऑफिस में छोड़ के आना चाहिए।
0: हाँ जी।
1: अगर वो तनाव हम घर पे लाते हैं तो हम घर के वातावरण को और दूषित और खराब करते हैं।
0: हाँ जी।
1: और जिससे हमारे बच्चों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हमें एक तरह से समझदारी से अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, और तनाव को जितना हद तक हम बेहतर प्रबंधन कर पाए या लिमिट कर पाए
0: जी,
1: उतना हमारे लिए अच्छा है।
0: सर, अब मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, आपके पास आता है, तो आप उसका क्लिनिकली उपचार करते हैं या फिर साइकोलॉजिकली उपचार करते हैं, ये कैसे डिसाइड होता है?
1: जैसे कोई मरीज हमारे पास आया, हम उसकी हिस्ट्री देखते हैं कि क्या क्या उसके रोग कब उत्पन्न हुए, उसका एग्जामिनेशन या मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं। बीमारी की गंभीरता के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि इसे किस तरह का ट्रीटमेंट देना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी फिजिशियन के पास गया, उसका ब्लड शुगर 125 है जो कि सामान्य से थोड़ा ऊपर है, तो हमें क्या सलाह मिलेगी कि भाई खाने में ये चीजें कम खाओ, वॉक करो, अभी तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं है। पर वही पेशेंट अगर डॉक्टर के पास आया और उसका शुगर 350 है, तो फिर जो सलाह थी डाइट कंट्रोल करो, एक्सरसाइज करो, वो तो मिलेगी, पर दवाई के लिए वेट नहीं किया जाएगा, दवाई चालू करनी पड़ेगी
0: जी।
1: तो अगर माइल्ड डिप्रेशन का पेशेंट है तो सिर्फ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या साइकोथेरेपी से भी उसका उपचार हो सकता है। पर आमतौर पर क्योंकि हमारे यहाँ जागरूकता कम है तो मरीज बीमारी बढ़ा के ही आता है। तो जब बढ़ी हुई बीमारी के अंदर मरीज आता है तो उसे हमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करनी पड़ती है और साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। नियमित इलाज से मरीज की हालत में सुधार आता है। जैसे जैसे मरीज की हालत में सुधार आता है उसकी दवाओं को धीरे धीरे कम करके बंद करने की दिशा में जाया जाता है।
0: अच्छा।
1: व्यक्ति नियमित इलाज करता है तो उसकी दवाई समय के साथ में बंद हो जाती है। पर इसमें भी समस्या यह है कि कई बार मरीज अपने आप ही दवाई बंद कर देता है या रेगुलर फॉलोअप के लिए नहीं आता है, तो ऐसे में बीमारी थोड़ी और लाइलाज हो जाती है।
0: हमें यह कैसे पता चलता है कि अब व्यक्ति मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है?
1: उसके व्यवहार के ऑब्जर्वेशन से
0: जी,
1: उसके जो घर वाले उसके बारे में हमें हिस्ट्री देते हैं उससे, और एक मानसिक स्थिति परीक्षण मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं जो मरीजों पर किए जाते हैं आवश्यकता पड़ने पर।
0: अच्छा।
1: कुछ इन्वेंटरीज होती हैं, कुछ क्वेश्चनेयर्स होते हैं, कुछ बैटरीज होती हैं जो लगाई जाती हैं, जिनके ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि बीमारी की क्या अवस्था है और क्या उपचार दिया जाना चाहिए।
0: अपने आप को कैसे जान सकते हैं कि मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ?
1: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने
0: जी।
1: अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो मध्य प्रदेश का है उसमें हमने और हमारे कुछ सहयोगियों ने मिलकर एक ऐप तैयार किया, एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल ऐप, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। उसका नाम है मनहित।
0: मनहित,
1: मनहित
0: जी।
1: आप वो मनहित ऐप इंस्टॉल कीजिए और उसके अंदर सेल्फ असेसमेंट का कॉलम है
0: जी।
1: तो जैसे आप सेल्फ असेसमेंट क्लिक करेंगे तो उसमें अलग अलग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उसका जवाब आपको हाँ ना में क्लिक करना है। उसमें कई सारी हमने अवेयरनेस मटेरियल जानकारी भी डाली है। तो एक बहुत अच्छा ऐप है जिसके माध्यम से हम स्वयं का मानसिक स्वास्थ्य जज कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: उस मनहित ऐप को हमने टेलीमानस टेलीमानस एक तरह से राष्ट्रीय हेल्पलाइन सर्विस है।
0: अच्छा।
1: जो कि केंद्र सरकार की मदद से चल रही है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उसे संचालित कर रहा है
0: जी।
1: उसका नंबर है 14416।
0: एक बार आप फिर दोहरा दीजिए तो अच्छा रहेगा सर।
1: 14416 नंबर है जिसके अंदर ये हेल्पलाइन चलती है टेलीमानस। इसके अंदर ट्रेन काउंसलर्स जो होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपकी समस्याएं सुनते हैं और उसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं।
0: तो बहुत ही नई जानकारी हम लोगों को मिली है, क्योंकि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का तो बहुत ध्यान रख लेते हैं सर, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हमारे पास शायद समय की कमी है और जागरूकता की सबसे ज्यादा कमी है। आप हमारे श्रोताओं को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या संदेश देंगे सर?
1: भरपूर नींद लें, पौष्टिक आहार खाएं, थोड़ी एक्सरसाइज अवश्य करें, तनाव प्रबंधन करें, स्ट्रेस में ना रहें और नशे से दूर रहें। और नशे में आजकल मोबाइल भी आ गया है
0: जी,
1: तो मोबाइल को भी लिमिट कीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो आज थे हमारे साथ डॉक्टर JP अग्रवाल, जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और मैं थी आपके साथ आपकी पूर्वा। तो दीजिए अब इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार। 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद। ये दुनिया
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूं कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये मेरा इंडिया। देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुने कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी जी का कोलंबो नगर में पदार्पण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। उनके गैरिक पगड़ी से सज्जित मस्तक को देखते ही समुद्र तट पर एकत्रित विराट जनसमूह आनंद से जय ध्वनि कर उठा। उस समय संध्या नहीं हुई थी। डूबते सूरज की रोशनी से उनका मुखमंडल उज्जवल हो उठा। समाज के प्रतिनिधि के रूप में माननीय कुमार स्वामी महोदय ने कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ आगे बढ़कर उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया। स्वामी जी इतनी देर बाद समझ पाए कि ये भीड़, ये जय ध्वनि, फूल माला, सब कुछ उनके स्वागत के लिए है। उनकी आंखों में आंसू आ गए।
1: स्वामी विवेकानंद की
2: जय।
1: स्वामी विवेकानंद की
2: जय।
1: स्वामी विवेकानंद की
2: जय।
1: स्वामी विवेकानंद की
2: जय।
1: स्वामी विवेकानंद की
2: जय।
3: लोगों ने स्वामी जी को दो घोड़ों के सुसज्जित गाड़ी में बिठाकर फूल बरसाते हुए नगर में प्रवेश किया। सुशोभित कई फाटकों को पार कर जुलूस धीरे धीरे सजे हुए राजपथ से होता हुआ दारुचीनी उद्यान के सामने एक विराट मंडप के नीचे आ पहुंचा। स्वामी जी के गाड़ी से उतरने पर सब उनके चरण स्पर्श करने उमड़ पड़े। कुमार स्वामी जी ने उन्हें अभिनंदन पत्र भी समर्पित किया।
0: इस स्वागत समारोह का वर्णन हमें सिलोन इंडिपेंडेंट नामक संवाद पत्र में मिलता है।
4: तुमुल हर्ष ध्वनि के बीच स्वामी जी उठ खड़े हुए और वाग्मिता पूर्ण उत्तर दिया। उनकी बातें सहज एवं स्पष्ट होने के बावजूद वह उपस्थित विराट श्रोता मंडली के मन में उसने गहरा आंदोलन छेड़ा। अपने उत्तर रूपी भाषण में स्वामी जी ने कहा कि वह समारोह किसी महान राजनीतिज्ञ, किसी वीर सैनिक अथवा किसी धनी व्यक्ति के सम्मानार्थ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, एक तुच्छ सन्यासी का आपने जो ये राजोचित सत्कार किया है, वो भारतीयों को आध्यात्मिकता का परिचायक है। वो ना तो एक सेनानी थे, ना एक राजकुमार और ना ही एक धनाढ्य व्यक्ति, तथा भी सांसारिक दृष्टि से समृद्ध तथा अत्यंत प्रतिष्ठित लोग उन्हें एक निर्धन सन्यासी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने आए थे। उन्होंने कहा, यही आध्यात्मिकता की चरम अभिव्यक्तियों में से एक है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक समझा दिया कि यदि हमारे राष्ट्र को जीवित रहना है तो हमें धर्म को राष्ट्र जीवन को मेरुदंड बना लेने की आवश्यकता है। और उन्हें जिस प्रकार अभिनंदित किया गया, उसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नहीं अपितु एक मौलिक सिद्धांत की स्वीकृति के रूप में ही ग्रहण किया।
3: स्वामी जी जब तक कोलंबो में रहे, उनका निवास स्थान लोगों से भरा रहता। वो मकान मानो एक तीर्थ स्थान में परिणत हो गया था। आगंतुकों में उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारियों से लेकर निर्धन भिखारियों तक हर श्रेणी के लोग रहते थे। बाद में उस मकान को विवेकानंद लॉज का नाम दे दिया गया था।
0: अगले दिन फ्लोरल हॉल में उनका व्याख्यान हुआ। विषय था पुण्य भूमि भारत। उस दिन श्रोताओं की संख्या इतनी अधिक थी कि ज्यादातर लोगों को बाहर ही खड़े रहना पड़ा। उस व्याख्यान में उन्होंने कहा,
5: यदि ऐसा कोई देश है जहां आध्यात्मिकता तथा अंतर्दृष्टि का सर्वाधिक विकास हुआ हो तो वो भारत ही है। यहीं से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी ओर दार्शनिक ज्ञान की प्रबल तरंगें प्रवाहित हुई हैं, और यहीं से वो धारा भी निकलेगी जो संपूर्ण पृथ्वी की भौतिक सभ्यता को आध्यात्मिकता से परिपूर्ण कर देगी। परंतु अन्य देशों के द्वारा जिस प्रकार युद्ध एवं रक्तपात की सहायता से भावों का प्रचार हुआ करता है, भारत का आध्यात्मिक भाव किसी काल में उस प्रकार प्रचारित नहीं हुआ। अत्यंत प्राचीन काल से अब तक एक एक कर न जाने कितने भाव तरंग भारत से प्रचारित हुए हैं, परंतु उनमें से प्रत्येक आगे शांति एवं पीछे आशीर्वाद लेकर अग्रसर हुआ है। अन्य प्राचीन जातियों के लुप्त हो जाने पर भी उन्हीं पुण्य कर्मों के फल स्वरूप हम लोग आज भी जीवित हैं। हमारे राष्ट्रीय जीवन ने धर्म को ही अपना केंद्र निर्धारित किया है। इस भारतवर्ष में मनुष्य का सारा उद्यम धर्म के लिए है। धर्म लाभ ही उसके जीवन का एकमात्र कार्य है। प्रत्येक राष्ट्र के जीवन का मानो एक विशेष उद्देश्य रहता है। समग्र मानव जाति की प्रगति में इस शांति प्रिय हिंदू जाति का भी कुछ योगदान है। और पृथ्वी को प्राप्त आध्यात्मिक आलोक ही भारत का दान है।
0: वस्तुतः उन्होंने भारत के मौलिक एवं शाश्वत आध्यात्मिक संदेश की ओर ही लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था। हर युग की आवश्यकता के अनुरूप बदलने वाले आचार व्यवहारों अथवा विधि निवेशों के बारे में उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा था,
5: सर्वोपरि पृथ्वी को यह महान सत्य हमें सिखाना होगा। संसार को भारत वर्ष से न केवल परधर्म सहिष्णुता अपितु अन्य धर्मों के प्रति सच्ची सहानुभूति का भाव रखने की शिक्षा भी ग्रहण करनी होगी। सब प्रकार के भेदों को दूर करना असंभव है, विभिन्नताएं तो रहेंगी ही, उनके बिना जीवन असंभव है, परंतु इसी कारण एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखना अथवा आपस में लड़ाई झगड़े करना आवश्यक नहीं है।
3: अगले दिन शाम को जब वे शिव मंदिर में दर्शन करने गए तो काफी लोग उनके साथ चल दिए। मार्ग में एक उल्लेखनीय घटना हुई, वो ये कि लोग उन्हें रोक कर माला पहनाने लगे। श्रीलंका और दक्षिण भारत में एक प्रथा है कि घर में कोई विशिष्ट मेहमान के आने पर घर के द्वार पर दीप जलाए जाते हैं, घर को फूल, नारियल, केला आदि से सजाया जाता है। स्वामी जी तमिल मोहल्ले के चेकू स्ट्रीट से होकर गुजरने लगे तो देखा हर घर को परंपरा अनुसार सजाया गया है। स्वामी जी जहां जहां से गुजरे लोगों ने उनका जय घोष किया।
0: इस तरह स्वामी जी के दिन व्याख्यान देते और शाम को लोगों से मेल मिलाप में कट जाते। एक दिन उन्होंने व्याख्यान के दौरान देखा कि कुछ लोग विदेशी पोशाक पहनकर आए हैं। वे नाराज हो गए और उन्होंने स्पष्ट रूप से समझा दिया,
5: यूरोपीय वेशभूषा भारतीय शरीर पर बिल्कुल शोभा नहीं देती, ये दास सुलभ अनुकरण है। किसी खास पोशाक की मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, परंतु जो लोग दास सुलभ दुर्बलता के कारण ऐसा वेश धारण करते हैं मैं उनकी आलोचना कर रहा हूँ।
3: कोलंबो से स्वामी जी कैंडी गए। ये पर्वतीय स्थल स्वास्थ्य केंद्र है और भगवान बुद्ध के मंदिर के लिए विख्यात। कैंडी में भी उनका भव्य स्वागत हुआ। कैंडी से घोड़ा गाड़ी में 200 मील की दूरी पर अनुराधापुरम जाने की यात्रा शुरू हुई। सफर सुखमय नहीं रहा। बीच में घोड़ा गाड़ी का पहिया टूट जाने पर सब लोग दुर्घटनाग्रस्त होते होते बच गए। फिर किसी तरह पैदल और बैलगाड़ी से अपनी यात्रा पूरी की, पर वो समय से 8 घंटे की देरी से अनुराधापुरम पहुंचे।
0: अनुराधापुरम किसी काल में सिहली बौद्ध धर्म का केंद्र स्थान था। एक विशाल तथा समृद्ध नगर रहा होगा। वहां पर बिखरे हुए अनेक बौद्ध मंदिरों तथा भिक्षुओं के निवास स्थानों के चिन्ह दिखाई देते हैं। प्राचीन भवनों तथा खंडहरों के बीच भी उस युग के स्थापत्य कला का उत्कर्ष दिख पड़ता है। बोध गया से ले जाकर बोधि वृक्ष की एक शाखा यहां लगाई गई थी। कहते हैं कि ये 245 वर्ष ईसा पूर्व की बात है। वो शाखा अब एक विशाल वृक्ष के रूप में परिणित होकर असंख्य बुद्ध भक्तों को उनकी याद दिलाया करती है।
3: इसके अतिरिक्त खंडहरों में एक सरोवर तथा दागोबा नाम से विख्यात कुछ स्तूप दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। स्वामी जी के निवास हेतु जो स्थान निर्धारित था उसके समीप ही स्थित 1600 ग्रेनाइट पत्थर से बना स्तंभ भी अत्यंत विस्मयजनक था। ये सब लगभग 2000 वर्ष पूर्व निर्मित एक विशाल 9 मंजिल पीतल के भवन के भग्नावशेष हैं। कहते हैं कि इस प्रासाद में पुरोहितों के लिए 1000 शयन कक्ष थे। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से कक्ष अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाते थे। इसकी छत पीतल से बनी थी और सभा मंडप सिंहों के सिर पर निर्मित अनेक स्वर्ण स्तंभों से सुसज्जित था। मंडप के बीच में एक हाथी दांत का सिंहासन था और सिंहासन के दोनों तरफ सोने से बना सूर्य तथा चांदी की चंद्रमा विराजमान थे।
0: पूर्वोक्त पीपल के वृक्ष के नीचे तथा उसके आसपास बैठे लगभग 2-3 हजार श्रोताओं के समक्ष स्वामी जी का उपासना के विषय में व्याख्यान हुआ। उनके अंग्रेजी व्याख्यान को 2 अन्य व्यक्ति तमिल तथा सिहिली भाषा में अनुवाद करते रहे। उन्होंने श्रोताओं से कहा कि बेकार के आडंबरों को त्याग कर वेदों के उपदेशों को जीवन में स्थापित करने की ओर ध्यान देना उचित है। वे इतना ही बोल पाए कि उसी समय दल के दल अनेक भिक्षु गृहस्थ, स्त्री पुरुष तथा वृद्ध एवं बालक ढोल झांझ आदि लेकर आए और सभा के चारों ओर ऐसा शोर मचाने लगे कि स्वामी जी को बाध्य होकर अपना व्याख्यान बंद कर देना पड़ा। परंतु ऐसे दुर्व्यवहार के बावजूद स्वामी जी ने सबसे धैर्य धारण कर शांत रहने का अनुरोध किया और उन्होंने समझाते हुए कहा कि धर्म एक सार्वभौमिक वस्तु है और भगवान की शिव, विष्णु, बुद्ध या चाहे किसी भी अन्य नाम से उपासना की जाए, वे वस्तुतः एक ही हैं। ऐसे बौद्ध प्रधान उस तीर्थ स्थान में उन्होंने न केवल परधर्म सहिष्णुता की बात कही, अपितु परधर्म के प्रति श्रद्धा दिखलाने की आवश्यकता भी समझा दी।
3: अनुराधापुरम से स्वामी जी 120 मील दूर जाफना पहुंचे। वहां फिर वही स्वागत समारोह और वही गर्मजोशी के साथ अभ्यर्थना हुई। वहां स्वामी जी के व्याख्यान भी हुए। वहां एक स्थानीय संवाद पत्र हिंदू ऑर्गन ने विस्तृत खबर प्रकाशित की।
4: स्वागत समिति ने निश्चित किया था कि रविवार को प्रातःकाल उपार नामक स्थान में 7 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल व्यक्तिगत रूप से स्वामी जी का स्वागत करेगा और उसी दिन संध्या को नगर की ओर से उनका सार्वजनिक अभिनंदन होगा। परंतु देखा गया कि रविवार को सुबह ही नगर के लगभग 100 गणमान्य लोग उपार में एकत्र हो गए तथा आग्रह पूर्वक उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 9 बजे तक स्वामी जी तथा उनके संगियों की गाड़ियां नहीं पहुंची। अतः निश्चित हुआ कि और भी 5 मील आगे बढ़कर चावा काचारी नामक स्थान पर उनकी प्रतीक्षा की जाए।
2: इन लोगों के वहां पहुंचने की ही देरी थी कि स्वामी जी अपनी टोली के साथ डाक गाड़ी में वहां पहुंचे। तब उन्हें गाड़ियों में बैठकर शहर तक ले जाने के लिए एक शोभा यात्रा सजाई गई। पहली गाड़ी में स्वामी जी, उनके गुरु भाई स्वामी निरंजनंद तथा नागलिंगम आसीन हुए। ये 2 घोड़ों द्वारा चलित एक गाड़ी थी। बाकी लोग 20 गाड़ियों में उनके पीछे चले। सेंट्रल रोड से होकर शोभा यात्रा के नगर में पहुंचते पहुंचते 11:30 बज गए। स्वागत समिति के हाथ में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। तथापि अपराह्न के समय हिंदू महाविद्यालय में स्वामी जी का यथोचित अभिनंदन करने के लिए विराट आयोजन किया गया। विद्यालय के सामने एक विशाल सुसज्जित भलीभांति मंडप बनाया गया था।
4: नगर से महाविद्यालय तक 2 मील लंबा पथ, विशेषकर ग्रैंड बाजार से होकर गुजरने वाला अंश बंदनवार और दीप मालिकाओं से सजाया गया था और पूरा रास्ता ध्वज पताकाओं से सुशोभित हो रहा था। संपूर्ण दृश्य अत्यंत मनोहर था और लोगों में भी महान उत्साह का संचार हुआ था। द्वीप के विभिन्न स्थानों से सहस्त्रों लोग विश्व विख्यात स्वामी जी का दर्शन करने की कामना से नगर में आए हुए थे। उनका स्वागत करने को सड़क के दोनों ओर खड़े हो गए थे। महाविद्यालय तक का जाफना कंगे संतुरा रोड शाम को 6 बजे से रात 12 बजे तक बैलगाड़ियों तथा घोड़ा खाड़ियों के लिए आना जाना मुश्किल हो गया था। रात को 8:30 बजे हाथ में मशाल लिए भारतीय संगीत के साथ प्रारंभ होने वाली शोभा यात्रा अभूतपूर्व थी। अनुमान है कि उसमें लगभग 15,000 लोगों ने भाग लिया था और सभी लोग पैदल चले थे।
2: 2 मील लंबा समूचा पथ लोगों से इतना भर गया था कि उस पर सर्वत्र लोगों के सिर के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तथापि शुरू से अंत तक पूरी सुव्यवस्था बनी रही। मार्ग के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रायः प्रत्येक मकान के सामने मंगल घट तथा दीप स्थापित था और हिंदू प्रथा के अनुसार एक महान सन्यासी के प्रति जैसा सर्वोच्च सम्मान दिखना चाहिए, नगरवासी वैसा ही कर रहे थे। घोड़ा गाड़ी से उतरने के बाद स्वामी जी ने शिवन तथा कटिरेशन के मंदिरों में पूजा की तथा वहां के पुरोहितों ने उन्हें मालाएं पहनाई। रास्ते भर स्थानीय लोगों ने उन्हें मालाएं पहनाई थी। अतः रात के 10 बजे जब वे महाविद्यालय में पहुंचे तो बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे।
4: स्वामी जी के आगमन के कई घंटों पूर्व ही व्याख्यान मंडप लोगों से भर गया था। बाहर भी अनेक लोग अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। इन एकत्र लोगों में हिंदू, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान आदि सभी संप्रदायों के मनुष्य थे। मंडप के प्रवेश पथ पर त्रावंकोर के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री एस चल्लप्पा पिल्लई ने स्वामी जी का स्वागत किया और एक ऊंचे मंच पर ले जाकर उनके गले में माला पहनाई। इसके पश्चात एक अभिनंदन पत्र पढ़ा गया और स्वामी जी ने अत्यंत सुंदर भाषा में 1 घंटे तक उसका उत्तर दिया। अगले दिन शाम को 7 बजे उन्होंने हिंदू महाविद्यालय में ही वेदांत पर 1 घंटा 40 मिनट तक एक और भाषण दिया। इस सभा में जाफना के सुशिक्षित समाज के लगभग 4000 श्रोता उपस्थित थे और उनमें से प्रत्येक ने स्वामी जी की उत्साहपूर्ण वाणी सुनकर अपने आप को भाव विभोर महसूस किया। इस व्याख्यान के पश्चात श्रोताओं के अनुरोध पर कप्तान सेवियर ने उन लोगों को बताया कि उन्होंने किस कारण हिंदू धर्म ग्रहण किया और क्यों स्वामी जी के साथ भारत आए।
0: इसके उपरांत स्वामी जी की इच्छा अनुसार जल मार्ग से उनके भारत जाने की व्यवस्था की गई। किराए के एक जहाज से वे वहां से 50 मील दूर स्थित पामबन की ओर चल पड़े। वायु के अनुकूल तथा समुद्र के शांत होने के कारण ये समुद्र यात्रा सुखद रही।
3: उनका जहाज 26 जनवरी 1897 को अपराह्न में 3 बजे पामबन द्वीप में स्थित पामबन रोड आ पहुंचा। रामनाथ नरेश के आमंत्रण पर स्वामी जी वहां से रामेश्वर जाने के लिए जहाज से उतरने को तैयार हो रहे थे और उसी समय उन्हें समाचार मिला कि राजा स्वयं ही उन्हें ले जाने को राजकीय नौका के साथ पामबन रोड आ रहे हैं। लगभग 5 बजे राजा स्वामी जी को जहाज पर से अपनी राजकीय नौका में ले गए। अपने सभासदों के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम कर उनका सप्रेम स्वागत किया। राजा के साथ स्वामी जी का ये मिलन बड़ा ही हृदय स्पर्शी था। स्वामी जी ने कहा,
6: मैं महाराज का आभारी हूँ जो लोग मुझे विदेश भेजने की इच्छा रखते थे। रामनाद के महाराजा उनमें अग्रगण्य थे, इसलिए बड़ा ही अच्छा हुआ कि भारत वापस आकर मैं सर्वप्रथम रामनाद नरेश के पास ही आया।
0: रात की नौका से पामबन नगर के तट पहुंचते ही नगरवासियों ने तुमुल उत्साह के साथ स्वामी जी का स्वागत किया। वहीं उन्हें एक सुसज्जित मंडप में ले जाया गया। फिर एक अभिनंदन पत्र पढ़ने के बाद वो उनके हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही राजा ने स्वयं भी अपना व्यक्तिगत स्वागत भाषण दिया, जिसका प्रतिवाक्य श्रद्धा भक्ति तथा भावुकता से ओतप्रोत था। पामबन के निवासियों की ओर से श्री नागालिंगम पिल्लै ने अभिनंदन पत्र का पाठ किया। उसमें अन्य बातों के साथ ये लिखा गया था,
7: पाश्चात्य देशों में आपके द्वारा हिंदू धर्म के प्रचार का काफी अच्छा फल हुआ है। अब आप अनुग्रह पूर्वक इस निद्रित भारत को उसकी सुदीर्घ अज्ञान निद्रा से जगाने के प्रयास में लग जाएं।
0: ये भारत का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए उन्हें खुला आमंत्रण था। इस आमंत्रण के उत्तर में स्वामी जी ने अपने नवयुग के संदेश की कुछ मूल बातें सुनाई। उन्होंने कहा,
6: मुझे लगता है प्रत्येक राष्ट्र का अपना अपना एक मुख्य आदर्श होता है। वो आदर्श ही मानो उसके राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड है। भारत का मेरुदंड राजनीति, युद्ध, वाणिज्य अथवा यंत्र शक्ति नहीं है। धर्म, केवल धर्म ही भारत का मेरुदंड है। भारत में चिरकाल से धर्म का ही प्राधान्य रहा है। भारत किसी काल में निष्क्रिय था, यह बात मैं किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता। इसका प्रमाण यह है कि हमारी अति प्राचीन एवं महान जाति आज भी जीवित है। इस समय सारी दुनिया आध्यात्मिक खाद्य के लिए भारत भूमि की ओर ताक रही है। पृथ्वी के समस्त राष्ट्र के लिए भारत को इसकी व्यवस्था करनी होगी।
3: पामबन से 29 जनवरी को प्रातःकाल 4 बजे स्वामी जी ने उत्तर की ओर यात्रा की और द्वीप छोड़कर भारत की मुख्य भूमि पर पदार्पण किया। राजकीय नौका से दूसरी ओर के तट पर पहुंचकर वे लोग बैलगाड़ी पर सवार हुए। मार्ग में रामनाथ के राजा द्वारा निर्मित एक धर्मशाला में जलपान करने के बाद जब वे लोग तिरुपुल्लानी नामक स्थान पर पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने स्वामी जी का स्वागत किया। संध्या के पूर्व ही रामनाथ दिखने लगा। रामनाथ के निकट पहुंचकर स्वामी तथा उनके संगीगण एक सुंदर राजकीय नौका में सवार होकर एक विशाल सरोवर में उतरे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक जलाशय दिख पड़ते हैं। रामनाद में इसी सरोवर के दूसरे तट पर स्वामी जी के लिए अभिनंदन समारोह की व्यवस्था हुई थी, जिसके फलस्वरूप वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। इस आयोजन में भास्कर सेतु ने भी उत्साहपूर्वक प्रमुख रूप से भाग लिया था और उन्होंने रामनाथ के विशिष्ट नागरिकों का स्वामी जी से परिचय भी कराया।
0: गुडविन द्वारा लिपिबद्ध विवरण से पता चलता है कि रामनाथ में स्वामी जी का राजगुरु के रूप में विशेष राजकीय सम्मान के साथ अभिनंदन हुआ था। सरोवर के तट पर उनके पदार्पण करते ही तोपों की आवाज से सबको उनके शुभागमन की सूचना दे दी गई और आकाश में तारों के रूप में अद्भुत आतिशबाजियां छूटने लगी। शोभा यात्रा के साथ निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने तक निरंतर ऐसा होता रहा और मार्ग में सर्वत्र आनंद उत्सव का उल्लास दृष्टिगोचर होता रहा।
3: स्वामी जी को राजकीय वाहन में बैठाकर उनके साथ राजा के भाई के नेतृत्व में राजा की अंगरक्षक सेना चल पड़ी और सबसे आगे राजा स्वयं ही नंगे पांव पथ दिखाते हुए चल रहे थे। मार्ग के दोनों ओर बहुत से मशाल जल रहे थे। इसके साथ ही साथ भारतीय तथा यूरोपीय वाद्य संगीत बज रहा था। इसी प्रकार आधा रास्ता पार करने के पश्चात राजा के अनुरोध पर स्वामी जी गाड़ी से उतरकर एक सुंदर राजकीय पालकी पर चढ़े और शीघ्र ही अपने लिए निर्दिष्ट शंकर विला नामक प्रासाद में जा पहुंचे। यहां थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात वे सभा मंडप में आए।
0: राजा के सभागार में ही स्वामी जी के सत्कार की व्यवस्था हुई थी। स्वामी जी को देखने के लिए तथा अभिनंदन के उत्तर में उनका वक्तव्य सुनने के लिए वहां सहस्त्रों लोग एकत्र थे। स्वामी जी को देखते ही वहां उपस्थित जनता ने उच्च स्वर में जय घोष तथा हर्ष ध्वनि की। उनके आसीन होने तथा श्रोताओं के शांत हो जाने पर रामनाथ नरेश ने एक संक्षिप्त भाषण के साथ सभा की कार्यवाही आरंभ की। अपने भाषण में उन्होंने स्वामी जी की अत्यंत प्रशंसा की और रामनाथ की जनता की ओर से अपने भाई दिनकर सेतुपति से अनुरोध किया कि वे स्वामी जी को दिया जाने वाला अभिनंदन पत्र पढ़कर सुना दें। पाठ हो जाने के बाद राजा के भाई ने उस पत्र को सुंदर नक्काशी से युक्त एक स्वर्ण पेटिका में रखकर श्रद्धापूर्वक स्वामी जी के हाथों में सौंप दिया।
3: अभिनंदन के प्रत्युत्तर में स्वामी जी ने जो कुछ कहा वो उनके विचारधारा को समझने के लिए विशेष उपयोगी है। उन्होंने कहा,
8: सुदीर्घ रजनी अब समाप्त होती सी जान पड़ती है। महादुख का प्रायः अंत आ गया लगता है। महानिद्रा में निमग्न शव मानो जाग रहा है। इतिहास की बात तो दूर, किंवदंतियां भी जिस सुदूर अतीत के घनांधकार को भेदने में समर्थ हैं, वहीं से एक अपूर्व आवाज निस्तृत हो रही है। ज्ञान, भक्ति एवं कर्म के अनंत हिमालय स्वरूप हमारी मातृभूमि भारत की हर चोटी से प्रतिध्वनित होती हुई यह आवाज मृदु परंतु दृढ़ एवं अचूक भाषा में हमारे पास आ रही है। दिन पर दिन ये और भी स्पष्ट तथा गंभीर होती जा रही है। जो अंधे हैं वे देख नहीं सकते, जो पागल हैं वे समझ नहीं पाते। हमारी यह मातृभूमि अब अपनी गहरी निद्रा को त्याग कर जागृत हो रही है। अब कोई भी इसकी गति को रोक नहीं सकता। अब ये पुनः सोएगी भी नहीं। कोई बाहरी शक्ति अब इसे दबाकर नहीं रख सकती, क्योंकि ये असाधारण शक्ति अब अपने पांवों पर खड़ी हो रही है।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: गली में मार ठहरे, पास आने को मेरे।
3: मैं हूं सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूं हरि प्रसाद चौरासिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। रात्रि के 10 बजने वाले हैं, तो अब चलते चलते हम आपको बताए दे रहे हैं कि कल सुबह यानी 20 मई बुधवार को हमारी सुबह की सभा में आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनने वाले हैं। सुबह 7 बजे जब सभा आरंभ होगी, आप सुनेंगे जीवन सौरभ। 7:10 से सुनिएगा ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ हमारे कार्यक्रम अक्षय निधि में। 7:20 से आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। और सुबह 8 बजे आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम वतन का राग। श्रोताओं, का ये कार्यक्रम राजकुमार शुक्ल पर आधारित होगा, जिनकी कल पुण्यतिथि है। सुबह 8:30 का वक्त होगा कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से का। कल इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे रानी दुर्गावती के युद्ध की विजय गाथा का भाग 9। इस कार्यक्रम में डॉक्टर पूजा सक्सेना से संदीप शर्मा की चर्चा आप सुनेंगे। सुबह 9 सुनिएगा हमारा कार्यक्रम टेक गुरु। कल इस कार्यक्रम का विषय होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका भाग 2 आप सुनेंगे। विषय विशेषज्ञ होंगे अनुग्रह नगाइच, जिनसे बात की है रत्नेश सोनी ने। सुबह 9:30 का वक्त होगा कार्यक्रम भारत विभूति का। कल इस कार्यक्रम में हमारे भारत विभूति हैं पांडुरंग वामन काणी। दिन में 10 पेश की जाएगी रेडियो रिपोर्ट और क्रमशः परिक्रमा। 10:30 का वक्त होगा काव्य गुंजन का। कल काव्य गुंजन में आप यशोधरा का भाग 4 सुनेंगे। दिन में 11 सुनिएगा कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक। कल ये कार्यक्रम आधारित होगा वैज्ञानिक प्रोफेसर हरगोविंद खुराना पर। दिन में 11:30 सुनिएगा रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये थी रेडियो आजाद हिंद से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एक झलकी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए। और अब इस सभा से दीजिए अनुमति पूर्वक हले को नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं, अब हमारी ये सभा समाप्त होती है। कल सुबह 7 बजे आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।